और अब समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026, सुबह के 5:53 और 31 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब आपको जानकारी दें, आज आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का।

6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का।

10:30 का समय होगा दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर। दोपहर 12:10 का समय होगा घर आंगन का।

1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल। 3:10 का समय रहेगा मन भावन का।

शाम 5:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। 7:25 पर आप सुनेंगे सांझ ढले।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हार श्रृंगार का और 11:40 पर आप सुनेंगे गीत मेरे मनमीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति

0: जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the

समय हो चला है 6:11 और 58 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो एक शुभ प्रभात, और जब मैं आ रही थी तो देख रही थी कि प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है, सब कुछ ऐसे धुला हुआ सा लग रहा है। वैसे मौसम जब ऐसा होता है ना, बारिश का होता है, तो फिर बेशक कई बार हमें असुविधा होती है, कहीं कहीं जलभराव होता है, कहीं ट्रैफिक होता है, कहीं बीमारी का डर होता है, लेकिन फिर भी बारिश अपने आप में एक खुशबू लेकर आती है, एक खुशी लेकर आती है। हर मौसम, हर हवा का झोंका, हर वर्षा की बूंद हमारे लिए कोई ना कोई संदेश भी लेकर आती है, जैसे ये संदेश कि जीवन भी एक जैसा नहीं होता, जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, कभी सफलता कभी संघर्ष, और ये सब जीवन की ऋतुएं हैं। तो जब कभी ऐसी ऋतु बदले ना, तो फिर अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए। क्या हम हर समय शिकायतें करते रहें, धैर्य रखना चाहिए और हर चीज में अपने लिए कुछ ना कुछ संदेश ढूंढना चाहिए।

जी हाँ, तो बात हो रही थी बारिश की बूंदों की, कि जब वो धरती को छूती हैं तो सूखी मिट्टी के साथ उठने वाली सौंधी खुशबू मन को आनंदित कर देती है। और यही प्रकृति का संदेश भी है कि परिवर्तन हमेशा नया जीवन लेकर आता है। जानते हैं एक बार क्या हुआ कि एक किसान था जो ऐसे ही बारिश से शिकायत कर रहा था जैसे कि हम करते हैं, और वो उस परिवर्तन को समझ नहीं रहा था। तो कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाती थी, कहीं पे कम, तो बहुत ही परेशान हो जाता था। और एक दिन उसने भगवान से कह ही दिया कि भगवान, एक साल मौसम मेरे अनुसार कर दीजिए। भगवान ने उसकी बात मान ली। तो किसान ने धूप अपनी इच्छा से ली, बारिश भी अपनी सुविधा से करवाई, फसल खूब हरी भरी दिखाई दी। लेकिन जब कटाई का समय आया तो उसने देखा कि बालियां तो खाली थी। तो उसने पलट कर भगवान की तरफ देखा। इस बार भगवान मुस्कुराए और बोले कि देखो, संघर्ष के बिना अन्न में दाना नहीं आता। तेज हवा और कठिन मौसम जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जब हम ये शिकायतें करते हैं ना, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जो भी कठिन समय होता है वो हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। अब बेशक बारिश हो या बदलता मौसम हो, वो भी तो परिस्थितियों की तरह है, आज ऐसी तो कल वैसी। पर अगर विश्वास है, धैर्य है और वो अडिग है, तो हर बार हर बदलती चीज हमारे लिए एक नया वरदान बन जाती है। बस हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इन सब चीजों में सिर्फ एक चीज जो हमेशा रहती है, अडिग रहती है, वो है हमारा अध्यात्म से जुड़ाव या ईश्वर परमात्मा परवरदिगार को हर समय याद रखना, हर समय उस ऊपर वाले के साथ जुड़े रहना। तो ये धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ थोड़ा सा खराब हुआ तो हम झट से एक आरोप लगा देते हैं, कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ, यह मेरे साथ ही क्यों हो गया। पर नहीं, ये बदलता मौसम, ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि ये हमारी जड़ों को और मजबूत करने के लिए आया है।

जी हाँ, हमारा जीवन भी ऐसे ही बीतता जा रहा है भजन के बिना, यानी बिना उस ऊपर वाले को याद किए। और उसका कारण होता है कि हमारी अपनी समस्याएं इतनी होती हैं, परेशानियां इतनी होती हैं कि हमें लगता है कि क्या ही याद करें, क्यों ही याद करें, कौन सा समस्याएं कम हो जाएंगी। और ऐसे ही एक युवक था जो एक वृद्ध संत के पास पहुंचा जो नदी के किनारे बैठे थे, और उसने कहा कि मेरे जीवन में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो संत ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए दिखाकर कहा कि देखो, ये नदी कभी शांत है, कभी उफान पर है, लेकिन क्या ये बहना छोड़ देती है? तो युवक को उसका जवाब मिल गया कि जीवन भी नदी की तरह है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन हम अपने प्रवाह को रोक नहीं सकते। तो ऐसे ही बारिश में कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं, कभी ट्रैफिक जैम मिल जाता है, कभी हम पूरा भीग जाते हैं, लेकिन क्या ये हमारे सफर को रोक सकता है? क्या ये हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने से कहीं ना कहीं डगमगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। योजनाएं बदल सकती हैं, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हर चीज को जब स्वीकार करना सीख जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन जो हमने सोचा है करना ही है, तो फिर मौसम कैसा भी हो हम मुस्कुरा कर आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन हाँ, शिकायतें करते रहेंगे तो फिर एक ही जगह बैठ जाएंगे, और जो भी कुछ हो रहा होगा उसे स्वीकार करके, हार मान के, और अपने आप से कहेंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं। तो सोच लीजिए कौन सा तरीका, कौन सा रास्ता आपको अपनाना है।

याद बात हो रही थी बारिश के मौसम की और इसकी के बेशक कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बारिश हम सबको बहुत अच्छी लगती है। तो क्यों, जानते हैं इसका कारण क्या है? और इस क्यों को हम कभी पूछते नहीं हैं, पर फिर भी जानते सभी हैं कि बारिश केवल धरती को ही नहीं, हमारे मन को भी धो देती है। जब बूंदें गिरती हैं तो प्रकृति मानो ये कह रही होती है कि पुरानी धूल छोड़ो और नए जीवन का स्वागत करो। तो इसीलिए जब भी कभी परेशानियां आए ना, तो भी यही समझना चाहिए कि हम परेशानियों को रोक नहीं सकते, जैसे बारिश को रोका नहीं जा सकता। तो जैसे बारिश का स्वागत कर लेते हैं, ऐसे उन परेशानियों का भी स्वागत कर सकते हैं। पर हाँ, बारिश को रोक नहीं सकते, पर खुद को बचा जरूर सकते हैं, और उसी के लिए हम एक छाता लेकर चलते हैं। ऐसे ही परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूरी है, और उसके लिए अपना दृष्टिकोण बदलना जरूरी है, उसके लिए धैर्यवान होना जरूरी है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा, यानी सुख और दुख दोनों में समभाव बनाए रखना जरूरी है, और यही योग भी है। तो जैसे बारिश आती है तो बिना शोर किए धरती को सींच देती है, पेड़ों को जीवन दान देती है, सूखी नदियों को फिर से बहना सिखाती है, ऐसे ही हमारी जो परिस्थितियां होती हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। इसीलिए शिकायतों की जगह कृतज्ञता को अपनाना चाहिए, और जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा होगा जो हमारे लिए अच्छा हो, तभी तो वो हो रहा है।

जी हाँ, तो बात हो रही थी बारिश की और इस मौसम की और हमारी परिस्थितियों की, हमारी के जो कुछ भी हो रहा है या मौसम बदल रहा है तो हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं। जानते हैं एक और चीज़ जो सीखते हैं बारिश से, वो है झुकना। क्योंकि बारिश में सबसे अधिक झुकने वाला वृक्ष सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन जो अकड़ कर खड़ा रहता है वो तेज आंधी में टूट जाता है। तो इसलिए परिस्थितियों के साथ लचीलापन बने रहना हमें टूटने नहीं देता। और जो कुछ भी हो रहा है उसे हम क्रोधित न होकर, अशांत न होकर, अपनी योजनाओं, अपनी जो योजनाएं हैं उनको स्थगित ना कर कर सिर्फ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, लचीले होते रहें, तो फिर सब कुछ बदलता जाएगा। क्योंकि हर बारिश के बाद एक सूर्य होता है जो मुस्कुरा रहा होता है, और उस मुस्कुराहट को हम बांटें, इसके लिए उन परिस्थितियों में रहते हुए इस बात की उम्मीद हमेशा रखें कि सब कुछ जल्दी ही बदल भी जाएगा।

जी हाँ, तो बात हो रही थी बारिश की और अलग अलग बूंदों की और उससे कुछ ना कुछ सीखने की। अब एक चीज हम ये भी तो सीखते हैं कि बारिश की हर बूंद अलग अलग गिरती है लेकिन धरती पर पहुंचकर एक हो जाती है। तो क्या ये हमें एकता का सुंदर संदेश नहीं देती? जैसे एक बार एक गांव में लगातार बारिश हो रही थी, नदी उफान पर आ गई और ऐसा हो गया था कि बस बाढ़ आ जाएगी। तो गांव वालों ने मिलकर बहुत सारी मिट्टी की बोरियां वहां पर लगा दी और पूरा गांव बाढ़ से बच गया। सोचिए, अगर हर इंसान केवल अपने घर की चिंता करता और गांव के बारे में नहीं सोचता तो पूरा गांव ही संकट में पड़ जाता। लेकिन सामूहिक प्रयास एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए बारिश भी परिवार के साथ हमें जोड़ती है, पड़ोसियों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, समाज में संवेदनशीलता को बढ़ाने का एक तरीका देती है। ये याद दिलाती है कि अलग अलग होकर नहीं, मिलकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।

जी हाँ, तो आज अर्पण में हमने बात की बारिश की बूंदों की और इस बात की कि हर बूंद अपने आप में नायाब है, हमारे लिए एक लेसन, एक पाठ लेके आई है, कुछ सिखाना चाहती है और अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल लें तो जीवन बदल जाता है। इसलिए जब बादल घिरें तो घबराएं नहीं, जब रास्ते कठिन हों तो रुके नहीं, जब परिस्थितियां बदल जाएं तो टूटे नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहें। आभार प्रकट करें प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति हर समय हमारे लिए कोई ना कोई नया संदेश लेकर आती है, जैसे धैर्य को स्वीकार करना, जैसे प्रेम को बढ़ाना, जैसे एकता का संदेश, जैसे सेवा का भाव और भी बहुत कुछ। तो आज हमने यही सब बात की और अब समय है कि आप सुने श्री रामचरित मानस।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: और मिलकर परिणाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024.

7:11 और ठीक 2 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है गोल्ड सुप्रभात, जिसमें अगर आप बाहर झांक के देखें तो सूर्य जो है वो अपनी सुनहरी किरणों को लेकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि हर सुबह सिर्फ शुरुआत नहीं होती बल्कि हमारे सपनों को साकार करने का एक माध्यम होती है, एक अवसर होती है। और ये सुबह जो है इसमें भी सूर्य देवता जब दस्तक दे रहे हैं ना, तो हमें ये याद दिला रहे हैं कि आज फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, और जो बीत गया उसे पीछे छोड़ना है, आज के दिन को पूरी तरह से अच्छी तरह से जीना है। और जैसे जैसे सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं धरती पर फैलती जाती हैं, तो मन से भी जितने भी नेगेटिव और नकारात्मक विचार होते हैं ना, इनके बादल छट जाते हैं और सकारात्मक

सकारात्मक सोच वो आगे बढ़ने लगती है। बस ऐसी ही बातों के साथ हमने सोचा शुरुआत की जाए आज के इस प्रोग्राम की, ताकि आप जब उठें तो मुस्कुरा के उठें। और हाँ, ये जो स्नूज कर करके काफी देर से सो रहे हैं ना, इसको जरा बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, अब तो उठना ही पड़ेगा ताकि आप अपने दिन की शुरुआत कर सकें। मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से।

0: साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सात बजकर 17 मिनट और ठीक 52 सेकंड हो चले हैं। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। और अगर अभी तक नहीं उठे हैं तो ये टाइम जानकर यानी 7:18 जो हो गए इसे जानकर उठ जाइए। वैसे उठना सुबह इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हम अक्सर ही सुनते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन आप सुबह जल्दी उठेंगे नहीं तो फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैसे काम करेंगे सोचिए। क्योंकि सुबह उठ के हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, ऐसे में जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना वो आपको पूरा दिन एनर्जाइज रखती हैं, बहुत अच्छा रखती हैं। तो आज सुबह के स्वस्थ शरीर के लिए एक और आसन की बात करते हैं और वो है ताड़ासन, जो हमारी बॉडी को बैलेंस्ड करता है, संतुलित करता है, रीढ़ को सीधा रखता है, हमारे जो लंग्स हैं उसकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है, उस कैपेसिटी को बढ़ाता है और पूरे दिन ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। तो सुबह 5-10 मिनट इसका अभ्यास करना जरूरी है, गहरी सांस लेकर उसके साथ साथ। पर यह तभी होगा ना जब आप थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, टाइम से उठेंगे और बहुत सारे काम जो सुबह के होते हैं उन्हें रात को भी निपटा के रख सकते हैं, जैसे कपड़े प्रेस करके रख दीजिए या टिफिन बाहर निकाल के रख लीजिए या जो कुछ आपको सुबह बनाना है वो सब्जी रात को काट के उसकी तैयारी करके रख लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो इसीलिए जरूरी है ताकि आप सुबह सुबह योग कर सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और स्वस्थ रहेंगे तभी आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। वैसे बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और सूर्योदय हो गया था 5:40 के आसपास, सूर्यास्त होगा 7:14 के आसपास। तो दिन काफी खूबसूरत है, बहुत लंबा है और मौसम जो है वो तो बदल ही रहा है। तो जरूरी यह है कि मौसम जैसा भी हो, बदलता हो या वैसे ही रहे, या बारिश हो या गर्मी हो या धूप हो, इसमें हमारा उत्साह हमेशा बने रहना चाहिए और दिन की शुरुआत हमेशा उसी उत्साह उसी खूबसूरती के साथ करनी चाहिए। और इसके साथ भी

जी हाँ, तो ये शुरुआत भी एक खूबसूरत शुरुआत है क्योंकि इससे भी एनर्जी मिलती है और आप जो हैं वो उस टच को फील करते हैं जो अक्सर आजकल हम मिस कर देते हैं क्योंकि मोबाइल का जमाना है। हम किसी से बात भी करते हैं तो फिर वीडियो कॉल करके कर लेते हैं, लेकिन ये गाना हमें याद दिलाता है कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं ना, उन्हें एक छोटा सा हग करके आप घर से बाहर निकलते हैं तो उनका पूरा दिन बन जाता है। वैसे बात करें सुबह की शुरुआत की, तो फिर दिन बनाने के लिए आप पांच चीजें कर सकते हैं। पहला ये कि जागते ही उस ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि आपको एक और दिन मिला। दूसरा ये कि एक या दो ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। तीसरा ये कि 20 मिनट योग, जो हमें बात कर रहे थे, या फिर आप वॉक कर सकते हैं। चौथा, पौष्टिक नाश्ता कभी नहीं छोड़िए। और पांचवा, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय कुछ मिनट ध्यान या सकारात्मक सोच के साथ आप बिता सकते हैं। देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियां और संतुलित भोजन पूरे दिन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये सबसे बड़ा निवेश है। तो जब आप ये सोचते हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दें, वहां कर दें, पैसा बढ़ जाएगा, तो फिर ये सोचिए कि अपनी बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट कहां कहां की जा सकती है। और उसी में नींद आती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं, हमारा संतुलित भोजन आता है और योग भी आता है। इसलिए एक संकल्प आप हर सुबह कर सकते हैं कि तनाव कम लेंगे और उसके लिए ज्यादा मुस्कुराएंगे, शिकायतें कम करेंगे और ज्यादा आभार प्रकट करेंगे, कम बहाने बनाएंगे लेकिन एफर्ट्स अपने बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके पूरे दिन को बहुत बहुत बहुत खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी हैं। और ये समझ लीजिए कि अगर दिन खूबसूरत होता है ना, तो ही हम अपने पूरे जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि एक एक इकाई है ना ये, जो बढ़ती जा रही है हर रोज, और बढ़ते बढ़ते हम एक दिन सोचेंगे कि हमारी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत रही।

और इसी प्यारे गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं क्योंकि गोल्ड सुप्रभात यहीं तक और आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो पूनम को दीजिए इजाजत, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड को हर रोज सुनते रहिएगा।

0: the very beautiful Western instrument, the piano, mingling with our own ethereal heavenly instrument, santoor, to produce that wonderful melody, friends, so familiar to one and all. So it goes to show that there is harmony and unity in strength. North, east, west or south, we are one. Peace to all. On that note, friends, I welcome my co-host Farhad and we, that is me and myself, that is Subhadra, with another brand new session of Aaj Savere. Good morning, Farhad.
1: गुड मॉर्निंग सुभद्रा, नमस्कार. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पियानो और संतूर की जो धुन हमें सुनाई दे रही है, और जब संतूर की झनकार मराइन ड्राइव की हवा से टकराती है और पियानो के सुर गेटवे के सामने गूंजते हैं, तो बनती है एक ही धुन, मुंबई मेरी जान. और वही हमें सुनाई दे रहा है पीछे.

0: और हम आपको बता दें कि आज जॉनी वॉकर का जन्मदिन भी है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे उनके बारे में और जिस इस गाने में वो नजर भी आए। बिल्कुल, और आपने जैसे कि यूनिटी की बात की, तो हम यही कहेंगे वर्किंग टुगेदर ब्रिंग सक्सेस पीस एंड ग्रेट पावर, क्योंकि मदर टेरेसा का मानना था कि इवन द वीक बिकम स्ट्रांग व्हेन दे आर यूनाइटेड।
1: यस ऑफ कोर्स,
0: तो इसलिए कुछ बेहतर करना है तो एक होना जरूरी है। इसी विचार के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सभी के जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व होता है जो हमारे अंदर अच्छे गुणों को, अनुशासन को और विनम्रता को भरते हैं। और आज के संक में हम विश्व बाघ दिवस के बारे में भी बातचीत करेंगे, तो आज के संक में बहुत कुछ होने वाला है खास, और आप पूरे आधे घंटे रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं।
1: द लोक सभा विल रिज्यूम द डिस्कशन ऑन द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 टुडे। यूनियन मिनिस्टर डॉ जितेंद्र सिंह मूव्ड द बिल फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग इन द हाउस यस्टरडे। द बिल सीक्स टू अमेंड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। द लेजिस्लेशन इनकॉर्पोरेट्स सेवरल सिग्निफिकेंट प्रोविजंस इंक्लूडिंग स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज सच एज इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 10 ईयर्स, फाइन्स ऑफ अप टू 10 करोड़ रुपीज एंड द सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना। श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आग्रह किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने की अपील की।
1: And there's something interesting, Goa Water Metro Project to boost green mobility and tourism, Farhad. It must be, fun riding these electric boats. Goa is moving closer to a modern and sustainable water metro system. A detailed project report will soon be prepared to take forward the ambitious project aimed at improving connectivity, promoting tourism and providing eco-friendly transport across the state. We have more from our correspondent.
2: The proposed Goa Water Metro project is set to transform travel across state's waterways with modern, green and integrated transport. Planned over more than 100 kilometers, the project is expected to be implemented in phases with around 32 terminals connecting villages, towns and urban centers. More than 100 battery-powered boats of different capacities are proposed subject to detailed traffic studies. Officials said the initiative follows Prime Minister Narendra Modi's vision of promoting sustainable water transport across India's navigable waterways. The project will feature digital ticketing, seamless integration with buses, taxis and railways, and affordable monthly passes for regular commuters. Advanced safety systems, passenger counting technology and fast charging electric boats are also planned. For Aaj Savere, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
0: भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान किया है। और अगर बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक की, तो आपको बता दें आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के संचालन को बंद करने की घोषणा की है और एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरी कुमार नायर को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने कहा है कि यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बैंक को बंद करने की अनुमति दी गई थी।
1: Central Railway will run 246 Ganpati special trains from the 11th to 27th of September for the benefit of Ganpati devotees. These include 184 reserved services connecting Mumbai and Pune with Savantwadi Road, Ratnagiri and Madgaon, and 62 unreserved services between Diva and Khed. Booking for reserved trains will open from 1st of August at all counters and on the IRCTC website. Detailed timings are available on the National Train Inquiry System website and the NTES app.
0: और बात अब कॉमनवेल्थ गेम्स की कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावा गुलवीर सिंह ने कल रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों को जानने का. तो सबसे पहले सुभद्रा, चेन्नई में क्या है खास?
1: यस फरहत, स्टार्टिंग विद न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई, द यूजीसी हैज डायरेक्टेड यूनिवर्सिटीज टू इंट्रोड्यूस वन ईयर पीजी प्रोग्राम्स इन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड्स फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. द सर्कुलर फ्रॉम यूजीसी सेक्रेटरी श्यामा रथ टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सेड दैट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी और टू ऑफर टू ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स through open and distance learning or online mode may offer one year master's program which shall be in conformity with the provisions of the NEP 2020 and other applicable UGC regulations and guidelines. The circular also said that learning resources, assessment, credit framework and all other academic requirements comply with the relevant UGC regulation and statutory norms. And we have another one from Chennai, Farhat. Jee. Under the patronage of the Indian Army Dakshin area, a sergeant mess is being established near the OTA, Nanganallur Road metro station in Chennai. The facility, which is to be inaugurated in August, will be made available to serving and retired junior commissioned officers and other ranks of all the three defence services and the Indian Coast Guard for having their official functions, marriage ceremonies and other social events. The halls and rooms in the building and the lawn and open space will be available for the hirer without any furnishing. And moving to Bengaluru now. Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bairagowda has directed BESCOM, Bangalore Electricity Supply Company Limited, to prepare a comprehensive inventory of all electricity-related obstructions on footpaths across the Greater Bengaluru Authority area and remove them under the Freedom from Waste campaign beginning on August 1. Chairing a virtual meeting, the minister instructed officials to clear disused electricity poles, hanging wires, hazardous transformer fittings, and other obstructions to ensure safe and unobstructed footpaths. We have another one from Bengaluru. The Department of Horticulture yesterday celebrated the 100th edition of its Kabban Walks program with a special free anniversary walk at Sri Chamarajendra Kabban Park. Launched last year, the weekend initiative aims to create awareness about the park's rich flora and biodiversity. More than 1,850 people have participated in the guided walks so far. The anniversary event, organized with the Naturalist School, Bengaluru, was led by expert naturalists. Participants appreciated the initiative and officials urged the public to register for the Kabban Walks program through the department's website. We are going to Hyderabad now. Attending the Golden Jubilee celebrations of Swikar Multi-Speciality Rehabilitation Center in Secunderabad, Telangana Governor Shiv Pratap Shukla emphasized that the welfare of persons with disabilities reflects the true measure of a civilized society and a progressive welfare state. During his visit, the governor toured various departments to review the institution's medical, counseling, special education and vocational training services. He praised the center for extending its holistic care to rural and underserved communities, training rehabilitation professionals and successfully integrating individuals with special needs into mainstream society. Underscoring the capability of persons with disabilities, he referenced India's performance at the recent Special Olympics, where national athletes secured 33 medals after receiving appropriate opportunities and encouragement. To aid Swikar's mission, the governor announced financial assistance of 5 lakh from Lok Bhavan for acquiring essential equipment and facilities, while promising further support through government channels. And Farhat, over to you now for rest of the news.
0: जी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की खबरें हम अपने श्रोताओं को बताएंगे. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते देखते हुए दिल्ली मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर पर इस महीने की 30 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक प्रतिदिन 52 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। निगम ने बताया है कि अतिरिक्त ट्रेनें फेरे की शुरुआत के साथ अब नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। और अब बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल नशा मुक्त मुंबई अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुंबई नगर निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी और बताया कि स्कूली बच्चे

0: संख्या में शपथ लेंगे। ये पहल एक साल तक चलने वाला जन कार्यक्रम होगा जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक, स्वयंसेवी संगठन, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि इसमें भाग लेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकों को विशिष्ट श्रेणियों की शिकायतों की सीधी रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए 4 समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर आधिकारिक तौर पर शुरू किए हैं। इस पहल का उद्देश्य जनता को प्रशासनिक और नागरिक मुद्दों के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने देना है और ये एक सरल और निःशुल्क व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके मुताबिक कट मनी से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए नागरिक 155334 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं गिरोह से संबंधित मामलों की शिकायतें दर्ज होंगी 155335 पर। वहीं अवैध सड़क कर या अनधिकृत टोल वसूली से संबंधित शिकायतें आप हेल्पलाइन नंबर 155337 पर दर्ज करा सकते हैं। ये सभी लाइनें पूरी तरह से टोल फ्री हैं। ये नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली की बात सबसे पहले। कल भी बारिश का दौर रहा, आज भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है क्योंकि मौसम में अभी भी तब्दीली आना शुरू हो गई है। बारिश अब होना जरूरी है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: And Chennai is likely to witness a thunderstorm accompanied with lightning. The temperatures are expected to range between a minimum of 29 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 23 degrees.
0: और सुभद्र, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं दो विशेष महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में।
1: यस ऑफ कोर्स, वी ऑल लव द बिग कैट्स, राइट? द मैजेस्टिक क्रीचर्स दैट रोम फ्रीली विद देयर रॉयल लुक्स। ग्लोबल टाइगर डे, ऑफन कॉल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे, इट इज एन एनुअल सेलिब्रेशन टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। हेल्ड दिस डे एवरी ईयर ऑन 29th ऑफ जुलाई, दैट्स ऑफ कोर्स टुडे, एंड इट वाज created in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit in Russia. And Farhat, the theme this year is securing the future of tigers with indigenous peoples and local communities at the heart.
0: बिल्कुल, और सरकार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी हासिल कर रही है और जगह जगह पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाघों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बाघ केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और कहते भी हैं कि जहां बाघ सुरक्षित रहते हैं वहां के जंगल भी समृद्ध और संतुलित
1: बने। जी, मेबी वी शुड बाय वन एज अ पेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप खरीदिएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं बल्कि स्वस्थ पर्यावरण का प्रमाण भी है।
1: yes.
0: तो संरक्षण इसका बेहद जरूरी है। तो अब आइए गुरु पूर्णिमा के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है, ये सब हम सब जानते हैं। और गुरु पूर्णिमा का दिन सनातन परंपरा में खास महत्व रखता है और ये खास दिन गुरु या माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान जाहिर करने के लिए मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि गुरु के प्रति हम सब लोग सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें। तो ये गीत सुन लेते हैं जो गुरु के ऊपर ही है।

0: और सुभद्रा, आज हमने अपने सहयोगियों से भी बात करी, आखिर उनका क्या कहना रहा अपने गुरुओं के बारे में, आइए जान लेते हैं।
1: यूं तो सारी दुनिया में, लेकिन खास तौर पर एशिया में और उसमें भी भारत में गुरु को जो महत्व दिया गया है वो अतुल्य है। और इसके विषय में कहा गया है कि जैसा कि कबीरदास जी कह गए हैं, लिख गए हैं अपनी वाणी में कि सब धरती कागद करूं, करूं लेखनी बन राय, सब सागर को मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा परम्पार है, यदि सारे सागर की स्याही बना ली जाए और सभी वनों की कलम बना करके भी लिखा जाए तो भी गुरु की जो महिमा है उसका वर्णन बड़ा कठिन है। गुरु पूर्णिमा की हमारे सभी श्रोताओं को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ।
2: ऑन दिस गुरु पूर्णिमा आई फील ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल माय गुरुज एंड टीचर्स हु हैव गाइडेड, मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड मी एट एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी व्हेन आई डाउटेड माय सेल्फ। योर वर्ड्स, गाइडेंस एंड सपोर्ट हैव शेप्ड मी इनटू द पर्सन आई एम टुडे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय वंडरफुल गुरुज एंड टीचर्स।
3: गुरु पूर्णिमा के इस खास दिन अपने सभी गुरुओं और शिक्षकों को दिल से धन्यवाद। आप सभी ने मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, मेरा हौसला बढ़ाया और सही रास्ता दिखाया। की सीख ने मुझे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी बहुत कुछ सिखाया है।
4: हम सब कभी न कभी लास्ट बेंच पर बैठे हैं, कभी स्टेज पर बोलने से डरे हैं, तो कभी यह सोचा है कि मुझसे यह सब्जेक्ट नहीं होगा। पर हमारे टीचर्स ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने हमारी कमियों को हमारी ताकत बनाया। आज जब स्कूल का वह दौर याद आता है तो बस एक ही बात दिल में याद आती है, आप थे तो हम संभल गए।
0: बहुत खूब, आप थे तो हम संभल गए। सुभद्रा,
5: और yes,
0: ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कलम पकड़ा था जब उंगलियां कांपती थी हम सबकी, शब्द जोड़ना सिखाया, सोचना सिखाया। आज जो भी हम हैं उनकी ही मेहनत से हैं। मेरे हर लफ्ज़ में मेरे गुरु की दुआ है, तो मैं भी अपने गुरु को, जो अपने टीचर्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनको ये आज का दिन जो है वो शुभकामनाएं।
5: एंड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट टीचर्स फरहत टुडे, एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीट्स 6 सक्सेसफुल ईयर्स, स्कूल्स and colleges across the country are embracing practical learning, regional languages and skill development to help every student unlock their true potential. Building on this momentum, the policy has championed inclusive education by bridging digital divides, offering flexible pathways for lifelong learning and nurturing critical thinking.
0: और इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज जो हुई वो हुई बोर्ड एग्जाम्स को के जो प्रेशर थे उसको कम करने के लिए दो बार एग्जाम्स जो है वो yes. अब होंगे, क्लास 10वीं और 12वीं के बोर्ड साल अब साल में दो बार आयोजित होंगे। तो इससे ये नहीं कि जो बच्चे रट्टा मारकर पास हो जाते थे वो चीज नहीं, आपको समझना है अपने सब्जेक्ट को ध्यान पूर्वक समझना है ताकि इन फ्यूचर भी अगर आप उस चीज में करियर बनाना चाहते हैं तो वो आपके
5: yes,
0: लिए बेहद हेल्पफुल साबित हो। और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 29 जुलाई 2026।
5: 1567, James VI was crowned King of Scotland at just 13 months of age, becoming one of the youngest monarchs in history. 1836, the Arc de Triomphe, one of the largest triumphal arches in the world, was officially inaugurated in Paris.
0: 1876 में भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज की स्थापना कोलकाता में हुई। 1946 में टाटा एयरलाइंस का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर एयर इंडिया किया गया, जो देश की राष्ट्रीय एयरलाइन की शुरुआत का प्रतीक है।
5: 1957 this day the International Atomic Energy Agency IAEA was officially established when its statute entered into force. And 1958 National Aeronautics and Space Administration established NASA, created after the Russians launched the satellite Sputnik. The legislation was signed by the then US President Dwight D. Eisenhower this day in 1958.
0: 1980 में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हॉकी में। मॉस्को ओलंपिक में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उसने फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया।
5: And 2010, United Nations General Assembly adopted a landmark resolution recognizing safe and clean drinking water and sanitation as a human right.
0: और अब आ गया हमारा वो सेगमेंट जिसका था सभी को इंतजार, जहां yes. पर हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को।
5: Today is the birth anniversary of Balwant Moreshwar Purandare of Pune, who lived till 99 years of age. Popularly known as Baba Saheb Purandare, was a writer and theatre personality from Maharashtra, a noble soul who kept very little money for himself and donated most of his income he earned to charitable causes. He was awarded the Padma Bhushan in 2019. His works are mostly based on the events related to the life of Shivaji, the founder of the Maratha Empire. As a result, he is termed as एज शिव शाहिर।
0: और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वो गरीबों और दलितों के संरक्षक माने जाते रहे। इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफी जोर दिया।
5: एंड ऑफ कोर्स ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, नाउ इट्स कॉल्ड कोलकाता, वेयर ही रिसीव्ड द टाइटल विद्यासागर, ओशन ऑफ लर्निंग, एंड इन 1850 वाज अपॉइंटेड हेड पंडित ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। एंड then he also of course opposed child marriage, polygamy, and did much

0: प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स।
1: और आज ही के दिन एक और स्वतंत्रता सेनानी ने हमें अलविदा कहा, अरुणा आसिफ अली ने। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी जुझारू नेता श्रीमती अरुणा आसिफ अली का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरुणा आसिफ अली ने सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
0: एंड 2009 गायत्री देवी, वन ऑफ द लास्ट क्वींस इन इंडिया, पास्ड अवे दिस डे। The 90-year-old played an important role in politics and fashion in India and was once voted one of the most beautiful women in the world, according to Vogue magazine. And also, Farah, today, 1904, tributes to a trailblazer aviator. You know who I'm talking about. He had built one of the largest industrial houses in India. Jahangir Ratanji Dadaboy Tata remained the chairman of Tata & Sons for 50 years.
1: और भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। कुचिपुड़ी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण के फलस्वरूप उन्हें 6 फरवरी 1963 को मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की गई और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
0: एंड कंट्री पॉप सिंगर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स मार्टिना मैकब्राइड सेलिब्रेट्स अ बर्थडे टुडे। शी टर्न 60 इयर्स ऑफ एज। मार्टिना हैज बीन अवार्डेड 14 गोल्ड रिकॉर्ड्स, 9 प्लैटिनम ऑनर्स फॉर हर हार्टफेल्ट सॉन्ग्स। शी सिंग्स, प्लेज हार्मोनिका एंड द पियानो, एंड हियर्स अ स्नैच ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग अबाउट मदर डॉटर बॉन्ड। द लिरिक्स गो लाइक दिस, फ्रेंड्स: इन माई डॉटर्स आईज एवरी वन इज इक्वल, डार्कनेस टर्न्स टू लाइट एंड द वर्ल्ड इज एट पीस। दिस मिरेकल गॉड गेव टू me gives me strength when I am weak. I find reason to believe in my daughter's eyes.

0: बहुत ही खूब। और अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए सुभद्रा, तो कविताओं में यही है, मेरी बेटी की आंखों में सब बराबर है, अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और दुनिया शांति में होती है।
1: ब्यूटिफुल, यू कैन रिलेट टू इट, यू हैव
0: जी बिल्कुल,
1: डॉटर्स,
0: बेटियां वैसे भी बहुत ही प्यारी होती
1: ऑफ
0: हैं।
1: कोर्स ऑफ कोर्स।
0: और अब आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जो हमने बात करी थी संतूर और पियानो की, मुंबई मेरी है
1: yes,
0: जहां,
1: of course,
0: तो
1: you're going
0: उन्हीं
1: back
0: के
1: to the
0: गीत
1: guy.
0: की बात कर लेते हैं। जॉनी वॉकर की, भारत के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता ने आज ही के दिन अलविदा कहा हमसे, और इनका असली नाम था बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी। बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, कागज के फूल, प्यासा जैसी गुरुदत्त की फिल्मों में एक समांतर पहचान बनाने वाले जॉनी वॉकर ही थे। चोरी चोरी, नया दौर, मधुमती, मेरे महबूब, आनंद जैसी फिल्मों में जॉनी वॉकर मीठी फुहार की तरह राहत देने आते थे जब दर्शकों को फिल्म की गंभीरता से उभरना मुश्किल लगने लगता था। जॉनी वॉकर के अभिनय ने इतनी ऊंचाई दी कि आमतौर पर हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्मों की जगह गंभीर फिल्मों की गंभीरता के बर्फ को तोड़ने की जवाबदेही मिले। तो आइए आज उनकी हसीन यादों को ताजा किया जाए।

0: जाओ।
1: अरे गोली से क्या, मैं तो तोप से उड़ाने वाला था और दो वक्त ट्राई पन किया, लेकिन वाह रे औरत वाह, एक नजर एक मुस्कुराहट। जरा मैडम दोनों का सिंपल आप

0: घबराए। And friends, after Johnny Walker, we remember the founding father and primary architect of the modern jazz guitar style, Charlie Christian from Texas, USA. He was the first major soloist on the electric guitar. With Christian, the electric guitar became a distinct solo voice, equivalent to a saxophone, trumpet or clarinet, and capable of the same levels of expressiveness and intensity.
1: और श्रोताओं, आज आपके पसंदीदा संजू बाबा का भी जन्मदिन है। जी हाँ, 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड के शीर्ष प्रमुख एक्शन हीरो होने के साथ साथ एक संवेदनशील अभिनेता के रूप में वो उभरे और साथ ही उन्होंने हास्य शैली में भी उल्लेखनीय प्रशंसा मिली। 1981 में फिल्म रॉकी से संजय दत्त ने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म खलनायक हो, साजन या फिर अग्निपथ, मुन्ना भाई, MBBS, कई बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने काम किया और अपना लोहा मनवाया। तो आज हमने उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों को चुना है आपके लिए, आइए सुन लेते हैं।
2: मौत के साथ रेस लगाना चाहता है।
3: अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है
4: वो? भाग कैजुअलिटी में कोई मरने की आदत में रहा तो उसको फॉर्म भरना

0: और सुभद्रा, आपको पता है कि संजय दत्त की जो माँ थी नरगिस दत्त, उनसे भी वो बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा कहा करते थे कि वो उनकी स्ट्रेंथ थी। उनके गाने जाने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम देखा था।
1: वेरी सैड, वी आर वेरी सैड
0: जी। और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
5: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की

0: सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलु और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के

0: पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bags silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. We have more from a correspondent.
3: During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. Highlighting the importance of citizen-centric governance, the Prime Minister said that the people of India must remain at the center of governance. He reminded that every decision and policy should be guided by interests and aspirations of the common citizen. Mr. Modi Modi stressed that while India is making significant investments in infrastructure, equal priority must be given to developing indigenous technologies. The meeting was attended by Cabinet Secretary, Secretaries of Key Ministries and Departments and senior officials from the Prime Minister's Office. Aditya Pratap Singh, Akashvani.

0: कि 21 से 60 साल की उम्र के दरमियान वाली वो खवातीन जिनके कुनबे की आमदनी 25 लाख रुपए सालाना है, इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी।
1: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र सवा साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: भारतीय जनता पार्टी आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें यौम पैदाइश के मौके पर गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में पूरे मुल्क में श्री गुरु रविदास महाराज समरस्त संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। वाराणसी में सियर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जाय पैदाइश पर इस मुहिम का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास के जाय पैदाइश पर इस मुहिम का फौरी तौर पर आगाज होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां पर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस मुहिम के तहत संत रविदास के मुकद्दस जाय पैदाइश की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्क की दीगर रियासतों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी इनेकाद किया गया है जिसमे तकरीबन 25,000 लोगों के शामिल होने का इम्कान है। प्रोग्रामों की ये फहरिस्त माघी पूर्णिमा और संत रविदास की यौम पैदाइश यानी अगले बरस 20 फरवरी तक चलेगी। बीजेपी के सदर नितिन नबीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी समेत तमाम सरकर्दा लीडरान के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: केरलम में 14 में से 7 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में तेज बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आज सुबह सवेरे से औसत बारिश हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके में सरकार की वेश्याना कार्रवाई में गुज़श्ता 2 दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आजादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मवासलाती खिदमात बहाल की जाएं और वहां मीडिया और आज़ाद मुजाहिदीन को जाने की इजाज़त दी जाए। अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेस पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह दावा भी किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में ये इल्ज़ाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाज़ों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकामात को निशाना बनाया। ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों में गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया। स्कॉटस्टाउन स्टेडियम में इस मायनास चैंपियन का मकाम ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद रहा। 29 साल भारतीय वेटलिफ्टर ने कम्बाइन वजन 2,227 किलोग्राम उठाकर भारत का 7वां हिस्सा हासिल कर लिया। इस मुकाबले में हरजिंदर ने भी दौलत मुश्तरका का लगातार दूसरा तमगा हासिल किया। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में कांसे का तमगा हासिल किया था। इसके साथ ही ग्लासगो के इन खेल मुकाबलों में भारत के तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिनमें 2 सोने, 7 चांदी और 3 कांसे के तमगे हैं। इसी दौरान 4 भारतीय मुक्केबाजों का सोने के तमगे हासिल करने का यकीन है। ये लोग अपने तमगों को चांदी और सोने के तमगों में बदलने के मकसद से अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे।

0: जब ये लोग सेमीफाइनल्स खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल पर बहस को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पेपर लीक की रोकथाम के तरमीमी बिल पर जोरदार बहस। अखबार प्रताप की सुर्खी है, लोकसभा में मंगल को भी वक्फे सवालात खलल का शिकार रहा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर आजम ने आसाम के अराकीन पार्लियामेंट से मुलाकात करके सैलाब की सूरत हाल की मालूमात हासिल की, मदद का यकीन दिलाया। राजनाथ ने कोस्ट गार्ड में सिन्फी मसावात और इमदादी रकम से मुतालिक दो पॉलिसी असलाहत का आगाज़ किया। ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार ने दौलत मुश्तरका खेलों में पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ के शॉट पुट में सोने का तमगा जीतने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह है, इक्तसादी पाबंदियां ईरान पर फौजी हमलों से ज्यादा मुअसर हो सकती हैं, अमरीकी हुकाम का बयान। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुजाकरात में अमरीकी तजावीज मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने तुर्की को F-35 जंगी तैयारों की फरोख्त पर नेतन्याहू का एतराज मुस्तरद कर दिया।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में करीबी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग में मुस्तकबिल के इकदामात के एजेंडे का जायजा लिया। आज लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर आगे बहस होगी। दिल्ली सरकार ने हर अहल खातून को 2500 रुपए की माहाना माली इमदाद फराहम करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जाबराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्ता दो दिन के दौरान बढ़कर 30 तक जा पहुंची है। और मगरबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और ठीक 56 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी जो उस समय के साथ आती है, यानी जब घड़ियों की सुइयां ये बता रही होती हैं कि घर से निकलने का समय आ गया है, अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाने का समय हो रहा है। और ऐसे में शहर की व्यस्त सड़कें, मेट्रो की रफ्तार, बस स्टॉप पर इंतजार और ऑफिस की जिम्मेदारियां, ये सब होती हैं आपके कंधों पर और आप तैयार होते हैं इनका स्वागत करने के लिए। लेकिन ये याद रखिए कि हर दिन जब ये सब कुछ चल रहा होता है ना, इतनी जद्दोजहद होती है, उसके साथ साथ एक नया मौका भी तो होता है अपने सपनों को साकार करने का, एक मंच प्राप्त करने का। तो हर दिन तो चुनौतियां लेकर आएगा ही, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ जब हम एक गहरी सांस लेकर अपने आप से ये कहेंगे कि आज का दिन बोझ नहीं है, काम इतना बोझ नहीं है, बल्कि मेरा जो नजरिया है, मेरे जो चेहरे की मुस्कुराहट है, मेरे जो सहकर्मियों का अभिवादन है, वो सब कुछ इस दिन को और खूबसूरत बना रहा है, तो फिर दिन वाकई खूबसूरत हो जाएगा। मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से इसी नोट के साथ। और इस

मेरा काम जरूरी है, बात हो रही थी ऑफिस जाने की, मेट्रो की रफ्तार की, ऑफिस पहुंचने की जल्दी की, टाइम की पाबंदी की, सबकी। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है और वो है आपका स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ। देखिए, जब शरीर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप अपनी, अपने परिवार की, अपने सपनों की, अपने करियर की सारी जिम्मेवारियां पूरी कर पाएंगे। इसीलिए ऑफिस पहुंचते ही इस बात का ध्यान रखिए कि लगातार कुर्सी पर ना बैठे रहें, हर घंटे में एक दो मिनट के लिए खड़े होकर थोड़ा सा चलें, पर्याप्त पानी पीते रहें, लिफ्ट की जगह जहां संभव हो सीढ़ियों का उपयोग करें, जंक फूड की जगह फल सलाद या सूखे मेवे अपने साथ रखें क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी आपको काफी एनर्जी दे देते हैं, और जब आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद कुछ सेकेंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर दूर देखें। अगर तनाव हो गया है, स्ट्रेस हो गया है और आप थक गए हैं तो चाय कॉफी नहीं बल्कि एक मुस्कान के साथ थोड़ा सा रिफ्रेश फील कीजिए, संतुलित दिनचर्या रखिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको हेल्दी रखती हैं और हेल्दी रहने में कोई खर्चा नहीं है। लेकिन हेल्थ खराब हो जाए और उसे ठीक करना हो तो बहुत सारा खर्चा लगता है। इसीलिए इतना ज्यादा जो पैसा कमा रहे हैं ना कि इतना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, हर रोज सब कुछ करते हैं, इसीलिए तो नहीं कि ये सारा का सारा जो है ये आपकी दवाइयों में जाए। तो इन दवाइयों का खर्चा कम करने के लिए छोटी छोटी चीजें अपना लीजिए, बस फिर देखिए कि आप कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी एनर्जी के साथ हर रोज अच्छी तरह से काम कर पाते हैं।

जी तो अम्बे आपको याद दिला दें कि अक्सर हम बात करते हैं अपनी जिम्मेवारी की, स्वच्छता की, कि आसपास कूड़ा ना फैलाएं या कहीं डस्टबिन दिखाई दे तो उसका उपयोग करें, ऑफिस में अपने वर्क स्टेशन को, अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जहां तक संभव हो स्टील या कांच की बोतल अपने साथ रखें। लेकिन इसे समझने का एक और छोटा सा तरीका है, वो ये कि अगर हम अपने घर, अपने ऑफिस, अपने आसपास के 10 कदम के क्षेत्र को साफ रखने का संकल्प ले लें तो सोचिए पूरा शहर ही बदल जाएगा। कितना छोटा सा एक प्रयास है ना, कि सिर्फ 10 कदम का क्षेत्र हमें साफ रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और ऐसा परिवर्तन करते ही बहुत कुछ बदल जाता है। अब वो किसी और से शुरू हो ये क्यों सोचें, वो हम भी तो हो सकते हैं। इसलिए आज से ये भी एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे। अपने घर को तो रखते हैं, सिर्फ 10 कदम ही तो आगे रखना है। इतना सा करते ही आप उनके लिए भी अच्छे सपने बुन पाएंगे जो भविष्य में आपके इस धरोहर को आगे लेकर जाने वाले हैं।

जी हाँ, ऐसे ही छोटे छोटे सपने हम आपके लिए चुनकर ले आते हैं ताकि आपका दिन बेहतर हो सके। तो फिलहाल म्यूजिकल दिल लगी में अब समय है कि आप सुने समाचार। पूनम को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं नहीं जाएंगे, इंदु होंगी आपके साथ लेकर म्यूजिकल दिल लगी का अगला भाग। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड सुनते रहिएगा।

0: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आध्यात्मिक और शिक्षा गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं करते, बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गईं। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country.
3: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
2: The Patna High Court has set up fast-track courts in Patna, Lakhisarai and Purnia for the speedy trial of cases related to question paper leaks or other irregularities in competitive examinations, including NEET. Judges have also been appointed for these courts. According to the High Court administration, these courts will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Act 2024. Union Minister of Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal,

आइए आइए, क्योंकि ये जो शहर है प्यार बरसाता है, ये शहर वेलकम करता है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे कभी रास्ते खत्म नहीं होते। हम और आप थक सकते हैं लेकिन रास्ते बढ़ते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा थम जाइए, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, ये है म्यूजिकल दिल्ली, आपका वेलकम करते हुए कि जिंदगी काम ही नहीं गुनगुनाने का भी मौका देती है।

शुक्रिया तो हम आपका करना चाहते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि आपको इंतजार है कि शायद कल वाला जादू आज भी मौसम में देखने को मिल जाए, तो फिर कितना अच्छा हो। तो मैं आपको बता दूं कि आज तो नहीं, लेकिन हाँ शायद कल हो सकती है गरज बरज के साथ थोड़ी मध्यम सी बारिश, थोड़ी सी इसकी संभावना जताई जा रही है। और इसके अलावा अगर आप आज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि आप लेकर के निकलिए छाता अपने घर से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप छाता आपके पास होता है तो बारिश नहीं होती, और जब छाता नहीं होता तो फिर बारिश होती है। तो ये चांस बिल्कुल मत दीजिएगा। वैसे मौसम के साथ अच्छी बात यह है कि हम सब मौसम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि न तो ये आपका है न ये हमारा, और वैसे देखा जाए दूसरी तरफ से तो ये हमारा और आपका दोनों है, लेकिन मौसम किसी का नहीं है। और जो किसी का नहीं होता उसके बारे में बात करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा है। दिल का मौसम और आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड का मौसम, ये रहा आपके लिए।

तो आखिर मंजिल मंजिल हम क्यों फिरते हैं? जीवन का पहिया चलता रहे तो फिर मजा है, क्योंकि जिंदगी और सपने कभी भी रुकने वाले तो होते नहीं। और जिंदगी का चक्का चलता रहे उसके लिए चाहिए हमें, हाँ जी हाँ, वही जिसके बारे में हम बहुत बार सोचते हैं, जिसे हम कहते हैं पैसा। साथ ऐसा हो कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमें जमीन से उठा के शायद आसमान तक पहुंचा दे। और शायद भी कह गए हैं कि एक नस्ल जिसे मोहब्बत से ज्यादा सुकून की तलाश है वो इस वक्त हमारे पास है। दिल की उलझनों को सीधा बोल के देख लीजिए, अच्छा लगेगा। म्यूजिकल दिल्ली है ये। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 9:26 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और ये पुकार है सिर्फ उसके लिए जो गोल गोल घूमता है।

एक दो तीन चार बहुत सारे नंबरों के बाद शुरू हो जाती है गिनती फिर से एक बार। तो भाई देखिए कांवड़ यात्रा पर ट्रैफिक की एडवाइजरी को जान लीजिए, जहां भी आपको चांस मिले उसके बारे में पढ़िए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और मसूरी मार्ग पे रहेगी नो एंट्री कांवड़ियों के लिए, लेकिन फिर भी जब भी आप घर से निकलें तो ये देख लें कि ट्रैफिक की क्या स्थिति है। कभी कभी अपने सपनों की लिस्ट हम सब बनाते हैं, कौन सा सपना कब कहां कैसे पला और पूरा हो गया। सपनों की इस लड़ी में शायद ये वाला गाना भी तो हो सकता है, जो कल आपके सपनों में आया था वो आ गया इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल में म्यूजिकल दिल्ली में। जी हाँ, ये है आराधना फिल्म का गाना। 75 हफ्तों तक चलने वाली पहली हिंदी फिल्म 3 साल तक हॉल में चलती रही, 4 लाख में बनी, जिसकी कमाई पता है कितनी थी? 17 करोड़ 17 करोड़ रुपए।

और आ गई म्यूजिकल दिल्ली में। देखिए सपनों की रानी तो मिल भी जाएगी, लेकिन ये जो सुकून की तलाश में हम सब भटकते हैं ना, उसको पाने के लिए थोड़ी सी हमें कोशिश करनी पड़ती है। और उस कोशिश में एक छोटी सी चीज है जो बड़ी काम की है, और वो है नींबू। तो क्या आप जानते हैं कि पुलियागुड़ी से 16 किलोमीटर साउथ में तालुक हेडक्वार्टर कदयानल्लूर है और जिला मुख्यालय तिनकासी से 31 किलोमीटर साउथ में है, और ये एड्रेस है नींबू का, क्योंकि इसे भारत का नींबू शहर के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु का तेनकासी में है पुलियागुंडी, लेमन सिटी ऑफ इंडिया, जिसको जीआई टैग भी मिला है। अब आप कहेंगे कि मैं क्यों बता रही हूं, वो इसलिए कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रोज नींबू की खपत पता है कितनी होती है, 50 से 70 टन के बीच में। आया ना मजा।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

तो इंतजार हो गया खत्म। योग थेरेपी पीजी डिप्लोमा की काउंसलिंग 30 को होगी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी कार्यक्रम में। दाखिले के लिए पहली ऑफलाइन काउंसलिंग 30 जुलाई को द्वारका कैंपस में होगी। इसके बारे में और भी ज्यादा अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और भी जो चीजें हैं आपके हिसाब से उनको देखिए, समझिए और उसके बाद फिर आपकी बारी है। वैसे आपने RRR के बारे में सुना? अरे वही रिड्यूस रीयूज रीसाइकल वाइब्रेंट सेल्फी पॉइंट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, पता है इसके बारे में आपको? तो भाई ये जो RRR है ये सेंटर एंड सेल्फी पॉइंट का है और ये एक तरह से नई पहल है जिसको बनाने में 45 बेकार टायर इसमें लगे हैं, 3000 से ज्यादा पुरानी ईंटों का उपयोग किया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है कचरा मैनेजमेंट का। जाइए सेल्फी लीजिए और उसके बाद हमें बताइएगा कैसा लगा आपको।

और एक सूचना है हम सबके लिए, ई संजीवनी भारत सरकार की एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। इसके मुख्य दो रूप हैं, रोगी से डॉक्टर, पेशेंट टू डॉक्टर और डॉक्टर से डॉक्टर की परामर्श। ये डिजिटल स्वास्थ्य पहल नागरिकों को घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सीय सलाह और ई प्रिस्क्रिप्शन दवा की जो पर्ची होती है उसे प्राप्त करने की सुविधा देती है। तो इसके बारे में आपने अगर नहीं जाना था अब तक तो अब जान लिया है। यह है म्यूजिकल दिल्ली की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। कुछ चीजें बहुत ही जरूरत की होती हैं और उन जरूरत में से एक ये है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है।

कई बार इन गानों को सुन के ऐसा लगता है कि शायद 40-50 साल बाद इन गानों को सुनने के लिए ना एक अलग से लिसनिंग क्लब बनेगा और लोग कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या। कई बार कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं हमें बड़ी देर से लेकिन टिकती नहीं है। कोई नहीं जी, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने आप से बात करते हैं, अपना नाम खुद से बोल के देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम इंदु पांडे है। रिवायर करते हैं अपने आप को, दो विचारों के बीच में ठहर जाते हैं और ये गाना सुनते हैं।

के कुछ पूछना नहीं है, बस एक दूसरे को विश करना है गुरु पूर्णिमा के लिए, क्योंकि गुरुओं का जो स्थान है हम सबकी जिंदगी में वो नायाब है। और अब बजने वाले हैं 10, समय है समाचारों का। म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे आपको कैसी लगी आप हमें मेल करके बता सकते हैं, और तारीफ करने से संबंध बहुत ज्यादा मजबूत भी तो होते हैं। तो फिर मैं चली बस मिलने के लिए जल्दी से, और ये सुनिए आप समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को प्राप्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गईं। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट्स काउंट में समय निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्मस्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Domestic equity markets opened sharply higher this morning, with the benchmark indices gaining nearly 1% each as investors awaited the US Federal Reserve's policy decision. Sensex opened at 77,423.77, up 0.86%, while the Nifty started at 24,176.65, rising 0.80%. Sector-wise, most indices traded in the green in early deals. The death toll in the brutal state crackdown in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, has risen to 30 in the past 2 days, with many more injured. According to the local group Joint Awami Action Committee, JAAC, the Pakistani military fired on tens of thousands of peaceful protesters, killing 25 people on Monday and 5 more on Tuesday. The POJK is currently engulfed with a wave of protests against the Pakistani authorities since months. At the ongoing Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Gulveer Singh scripted history by becoming the first Indian athlete to win a medal in the men's event, claiming a silver. And that's the end of this news bulletin.
1: के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन रजत पदक किया अपने नाम। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय संगठन संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें सोमवार को 25 और मंगलवार को 5 और लोग मारे गए। पीओजेके पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की लहर से घिरा हुआ है। पाकिस्तान संबंधी मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश दास ने पाकिस्तान के कार्य करने के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए।
2: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक आम नागरिक संगठन को आतंकवादी घोषणा कर दिया, बल्कि उसके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है, और वो भी चुनाव प्रक्रिया के बीचों बीच। बहुत ही निंदनीय है पाकिस्तान का ये कायरता। इसीलिए जैक ने ये कह दिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा और ना ही पाकिस्तान से कोई बातचीत करेगा।
1: इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। साथ ही उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह भी किया है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और तैयार हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में हालिया हमले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के कुछ घंटों बाद हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति

0: ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी वार्ता समाप्त कर ली है और ये बातचीत सकारात्मक रही। ईरान के खिलाफ संयुक्त युद्ध शुरू करने के बाद नेतन्याहू और ट्रंप की ये पहली मुलाकात थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने चेतावनी दी है कि अफ्रीका भर में लाखों लोगों को आपराधिक गिरोहों द्वारा तस्करी करके ऑनलाइन धोखाधड़ी के धंधों में धकेल दिया गया है, जिससे सालाना अरबों डॉलर का अवैध मुनाफा कमाया जाता है। संगठन ने कहा कि मानव तस्करी के गिरोह नौकरी चाहने वालों को तेजी से निशाना बना रहे हैं और पीड़ितों को अवैध गतिविधियों में धकेल रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि केन्या, इथियोपिया और पड़ोसी देशों के नागरिकों को एशिया में चल रहे धोखाधड़ी के गिरोहों में तस्करी करके लाया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 863.1 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार ने कल संसद में बताया कि वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी और देश के मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत बाजार पहुंच बढ़ने के कारण हुई है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात 441.8 अरब डॉलर रहा, जबकि सेवाओं का निर्यात 421.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो देश की निर्यात वृद्धि में दोनों क्षेत्रों की संयुक्त शक्ति को दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि भारत के हाल के व्यापार समझौते के कारण विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और EFTA देशों के साथ निर्यात के अवसरों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। साथ ही इसने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और श्रम प्रधान को सशक्त बनाने में सहायता की है। मंत्रालय ने उद्गम प्रमाण पत्रों के बढ़ते उपयोग और व्यापक उत्पाद कवरेज के माध्यम से भारत के हाल ही में लागू किए गए व्यापार समझौते के बढ़ते उपयोग का भी उल्लेख किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 311,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान किया है। BIMCO ICS Seafarer Workforce रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री सोनोवाल को मौजूदा सुरक्षा स्थिति, समुद्री घटनाक्रम और आपात स्थिति में भारतीय नाविकों की मदद के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासियों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 27:49.78 में ये दौड़ पूरी की। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। 29 वर्षीय हरजिंदर कौर ने 227 किलोग्राम के कुल भार को उठाकर ग्लासगो में 8 भारोत्तोलक स्पर्धाओं में भारत का 7वां पदक हासिल किया। अब भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने श्रीलंका के साथ आगामी 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के लिए कल 15-सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये श्रृंखला 15 अगस्त से शुरू होगी। शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि KL राहुल उप कप्तान होंगे। साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता BCCI के उत्कृष्टता केंद्र की ओर से फिटनेस की स्वीकृति दिए जाने पर निर्भर करेगी, जबकि वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। दाएं हाथ के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी वापसी की है। श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाले में शुरू होगा। इसके बाद दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह और भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर हरजिंदर कौर को बधाई दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द वर्ल्ड न्यूज़।

0: खूबसूरत है।
1: और इसी खूबसूरत दुनिया में दिल का मेल बॉक्स है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और इस खूबसूरत दुनिया में बड़े खूबसूरत खूबसूरत सॉन्ग्स हैं आपके नामों के साथ। विठल कर्मादिया और शोभा कर्मादिया थांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से कहते हैं कि लता और किशोर का एक गाना है आंसू और मुस्कान फिल्म का, वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर जनाब, अच्छा लगे यही तो हमारी कोशिश रहती है आपके लिए। अग्रसेन यादव लिखते हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग, इतनी प्यारी बुधवार की सुबह है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम कहते हैं शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार है और मलयान सरधना मेरठ से अनिल जैन है, संयम है, मुस्कान है और जिव्यम जैन है। बड़ा बम चौ खंडवा मध्य प्रदेश से संजय बमारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी किट्टू हैं। और इसके अलावा हमें नमस्कार करते हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक। आप सब के लिए प्यारा सा गाना, क्योंकि कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जो हम सबको अच्छी लगती हैं, उसी में शामिल है ये वाला गीत।

जाने कैसी है आपकी रिक्वेस्ट जो आप सोचते हैं कि अगर हम भेजेंगे fmgoldairdelhi@gmail.com पे तो पूरी होगी भी या नहीं, आप भेज के तो देखिए। दिल का मेल बॉक्स है ये आपके लिए। गंज डुडवारा से शम्सुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान है। कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। बुलंदशहर से MS अब्बासी और उनके साथ पूरा अब्बासी परिवार है। गोविंदपुरा सीकर, राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार रिंकी शेखावत है। और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार हैं, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। कहते हैं कि एक लिस्ट होती है ना कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। किसी भी नहीं, हर गीत खास है क्योंकि कोई ना कोई गाना, उसकी बोल, उसकी जब वो गाना आया होगा वो वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो फिर ये वाला गाना आपके लिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

तो फिर आपको रुकना होगा क्योंकि ये है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे, और फरमाइश है आपकी मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी हैं। दिल का मेल बॉक्स में अपनी फरमाइश भेजी है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, और कहते हैं कि भाई देखिए कभी कभी हमें भी आप शामिल कर लिया कीजिए, कभी कभी तो नहीं अक्सर आप होते हैं हमारे दिल के मेल बॉक्स में। सरोज बंसल हैं, अनूप कौर हैं गुड़गांव से, और इसके अलावा यादव जी, शकुंतला यादव और गरिमा नई दिल्ली से, अग्रसेन यादव भी इनके साथ बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता, केशु, रिधान खुराना। कई बार जब मैं इनकी मेल पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ही अपने चंडीगढ़ वाले दोस्त को ये सरप्राइज देते होंगे, है ना। वैसे अच्छा आइडिया है कि आप अपनी चॉइस भेजिए, साथ ही अपने फ्रेंड का नाम भी भेजिए और अपने दोस्त को मैसेज कर दीजिए, और आप भी खुश, हम भी खुश, दोस्त भी खुश। और ये रहा आपका गाना।

गीता दत्त की आवाज़, फिल्म का नाम गृहस्थी और आपका नाम सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से, कोजागिरी कॉलोनी कोपर गांव से सुरेश, वर्षा, श्रद्धा मानसी निवासा से अमोल लोखंडे और शारदा दिल्ली रेडियो लिसनर क्लब से हैं बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, नवाब अहमद भारती, अशरफ अली, सिराज मथुन और सलीम अख्तर और अलीगढ़ से, जिनका हम नाम ले ही चुके हैं। और आपका गाना ये रहा, बहुत ही प्यारा सा गाना है।

0: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। कल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क तथा उच्च स्तर की तैयारी में है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके कारण भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। शिवसागर जिले में ही कल 7 और लोगों की मौत हुई। ऊपरी असम के जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में

हरी भरी धरती, सुंदर रंगा, प्रकृति का अनुपम घर है काजीरंगा। गेंडे, हाथी, हिरण निराले, जंगल गाय मधुर उजाले, ब्रह्मपुत्र का निर्मल पानी, जीवन की सुनाए कहानी, तस्वीर है आज उसी की हमारी जुबानी।

0: चले।
1: तो हम आपको आज लेके चलेंगे काजीरंगा, जिसके नाम का अर्थ होता है स्थानीय कारवी भाषा में, काजी का मतलब है बकरी या हिरण और रंगाई मतलब लाल, यानी कि लाल हिरणों की भूमि। असम के लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को केवल एक जंगल या नेशनल पार्क नहीं बल्कि असम की आत्मा और राज्य का सबसे बड़ा गौरव मानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक विश्व धरोहर स्थल है, भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। काजीरंगा का भूभाग घने जंगलों, ऊंची ऊंची हाथी घास, ऊबड़ खाबड़ सरकंडों, दलदलों और उथले तालाबों से भरा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान है ये, जो 1974 में अनाउंस हुआ था, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इसकी तस्वीर में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अगर आप जा चुके हैं तो फिर से याद कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि अगला टूर काजीरंगा का बने।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का जो घूमने के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है वो है नवंबर से अप्रैल तक का, क्योंकि मई से अक्टूबर तक मानसूनी बाढ़ की वजह से ये पार्क बंद रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जोरहाट 95 किलोमीटर, गुवाहाटी लगभग 217 किलोमीटर। सफारी जोन में आप जाएंगे तो कोहोर यानी कि सेंट्रल जोन है, बागोर यानी कि वेस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है और बुरा पहाड़। बागोरी जोन एक सींग वाले गेंडों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। सफारी दीजिए, हाथी की सफारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और काजीरंगा ऑर्किड पार्क और यहाँ की जो कार्बी कल्चर है उसे ज़रूर देखिएगा, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा काजीरंगा और उसके आसपास शांत नदियाँ हैं, झरने हैं, हरे भरे चाय के बागान हैं, कुल मिला के एक ऐसा मनोरम दृश्य जिसे आप अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम सबका स्वागत कर रहा है।

तस्वीर है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ का मुख्य आकर्षण जीप और हाथी की सफारी के साथ साथ यहाँ पे जो पेड़ है ना, वो पूरा का जो पूरा फैलाव है उसमें घूमना बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक सींग वाले गैंडे के रूप में ये पार्क बहुत प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर उसकी प्राचीन वंश और प्रागैतिहासिक रूप की वजह से जुरासिक युग का जानवर भी कहते हैं। ये उद्यान भारतीय जंगली जल भैंस, शाही बंगाल बाघ, एशियाई हाथी और दलदली हिरण का भी घर है, जिन्हें सामूहिक रूप से काजीरंगा के बिग फाइव के रूप में जाना जाता है। साथ ही 450 से ज्यादा प्रजातियां ऐसी हैं जो पंछियों की आपको मिल जाएंगी। भूर पहाड़ पर्वतमाला पहाड़ी भूभाग है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बेसिन का अद्भुत नजारा है। ये जो पूरा का पूरा दृश्य है ना, हाथियों को उनकी प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर प्रदान करती है। ये सब कुछ आपको नजर आएगा जब आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जाएंगे। और इसके अलावा और भी कुछ है, बहुत सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे तस्वीर में।

ये सचमुच में सच है, क्योंकि जब हम कुछ इस तरह की जगहों में जाते हैं ना, जहाँ पे हमारे आसपास नदी हो, पर्वत हो, चारों तरफ हरियाली हो, तो यूं ही लगता है कि जो भी चीज है उसको यूं ही रहने दो, बस आराम से उस पल को देखते रहो। तो फिर हरी घास का एक बहुत बड़ा आंगन है काजीरंगा, जहाँ आपको लगेगा कि नेचर ना गा रही है। गैंडा बड़ी शान से चलता है और जंगल अपनी कहानी कहता है। पंछी भी मीठे तराने गाते हैं, नदियां प्रेम फसाने सुनाती हैं। काजीरंगा का हर रंग आपको अच्छा लगेगा। तो फिर काजीरंगा जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, और वो ये कि मजबूत जूते पहने, जो कि भारी बारिश के दौरान आपको बचा के रखेंगे, और जो रास्ता है वो थोड़ा सा फिसलन भरा हो सकता है, तो उसमें भी अच्छा रहेगा। फोटोग्राफी के लिए और भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी या देर दोपहर का समय सबसे अच्छा होता है। तो आप जाइए काकोचांग या फिर कैफो लांगशो, वाटरफॉल है, हरे भरे चाय बागानों और रबड़ के पेड़ों के बीच में बहुत सुंदर ये वाटरफॉल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और घने जंगल, पथरीले रास्ते, इन सब से होकर के जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि काफी चैलेंजिंग ट्रैक है, और ये आपको चैलेंज करता है वो रास्ता कि भाई आइए तो सही। हल्के फुल्के हाइकिंग एडवेंचर की तलाश है तो फिर ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। रास्ते में जगह जगह हरे

पहाड़ों और चाय के बागानों के मनोरम जो नजारे मिलेंगे उसको देख के आप यही कहेंगे, अरे हम पहले क्यों नहीं आए काजीरंगा। ये तस्वीर है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ये तस्वीर है काजीरंगा की। काजीरंगा अनमोल खजाना है, भारत का सुंदर ठिकाना है। पेड़, नदी, नीला गगन और वहाँ की खामोशी, स्पेशली रात की, बस आप यही

0: सोच के देखिए कि पूरा चांद हो और जंगल, कितना अच्छा लगेगा, है ना। काजीरंगा और काजीरंगा के आसपास फैले जो विशाल बहुत बड़े चाय की बागान हैं, वो पूरा का पूरा नज़ारा, भाई वाह। और इसके अलावा आसाम के जो चाय का जो पूरी प्रोसेसिंग है, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे तोड़ी जाती है, फिर सुखाई जाती है, और उसके बाद आपको टेस्ट करने के लिए भी मिलेगा, बिल्कुल। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय ऑर्किड पार्क है, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको 500 से ज़्यादा वैरायटी के ऑर्किड मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये सब कुछ आपको, एक म्यूज़ियम है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और विज्ञान के जो बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं और फोटोग्राफर, और आसाम की परिस्थिति, वहाँ का कल्चर, उनकी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है चीज़ों को इकट्ठा करना, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे उनके बारे में लिखना हो, चाहे वो वहाँ का सांस्कृतिक रंग ही क्यों ना हो। बोडो, मिशिंग, कार्बी, दिमासा और तिवा जैसी असमिया जनजातियों की समृद्ध परंपराओं को लिखना, और उसके बाद, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, कि घूमना हमें बहुत रिच बनाता है। हमारे पास इतनी सारी कहानियाँ होती हैं ना, कि महफिल में बैठे कहानियाँ सुनाई और उसके बाद फिर छा गए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है तस्वीर। तस्वीर है आज काजीरंगा की, और काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा उसके आसपास भी बहुत कुछ है जिसको आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा।
1: तो सब लोग देखेंगे तो

0: 1 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

ऐसी कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुमझुम।

जब आप काजीरंगा के जंगलों में जाएंगे ना तो फिर कुछ ऐसा ही गुनगुनाएंगे। और हाँ, वहाँ पे जाके वहाँ पे असमिया थाली खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। मासूर तेंगा है, आलू पीटिका है, उबले हुए आलू को सरसों के तेल में कच्चे प्याज और हरी मिर्च के साथ मैश करके बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट डिश है ये। फिर खार है, केले के पेड़ की राख से छना हुआ पानी और ख़ासतौर पर खासोत सामग्री से ये तैयार किया जाता है, पारंपरिक व्यंजन है। बांस के कोपलों का खाना और उसके बाद पीठा, उसको तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही मीठा, प्यारा और सब कुछ अच्छा लगेगा। तो पंछियों की हल्की गुनगुनाहट, झाड़ियों में छिपी गिलहरियों की जो चहचहाट और आपके ख्याल, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे काजीरंगा में। ये तस्वीर आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।

तो फिर ये तस्वीर आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब बजने वाले हैं 12, समय है ये समाचारों का। मैं तो चली घूमने, आपकी यात्रा शुभ हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले। इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेणु। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं।

दिल अपना और प्रीत बराई, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो सबसे पहले आप सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जीवन को दिशा देने वाला आज का ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और योग परंपरा के अनुसार इसी दिन शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देकर अपने गुरु का पद संभाला था। ये दिन, ये त्यौहार उन गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है, जिन्होंने हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। हमारी संस्कृति और परंपरा में जीवन में ज्ञान, अनुशासन और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण की गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु गुरुवे नमः।

जी हाँ, हमारे गुरु भी हमारे माता पिता के समान होते हैं और हमारे माता पिता भी गुरु तुल्य होते हैं, आदरणीय होते हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के सानिध्य में करते हैं। तो सही गलत का फैसला हमारा करना यही हमें सिखाते हैं। तो ये गीत आपने सुना, फिल्म थी मैं चुप रहूंगी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इसी के साथ जो हम अपने कार्यक्रम में दिन विशेष की बात करते हैं, तो दिन विशेष में आज बता दें कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो माँ दुर्गा का वाहन है और शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक भी है और है हमारा राष्ट्रीय पशु। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य बाघ संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास का प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि बाघों का और हमारा साथ लंबे समय तक यूं ही बना रहे, जिससे हमारी भावी पीढ़ियां जंगल की इस शानदार प्रजाति को देख सकें। और जब बात ये हो, दिन विशेष की हो ही रही है, तो आजकल भाई सबसे ज़रूरी बात जो राष्ट्रमंडल खेलों की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है और इसमें अब बड़ी खुशी की बात है कि बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। तो बारिश के मौसम में पदकों की बारिश भी लगातार जारी है और कुल पदकों की संख्या अब हमारी 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। 40 वर्ष की शर्मिला धनखड़ जो हैं, 2 बेटियों की माँ भी हैं, उन्होंने ये सफलता विपरीत पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के बाद अर्जित की है और इन्होंने गोल्ड मेडल दरअसल इन्होंने अर्जित किया है और ये पैरा एथलेटिक्स इवेंट के सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके ये मेडल इन्होंने जीता है। और इसी तरह से ज्ञानेश्वरी यादव हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाया है, और बिंदिया रानी देवी हैं, शिल्पा शायला भी हैं, जिन्होंने अपने इवेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही आज एक हरजिंदर कौर जो हैं, वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक इन्होंने जीता है। तो हमारे कार्यक्रम की ओर से हम इन सभी एथलीट्स को बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, इसी तरह खेलते रहिए और देश का मान बढ़ाते रहिए। और अब समय है, जैसा कि आप लोगों को इंतजार होगा, अब समय है आज का सवाल पूछने का। तो आपको बताना है कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा आप अपने घर में किस भाषा में बात करते हैं, यानी आपकी मातृभाषा क्या है। तो अपने जवाब हमें लिख के भेजिए, वही हमारा एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके उत्तर का इंतजार।

अपना देश, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और दुनिया में कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें दुनिया उनके जाने के बाद भी याद करती है, सम्मान देती है, उनके कार्यों से प्रेरित होती है। ऐसे ही दो महान विभूतियों को आज हम याद कर रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनमें से एक हैं अरुणा आसफ अली, निर्भीक निडर स्वतंत्रता सेनानी और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराने जैसे साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें हमेशा याद करता किया जाता रहेगा। और इसी तरह से जब देश की प्रगति और उन्नति की बात होगी तो उसमें JRD टाटा की अग्रणी भूमिका की बात भी जरूर होगी। जमशेद रतन जी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा की आज जन्म जयंती है। वे देश के पहले लाइसेंसी पायलट थे और साथ ही देश की पहली कमर्शियल एयरलाइंस की नींव रखने वाले भी। वे पहले उद्योगपति थे, इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान, अन्य उद्योगों के माध्यम से उन्होंने देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उच्च नैतिक मानकों का पालन किया जिसमें ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता भी थी। तो आज हम सब अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं और उनके प्रति

कृतज्ञ हैं। तो इसी के साथ तो मैं अपना सवाल फिर से आप लोगों को दोहरा देती हूँ कि आज का हमारा सवाल ये है कि आपको बताना है कि आप अपने घर में हिंदी अंग्रेजी के अलावा कौन सी और भाषा में बात करते हैं, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, कुछ भी, जो भी आप अपने घर में अपने लोगों से बात करने में बोलते हैं उस भाषा के बारे में हमें बता दीजिए। तो हमारा मेल आईडी तो आपको पता ही है, fmgoldga@gmail.com। तो हमें है इंतज़ार आपके जवाबों का।

वंदना फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, आपके मेल्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम तक ये जो मेल एक पहुंचा है, गौरी शंकर नागलोई जी हैं, ये लिखते हैं कि राम राम। तो राम राम गौरी शंकर जी आपको भी। और ये कह रहे हैं कि 50 मील के बाद भाषा जो है वो बदल जाती है, थोड़ा बहुत जो शुद्ध हिंदी घर में नहीं कोई बोलता, वो जो है वो भाषा इतनी बदल जाती है कि आधी हिंदी आधी देसी भाषा हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ना, वो कहते हैं ना, हमारी देश में कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये लोकोक्ति जो है बिल्कुल चरितार्थ है कि थोड़े थोड़े दूर पे भाषा जो है हमारी बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं। और लेकिन यही तो खूबसूरती है, हमारे देश की विविधता है इसी में। और इसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये है महेश, हाँ महेश अग्रवाल जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो है घर में तो अपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हम लोग जो है अपने घर में अपनी ही भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपने लोगों से जब अपने में और हरियाणवी में बात करते हैं तो ठीक है। महेश अग्रवाल जी, बहादुरगढ़ से आप लिख रहे हैं, हरियाणा से, तो बिल्कुल हरियाणवी आपकी मातृभाषा है और आप अपने लोगों से अपने घर में हरियाणवी में बात करते हैं, तो ये बहुत ही अपनापन आपको महसूस होता होगा। सभी को महसूस होता है जब लोग अपने घर में अपने लोगों से जब तक अपनी भाषा में बात ना कर लें तो वो अपनत्व नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। और भाषा तो हमारी जो है वो कहा जाए कि शुरुआत में जिस भाषा में हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है, वो उससे उसकी कल्पनाएं और उसकी आत्मविश्वास इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उस भाषा को वो अच्छी तरह जान जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैसे कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ही को सूल भी उसी से मिटता है, मतलब यानी हमें सुकून भी देता है और इसी यहीं पर हमारी उन्नति का मार्ग भी है। और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करना चाहूँगी खुर्जा की। तो खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा शहर में प्राचीन और सुंदर सिरेमिक यानी चिकनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में इसे इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बनते हैं मिट्टी के कलश, त्योहारों के दिए, रोज़मर्रा के खाने पीने के बर्तन, सजावटी वस्तुएँ, फूलदान, जार, सो पीस और देवी देवताओं की मूर्तियाँ और भी कई सारे ढेरों सामान यहाँ पे बनते हैं जो किसी भी घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। और खुर्जा की ये कला लगभग 600 साल पुरानी है। दिल्ली के पास बसे प्रवासी कुम्हारों ने फारसी और मध्य एशियाई तकनीक को भारतीय डिजाइन के साथ मिलाकर इस कला को विकसित किया था। इन चीजों में हाथ से की गई जो नक्काशी होती है, फूल पत्तियां और लताएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखते ही बनती हैं। और परंपरागत रूप से ये हल्के सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर नीले या भूरे रंग से बनाए जाते हैं। इनमें उपयोग होने वाला रंग ग्लेज लेड फ्री फूड ग्रेड होते हैं जिससे कि माइक्रोवेव और सेहत के लिए सुरक्षित होते हैं। ये बर्तन चमकदार होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होते हैं क्योंकि ये बर्तन हाथ से तैयार किए जाते हैं। तो भाई अगर ये उम्मीद करें आप कि एक जैसे दो बर्तन मिल जाएंगे तो ये नहीं होता, एक जैसे दो बर्तन नहीं मिलते। और अगर आप इन चीजों के शौकीन हैं तो एक बार दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर में एक बार जरूर जाइए। और सिरेमिक पॉटरी के साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर मिलती है 115 साल पुरानी मशहूर मिठाई खुरचन, तो इसे भी लेना जरूर, मतलब जरूर लेना चाहिए आपको। और ये मिठाई ना दूध को धीमी आंच में उबालकर मलाई की परतें जमाकर बनाई जाती है, तो इस मिठाई का स्वाद भी वहाँ पर जा करके आप जरूर लीजिएगा।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म आवाज़ थी लता मंगेशकर और रफ़ी की। और इसी के साथ देखिए आपके मेल्स हमारे पास आते जा रहे हैं, और ये मेल है हमारे पास जो सुदर्शन मुखी का। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ये लिख रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। तो आप लिख रहे हैं कि मैं अपने घर में हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा पंजाबी और हरियाणवी में बात हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सुदर्शन जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पंजाबी में, यानी ये अभी आपकी मातृभाषा होगी और इसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें बात करते हैं। तो देखिए पंजाबी से याद आया मुझे, तो पंजाबी में बहुत मशहूर लेखिका थी अमृता प्रीतम जी, उनकी कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। कृष्णा सोपती जी हैं, वो लिखती थी। तो उनकी एक कविता की एक लाइन मुझे याद है, मैं तेनू फिर मिलांगी कब किथे पता नहीं। तो बहुत अच्छी मीठी लैंग्वेज है ये भी। और उसके बाद आप लिख रहे हैं ये हैं अग्रसेन यादव जी। तो अग्रसेन यादव जी भी लिख रहे हैं कि इन्हें भी अपने घर में और हम लोग आपस में सब अवधी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। और देखिए अवधी और भोजपुरी का नाम आपने लिया, तो देखिए ना भाषा हमें अपने क्षेत्र का की पहचान अपने आप हमसे करा देती है, क्योंकि अवधी और भोजपुरी आपने बताया तो अपने आप जो है इंसान सोच लेता है कि आप अवध क्षेत्र से संबंध रखते होंगे। जैसे कि अवधी बोली जाती है लखनऊ में, अयोध्या में, और भोजपुरी का भी वो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वही उसका क्षेत्र है, तो आप जरूर वहां से संबंध रखते हैं। और भाषा ना अपने साथ संस्कृति को समेटती है, क्षेत्र को समेटती है, तो भाषा को जिंदा रखना यही

बहुत ज़रूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो तभी आगे पहुंच पाएगी जबकि अपने घर में हम उसे अपने लोगों में बोलते रहेंगे, और इससे हमारे बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे और इस तरह से भाषा जो है वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उड़ान यात्री कैफ़े की, यानी कि उड़ान यात्री कैफ़े जो कि आप सुन रहे होंगे कि क्या है ये, तो ये है कैफ़े जो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, मिलने वाले महंगे खाने पीने के सामान से आम आदमियों को राहत दिलाने के लिए या हवाई यात्रा को बजट अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई एक ऐसी सरकारी पहल है जो कि भारतीय हवाई अड्डों पर आम यात्रियों को बेहद कम और किफ़ायती दर पे ये साफ सुथरा और भोजन पे जो है वो पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। यहाँ खाने पीने की चीज़ों को फिक्स और कम दाम इसके रखे गए हैं, जैसे कि 10 रुपये की चाय, 10 रुपये की पानी की बोतल, 10 रुपये की कॉफ़ी, 20 रुपये का समोसा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। कम दाम होते तो हैं इसके, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिलहाल ये सुविधा कोलकाता, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसी चुनिंदा हवाई अड्डों के टर्मिनल क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराई गई है। तो ये सुविधा कम बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तो भाई बहुत लाभप्रद है ही। तो अगली बार जब आप हवाई यात्रा पर जाएं तो उड़ान यात्री कैफ़े की इस सुविधा का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये सुविधा है आप ही के लिए।

जी, कदम के निशान बना के चले। और ये गीत अभी आपने सुना ज्वेल थीफ से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और इसी के साथ आपके मेल्स आते जा रहे हैं हमारे पास, और अभी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है वो है कमाईनी जी का, मोती लक्ष्मी नगर से। तो ये लिख रही हैं कि इनका गांव उत्तर प्रदेश में है, वैसे जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ अवधी भाषा में बात करते हैं, और जब वहाँ से लोग आते हैं तो उनसे भी अवधी में बात करते हैं। अपनी मातृभूमि में बात करना एक अलग सी खुशी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कमाईनी जी, बहुत ही खुशी होती है। और जब लोग एकदम से कहीं, आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे उस क्षेत्र में कोई आपको जानने वाला ना हो, लेकिन एकदम से जब अपनी भाषा वहां सुनाई देती है ना, तो कुछ अपनेपन का एहसास अब बाहर हो जाता है। तो घर में आप बात करती हैं, बहुत अच्छी बात है। यही हमारी चीज़ें जो है वो अगली पीढ़ी तक कन्वे होंगी और वो सीखेंगे भाषा को। और इसके साथ ही इदरीस सैफी जी कह रहे हैं कि खुर्जा रास्ते में पड़ता है, लेकिन इन्होंने ने ये नहीं लिखा है कि किस भाषा में ये बात करते हैं। भाई इदरीस जी, आपने लिखा खुर्जा रास्ते में पड़ता, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप खुर्जा जाते रहते हैं और बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें आप वहाँ से लाए होंगे, लेकिन अपने कौन सी भाषा में बात करते हैं ये भी लिख दीजिए। और इसके साथ ही नवीन भाटिया मोतीनगर से लिख रहे हैं कि ये घर में सिंधी बोलते हैं। तो भाई बहुत ही खूबसूरत भाषा है ये सिंधी, और आप बोलते हैं ये बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए अपने घर में लोगों से, इसी में बात करनी चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में अगली बात मैं करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य की बात, क्योंकि बरसात का मौसम देखिए चल रहा है, और आजकल बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बना रहता है। तो डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होने वाला वायरल बुखार है, जिसमें कि तेज बुखार, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में असहनीय दर्द, आंखों में दर्द, शरीर या चेहरे पर लाल रंग के दाने या चकत्ते उभरना, थकान और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर स्थिति में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टियां आना, नाक या मसूड़ों से खून बहना और प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण आप में भी या आपके परिजनों में दिखाई देता है तो इसे साधारण बुखार नहीं समझना चाहिए, बल्कि बिना देर किए आप डॉक्टर से संपर्क करें। और ये बिल्कुल ना करें कि थोड़ी राहत पाने के लिए आप कोई दर्द निवारक दवा लें और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, क्योंकि इसका असर तो इस डेंगू के बुखार में होता नहीं है। और डेंगू से बचा जा सके इसके लिए भी सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी हैं। और ये सावधानियां हैं जैसे कि आप पानी कहीं जमा ना होने दीजिए, क्योंकि देखिए ना, याद रखिए कि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है। कूलर, गमले, बाल्टी या छत पर पुराने टायर आदि में पानी इकट्ठा ना होने दें। जितना संभव हो शरीर को ढक कर रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करें। घर के आसपास कीटनाशकों का छिड़काव करें और पानी की टंकियों को हमेशा ढक कर रखें।

जी हाँ, ये गीत तभी आपने सुना, झुक गया आसमान से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इसी के साथ ही अब हमारे कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है। तो भाई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने श्रोताओं से, क्योंकि मैं इसके इससे ज़्यादा मेल नहीं ले पा रही हूँ। तो फिर कभी आपके मेल ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉ शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:11 और ठीक 1 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर हाजिर है देविका। और कलाकार बेमिसाल में आज जिस बेमिसाल कलाकार की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि आपके भाग्य में जो लिखा है ना वो 100 पर्दों को चीर कर भी आप तक पहुंच जाएगा। तो बात इन दोनों की है जब अभिनेता बलराज साहनी गुरुदत्त निर्देशक फिल्म बाजी की पटकथा पर काम कर रहे थे और किसी कारणवश उन्हें उस दिन यातायात का कोई और साधन नहीं मिला तो वो बेस्ट परिवहन की बस में चढ़ गए जिसमें बस के संचालक बदरुद्दीन काजी टिकट बांटने के साथ साथ यात्रियों का मनोरंजन भी कर रहे थे। कौन थे ये बदरुद्दीन काजी बताऊंगी आपको इस गाने के बाद। गीत हमने लिया है फिल्म एक फूल चार कांटे से। हसरत जयपुरी साहब के बोल हैं, शंकर जयकिशन जी का संगीत और आवाज मोहम्मद रफी की।

आशिकों में हम तो हैं इनमें, पलट पलट के यूं न दे, मर जाए राहों में दिलवाए।

आपके भी यकीनन आ गई होगी। फिलहाल अभिनेता बलराज सहनी बस संचालक बदरुद्दीन काजी के टैलेंट से इतना प्रभावित हुए कि अगले ही दिन उन्होंने बदरुद्दीन को नवकेतन के दफ्तर बुला लिया, जहां फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त, निर्माता देवानंद और बाकी नवकेतन के सदस्य मौजूद थे। और ये था बदरुद्दीन काजी साहब का जीवंत ऑडिशन। और गुरुदत्त द्वारा बदरुद्दीन काजी को जॉनी वॉकर का नाम दिया गया। इसके बाद बदरुद्दीन साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में बात जॉनी वॉकर साहब की।

0: क्यों ना दे मर जाए राहों में दिल वाले तेरी नजर से तो ना देख तेरी नजर से यूं ना दे।
1: जी हाँ, फिल्म एक फूल चार कांटे से गीत आपने सुना और मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई।

भाई इस गीत को कोई कैसे भूल सकता है। मिस्टर एंड मिसेस 55 का गीत आपने सुना, ओपी नैयर साहब का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल और गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।

0: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जी हाँ, कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। बद्रुद्दीन जमालुद्दीन और काजी यानी बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी यानी कि हमारे जॉनी वॉकर साहब का जन्म 23 मार्च 1924 को इंदौर में हुआ था और वो रोजी रोटी की तलाश में 1940 में तब के बॉम्बे आ गए और बलराज सहनी साहब के साथ हुए किस्से के साथ आपका फिल्मों में आगमन हुआ। और अपने इस लंबे फिल्मी सफ़र में जॉनी वॉकर साहब ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया।

राशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गीत आपने सुना। फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी, ओपन एयर का संगीत और अनजान साहब के बोल। श्रोताओं, अधिकतर फिल्मों में जॉनी वॉकर साहब कॉमिक रोल में ही नजर आए, इसलिए उन पर फिल्माए गए गीत भी कॉमिकल खुशबू लिए रहते थे। जैसे कि ये अगला गीत जो अब आप सुनेंगे, इस नगमे को रफ़ी साहब ने गाया है और फिल्म थी नाइट इन लंदन। और इस जो गीत है उसको लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, और इस गीत को सुनिए और खिलखिलाइए।

0: जी हाँ, ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ना, इस मुस्कुराहट की जो वजह है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब और जॉनी वॉकर साहब। फिलहाल आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

एक बज के 34 मिनट और ठीक 34 सेकंड कलाकार बेमिसाल आपके साथ है देविका, और बात हो रही है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब की, यानी कि जॉनी वॉकर साहब की। गुरुदत्त साहब ने नवकेतन में साक्षात्कार के बाद जॉनी वॉकर उनकी हर फिल्म में नजर आए। कौन भूल सकता है वो गीत जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं, बात अगर चंपी की हो या तेल मालिश की, ये गीत भरबस याद आ जाता है। फिल्म थी 1957 की प्यासा, गीत लिखा साहिल लुधियानवी साहब ने, एस टी बर्मन के संगीत निर्देशन में, और आवाज मोहम्मद रफी की।

जॉनी वॉकर साहब ने अपने फिल्मी सफर में पर्दे पर लगभग 121 गीत गाए हैं श्रोताओं, और सबसे रोचक बात क्या है जानते हैं, इनमें से 100 के लगभग गीत मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए हैं। सच पूछो तो जॉनी वॉकर और मोहम्मद रफी साहब की ये जोड़ी कमाल की थी। सुना रहे हैं आपको एक डुएट फिल्म CID से, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, ओपी नैयर का संगीत और आवाज गीता दत्त और मोहम्मद रफी की।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: एक बज के 45 मिनट और ठीक 30 सेकेंड, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है कलाकार बेमिसाल, देविका है आपके साथ और बात जॉनी वॉकर साहब की। जॉनी वॉकर यानी बद्रुद्दीन साहब ने अपने निजी जीवन में अभिनेत्री शकीला की बहन नूरजहां से शादी की।

जिनसे वो किसी फिल्म के सेट पे मिले थे। आज 29 जुलाई जॉनी वॉकर साहब की पुण्यतिथि है। एफएम गोल्ड परिवार इस अद्वितीय कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और सच मानिए, जितना लुत्फ मुझे आया है ये शो करने में, उतना ही आपको भी आया होगा गीत सुनने में और उनकी जानकारी प्राप्त करने में। फिलहाल आपको छोड़े जा रहे हैं फिल्म माई बाप के गीत के साथ। ओपी नैयर साहब का संगीत, कमर जलाल आबादी साहब के बोल और आवाज़, गीता दत्त, मोहम्मद रफी की।

0: उन्होंने कहा कि जनाब शाह ने सैलाब की सूरतहाल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और भारत सरकार की तरफ से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ, बहाली और तमाम जरूरी इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान शिवसागर, गोलाघाट, चराइदियो और जोरहाट के सैलाब से बुरी तरह मुतासरा जिलों में इमदादी और बाजाबादकारी के काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। आसाम सरकार ने हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बहुत से इमदादी और बचाव इकदामात का ऐलान किया है। इन इकदामात में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को फौरी माली इमदाद देना भी शामिल है। इसके अलावा मुतासर कुम्मों को भी माली मदद और तलबा को तालीमी मदद दी जाएगी। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतअद्दिद बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाजे में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने GFS गैलेक्सी, MT अलबाहिया और MT मुम्बासा समेत कई बहरी जहाजों पर इस माह आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाजों की बिला रुकावट और आजादाना आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दो दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहिमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी UK PNP ने गहरी तशवीश का जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। अभी खबर मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज दुनिया भर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज़ करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हमाहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज्यादा तकवियत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से 2 अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says center to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several

0: संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की CBI जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ ना कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
5: हाँ।
4: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
6: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
8: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
9: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में

0: शांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। उन्नत किसान लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं मनजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश कुमार का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और श्रोताओं, हर बार की तरह हम एक नया विषय लेकर आते हैं और आज का विषय है जल संकट से समाधान की ओर, व्यवहारिक जल संरक्षण। और हमारे जो फोन लाइन है वो खुल चुकी हैं और आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिलाना होगा 0112342108 नंबर, और वहीं हमारा दूसरा नंबर है 2342108 3। तो रजनीश, आज हमारे पास एक नया विषय है और अतिथि भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
1: जी, इससे पहले कि हम ये विषय शुरू करें, तो सबसे पहले तो हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर टीकम सिंह प्रधान, वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल
2: बहुत धन्यवाद,
1: आजकल जो आकाश से कहते हैं ना, जो अमृत बरस रहा है, और ऐसे में जैसा कि अभी मंजीत ने बताया कि जल संकट से समाधान की और व्यवहारिक जल संरक्षण, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और बड़ा समसामयिक विषय भी है। तो ऐसे में कि जल की संरक्षण की क्या उपयोगिता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय भी है और हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो जल की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो क्या है?
2: देखिए, जल जो है वायु के बाद दूसरा ऐसा साधन है जो पृथ्वी पे जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु सबसे पहले है, उसके बाद में जल का नाम आता है। जल है तो जीवन है, ये आपने अतिशयोक्ति सुनी होगी। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी जो भी जीव जंतु हैं सबके लिए, मानव के लिए भी, क्योंकि सारे जो भी साधन हैं फसल, हमारा कृषि के अलावा भी दूसरे औद्योगिक इकाई हैं, पशुपालन है, और वो सभी जल पे आधारित हैं। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार जो जल का संकट है वो बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण हैं जिनमें आप समझ सकते हैं, एक तो जल की मांग सभी जगह से बढ़ रही है, औद्योगिक क्षेत्र से भी बढ़ रही है, कृषि क्षेत्र से भी आ रही है। इसके अलावा जनसंख्या भी हमारी बहुत बढ़ रही है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, साथ ही हमारा जो जल का प्रदूषण है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो उससे भी इसकी अनुपयोगिता हुई है। तो उससे भी जो जल जो है एक संकट की ओर बढ़ गया है। आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी गर्मियों के टाइम में हम देखते हैं कि करीब काफ़ी हमारी जो शहर हैं, गांव हैं, उनमें पानी पीने की बहुत समस्या हो जाती है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया करीब 100 के आसपास जो हमारी जो सिटी हैं, छोटी बड़ी सभी सिटी, उनके अंदर पानी की कमी, बहुत पीने के पानी की कमी काफ़ी हद तक देखी गई है। और अगर हमने इसी तरह से इसको, मतलब पानी के जो उपयोग को अगर हमने सही सदुपयोग में नहीं बदला और हमने हमारी जो जल संरक्षण की नीतियों की तरफ अगर हम अग्रसित नहीं हुए, तो आगे आने में, आने वाले दिनों में जल एक बहुत भयानक रूप ले सकता है। क्योंकि पहले हम देखते थे हमारी जो जल की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता थी करीब 1700-1800 क्यूबिक मीटर पर ईयर थी, वो घटते घटते अभी 1400 के आसपास है। तो ये जो लगातार जो घटाव हो रहा है उसमें, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है और ये एक बहुत संकट का प्रतीक है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। खेती बाड़ी तो भूल जाइए, जीवन की जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, पीने की जो आवश्यकता है, जो हमारा डोमेस्टिक उपयोग की जो ज़रूरत है, वो पूरी करना सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए जल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वायु है, वैसे ही जल भी हमारा बहुत ही ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और जल ही जीवन है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, जल संकट जो हम पर आ रहा है, तो किस तरीके से और कौन कौन से ऐसे समाधान है जिससे कि हम इसे जूझ सकते हैं और हमें इससे समाधान मिल सकता है?
2: देखिए, जल संरक्षण क्या, जल जो संकट है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके बहुत सारे कई उपाय हैं। वो हमको एक को लेकर नहीं चलना है, हमें समन्वित रूप से सारे जो उपाय हैं उनको सभी को, और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें हर एक नागरिक का अपना योगदान होगा इन सभी उपायों में। तो जैसा कि हमने बताया कि जल हमारे पूरी देश में जो जल हमें जो प्राकृतिक रूप से मिलता है वो बारिश के रूप में मिलता है, और बारिश केवल 3-3.5 महीने होती है, जुलाई से लेकर सितंबर तक
1: जी।
2: उसके बाद में आप सर्दियों में देखेंगे एक आध रेन होती है, बहुत ना कुछ के बराबर पानी आता है, उससे पानी कभी बह के नहीं निकलता सर्दियों वाली रेन से। तो जो भी पानी जो आता है हमारे पूरे भारत देश में, क्योंकि मानसून क्लाइमेट वाला देश है हमारा भारत देश, इसके अंदर जो भी पानी आता है वो बारिश के टाइम में आता है। तो उस वो 3-3.5 महीने का जो समय है उसमें जितना पानी हमारा आ रहा है हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करना है, क्योंकि हमने देखा गया है कि करीब हमारा हम केवल जो बारिश का पानी जो आता है, हम जो बारिश से जो पानी हमें मिलता है उसका केवल हम 1/4 भाग ही उपयोग करवाते हैं, बाकी 3/4 भाग जो हमारा पानी है वो वापस समुद्र में चला जाता है, बह जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको रोकना होगा, और उसके रोकने के जो उपाय हैं उनको एक

0: अभियान के रूप में, उसमें सभी नागरिकों को, सभी संस्थाओं को, सभी कर्मचारियों को, सबको उसमें योगदान कहीं ना कहीं करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है?
2: हेलो।
0: हाँ जी
2: जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहां से बोल रहे हैं?
3: हेलो।
2: हाँ जी
1: जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
3: जी, मेरा नाम संगीत है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी,
3: पहले अब मेरा ये कि वो
0: आपकी आवाज आवाज थोड़ी के बराबर रहा नहीं रही है, ब्रेक हो रही है आवाज
2: थोड़ा नेटवर्क।
3: हेलो।
0: हाँ, नेटवर्क में आई है थोड़ी आवाज कम। हाँ जी,
2: मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि मौसम की जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम प्रश्न, जैसा कि आपने बताया कि हमें किस तरह से प्रबंधन जल का करना चाहिए, लेकिन एक मेरे मन में सवाल है और शायद किसी के मन में भी सवाल हो सकता है कि जब चारों तरफ बाढ़ है, जल ही जल है और फिर भी हम जल के संकट में हैं, तो ऐसा क्यों?
0: देखिए, मैंने बताया ना, ये बाढ़ बहुत क्षणिक है
2: जी,
0: ये अभी कुछ दिन के लिए बाढ़ है। और ये बाढ़ क्यों है, उसका भी कारण है, क्योंकि देखो, मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के चलते अभी बरसात का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है
2: जी।
0: आप कहीं देखेंगे, हमारा जो पूरे भारतवर्ष का जो औसत, जो वर्षा का जल की मात्रा का जो औसत है
2: जी,
0: वो करीब 1150 mm है, वो उतना ही है, लेकिन वो मिलता कैसे है वो उस पर निर्भर करता है। जैसे हमने कल देखा, हमारे पूरे NCR रीजन में बहुत भारी बारिश हुई, करीब 100 mm रेनफॉल एक दिन में बरस गई। तो जब इतनी भारी मात्रा में जब बारिश होगी तो ऑब्वियस है, उसमें मतलब बाढ़ की वो रूप में परिवर्तित होगा। जैसे हमारे कुछ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, आसाम है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है, वहाँ बाढ़ की स्थिति होती है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें अपने, क्योंकि बाढ़ का पानी एकत्रित धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना है
2: जी।
0: तो ये किसानों का जो खेत का पानी है, धीरे धीरे वो ही इकट्ठा होता है। अगर हम हमारे सभी किसान भाइयों को इसके लिए समृद्ध कर दें कि वो अपने खेत का पानी अपने खेत में रखें, जल को संरक्षित करें, फार्म पॉन्ड बनाएं, तो वो इतना ज़्यादा रन ऑफ नहीं होगा, तो वो बाढ़ का रूप भी नहीं लेगा। तो ऐसी स्थिति में जल का संकट तो इसलिए बनता है क्योंकि बाढ़ केवल एक दो दिन होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
4: जी नमस्कार। नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब की नमस्कार। मैं हरिंदर सिंह बोल रहा हूँ फरीदाबाद से।
0: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार।
4: सर, मैं भी एक शिक्षक हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी।
4: और आप बड़े जो अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, लोगों को जितना हम जागरूक करें, मैं भी बाद में खुद भी करता हूँ, ये सारी लोगों को भी बताता हूँ।
0: बिल्कुल।
4: लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है सर, मैंने वैसे एक बार पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को भी।
0: हाँ जी, हाँ जी।
4: कि जो जैसे हम जो अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: है ना सर। और हम जो है देखो, गली, एक एक गली, मतलब फरीदाबाद में भी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ भी देखो, सब गली कंक्रीटेड हमने कर दी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: जब हम ऐसा कर देंगे तो पानी का जो परकुलेशन होता है वो तो होगा ही नहीं, पानी नीचे कैसे जाएगा,
0: बिल्कुल,
4: तो समस्या तो बढ़ेगी पानी की।
0: बिल्कुल,
4: हम बिल्कुल बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, तो कहीं ना कहीं हमें आम लोगों को भी और सरकार को भी जो है थोड़ा सख्ती से ऐसा बनाना चाहिए ताकि इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप हो, रोड बने जहाँ पे गली मोहल्ले में या सोसाइटी में, कि पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। आपने जो पूछा है कि जो शहरी एरिया है वो तो है
2: जी,
0: वो ऑर्गेनाइज वे में हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब जितना भी हो रहा है, जो भी मकान बन रहे हैं उनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि वो पानी एक सिंक होल बनाया जाता है
2: जी,
0: जिससे वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, वो बहके ना जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए सबको, ये सभी नागरिकों का भी दायित्व है। मैंने बताया इसमें सबको अपना रोल प्ले करना है, तो उसमें नागरिक भी अपने घर में वो सिंक होल टाइप से बना सकते हैं और उसमें उस जो भी ज़्यादा बारिश का पानी आता है तो वो उसमें डालें, तो वो उनके उपयोग में नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो भूजल स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारा रिचार्ज होगा और हमारे जो पानी का संकट है, जो जहाँ से हम ग्राउंड वाटर लेते हैं, वो दोबारा से पुनः जीर्णोद्धार होगा, वो पानी वापस आएगा।
2: एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो, हेलो, हेलो।

0: हेलो
1: हाँ हेलो।
0: जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।
1: हाँ सर, पहले तो मेरी आप पर आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है?
0: हाँ जी, हाँ जी, अब
1: हाँ
0: सही
1: जी।
0: आवाज आ रही है आपकी।
1: हाँ सर, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी
1: हाँ
0: राजेंद्र
1: जी,
0: जी, हाँ जी,
1: हाँ जी। पहले तो आप तीनों साहिबान को तहे दिल से नमस्कार और आभार।
0: धन्यवाद जी।
2: शुक्रिया
1: जी, अब सर सवाल मेरा ये है कि पहले तो आप ये बताएंगे, जो वर्षा का पानी होता है, आप इसे अमृत कह रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: बात सही है, लेकिन जो गंगोत्री का पानी होता है, क्या वो वर्ष वो अमृत नहीं होता है सर, जो जहाँ से गंगा का उद्गम होता है? तो
0: देखिए
1: मैं एक
0: देखिए,
1: मिनट,
0: हाँ
1: हाँ जी, मैं
0: आपका हो गया
1: जानना ही
0: सवाल।
1: चाह सर मैं जानना ही चाह रहा था, इन दोनों में से शुद्ध पानी या अमृत आप किसे कहेंगे, पहला सवाल। दूसरा
0: हाँ जी
1: सवाल मेरा ये है सर कि जो वर्षा का पानी है सर, जैसे घर में पानी कॉर्पोरेशन जो आता है, वो हमें जितने पानी की हमें आवश्यकता है उतना मोटर ऑन कर लेते हैं, नल ऑन करते हैं, बंद करते हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: पर जो वर्षा का पानी है सर, इसको कैसे बचाया जाए? कहीं तो ये झमाझम बरसात होती है, कहीं बूंदाबांदी होती है, कहीं जो है ओले बरसते हैं सर, तो इसका
0: बिल्कुल
1: कोई ऐसा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपके दोनों सवाल का हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। देखो, पहला जो सवाल है, जल अमृत बोल रहे हैं हम, अमृत वर्षा हो रही है, इसका मतलब ये है, अमृत से नहीं, मतलब ये नहीं है कि वो अमृत है जिसको वो कर दें। अमृत का मतलब यहाँ है कि वो शुद्ध जल के परिप्रेक्ष्य में है। तो बरसात का जल मानते हैं कि सबसे शुद्ध होता है, कि उसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता। अगर जहाँ कहीं बहुत इंडस्ट्री है तो वहाँ हो सकता है कुछ
2: शुरू
0: शुरुआत की
2: में
0: जो बरसात होती है उसमें
2: एसिडिक
0: कुछ
2: जल
0: कण हो सकते हैं, लेकिन बाद में जो पानी होता है वो पूरा शुद्ध होता है। और गंगोत्री का पानी भी शुद्ध है क्योंकि वो बर्फ से पिघल के आ रहा है। तो दोनों पानियों की तुलना आप नहीं कर सकते, दोनों पानी शुद्ध हैं और दोनों ही अमृत हैं हमारे लिए। हम किसी एक को ऐसा नहीं कह सकते वो अमृत नहीं है। अमृत का यहाँ मतलब वही है कि वो शुद्धता से है।
2: यानी कि
0: और
2: पानी हमें जीवन देता है, उस
0: बिल्कुल,
2: तात्पर्य
0: बस
2: में हम
0: बस
2: इस
0: बस
2: बात को कहते हैं।
0: बिल्कुल,
2: जी
0: क्योंकि ये जीवन को बचाता है इसलिए इसको अमृत संयुक्ति दे दी है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जो कि पानी बरस रहा है शहरों में भी और नालियों में बह जाता है, उसका कैसे हम सदुपयोग करें, तो उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो शहरी लोग, जैसे मैंने बताया कि वो अपने सिंक होल बना सकते हैं अपने घरों में, और वो जो छत का पानी है उसको उसमें डालें तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और बाकी किसान भाई अपने लेवल पे जो इसका संरक्षण कर सकते हैं, उसमें दो विधि होती हैं। पहली होती है इंसिटू होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि खेत का पानी खेत में रहे, वो
2: जी
0: बाहर ना जाए। तो इसके लिए किसान अपने खेत की अच्छे से मेड़बंदी करे, और जो खेत में आपकी जो जमीन है उसमें उसके अंदर अधिक से अधिक पानी आपकी ज़मीन में जाए, इसकी व्यवस्था करें। उसकी साल में एक दो बार गहरी जुताई करें, तो वो पानी का जो आपका जो फिल्टर अंदर जाने की जो दर है वो बराबर बनी रहे। तो इस तरह से किसान भाइयों को वो करनी चाहिए, वो इनसीटू होता है। और ज़्यादा पानी बारिश होती है तो उस केस में क्या है, किसान भाई अपना फार्म पॉन्ड बना सकता है। जैसे अभी कल बारिश ज़्यादा हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो सारा पानी एकदम से फील्ड में नहीं जाएगा, तो वो
2: जी
0: फार्म पॉन्ड में इकट्ठा हो सकता है, वो किसी बाढ़ का हिस्सा नहीं बनेगा। तो बाद में जब पानी की ज़रूरत पड़े, सूखा आए, तो उस समय उस पानी को किसान भाई उपयोग में ला सकता है, ठीक है। और दूसरा, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, आप एक होता है चौड़ी मेड़ बना करके और फरो बना करके उस पर आपकी फसल को लगाएं। तो जैसे बारिश होगी तो वो पानी आपके फरों में रहेगा और आपकी फसल मेड़ पर रहेगी। तो पानी के संपर्क में ना आने से आपकी फसल भी अच्छी रहेगी और पानी आपका धीरे धीरे आपकी ज़मीन के अंदर ही समा जाएगा। तो ये इस तरह के इंसिटू के प्रोग्राम हैं। और अधिक से अधिक आप उसमें कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करें, जैसे कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है। तो ये सब क्या है, आपकी ज़मीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये इनसीटू विधि है। और एक्सीटू में तो मैंने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस केस में अपने को फार्म लेवल पे किसान भाई अपने फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। और बड़े लेवल पे, जैसे आप छोटी छोटी अगर नदियां हैं तो उन पे कम्युनिटी लेवल पे आपके चेक डैम बना सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी है तो फिर बड़े डैम का निर्माण कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो उससे जो पानी इकट्ठा होगा बाद में, जो जैसे मैंने बताया कि बाद के 8.5-9 महीने हमारे सूखा रहित रहते हैं जब बारिश नहीं होती, उसमें उस पानी को किसान भाई उपयोग कर सकते हैं सिंचाई के रूप में।
2: डॉक्टर साहब,
3: बिल्कुल
2: एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो जी
3: हेलो
2: जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं।
3: हेलो
2: हेलो

0: हेलो
1: जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
0: हेलो
2: जी, बोलिए आप।
1: बोलिए, आपकी आवाज आ रही है?
0: मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है
3: जी, तकनीकी कारणों से हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जल संचय की, तो आपने दो विधियां बताई और भारत सरकार द्वारा काफी सारी स्कीम्स भी चल रही है, और कैच द रेन की बात करें, इस तरीके की स्कीम्स चल रही है, तो सबसे पहले कैच द रेन है क्या?
1: देखो,
3: किस तरीके से इसका हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए?
1: देखो, कैच द रेन जो मैंने बताया वो है खेत का पानी खेत में रहे, उस तरह से है। कैच द रेन जो स्कीम है ये 2019 में शुरू हुई थी और जल शक्ति अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि किसान भाई हर एक छोटी लेवल पे हम जो बरसात का पानी आ रहा है उसको व्यर्थ ना जाने दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खेतों में, अपने फार्म पौंड में संरक्षित करें और उसको बाद में जब ज़रूरत पड़ने पर उपयोग में लाएँ। तो यही कैच द रेन का प्रोग्राम है, और बाकी बहुत और भी स्कीम है जिनके तहत किसान भाई जो जल संरक्षण की विधि है इसको, इससे लाभान्वित हो सकते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब, और भी सवाल आपसे पूछेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
0: हेलो
2: जी, आप अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं?
0: मैं गाजियाबाद से डॉक्टर पाल बोल रहा हूं।
2: जी डॉक्टर पाल, अपना सवाल पूछिए।
0: हम जितनी बात करते हैं किसान पे, हम मेनली कंसंट्रेट करते हैं कि किसानों के लिए, जबकि पानी का वेस्टेज डोमेस्टिक लेवल पे बहुत हाई हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आपने देखा जैसे आरओ है, अच्छा घर में आरओ है, कितना पानी हम वेस्ट करते हैं। कभी इसके संशोधन, कभी इसके यूटिलाइजेशन पर हम बात करें तो काफी पानी बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि पानी का आरओ जो बाहर आ रहा है उसको एक टैंक में जमा करके आप रसोई के बर्तन धोने में यूज कर सकते हैं।
2: जी, बिल्कुल जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना जायज है कि जो शहरी एरिया है हमारे, उनमें ये है, सभी के पास में आरओ है और आरओ से काफी मात्रा में पानी का वेस्टेज होता है, तो उसको ओपन नाली में ना डाल करके उसको एक टैंक बनाएं, उसमें उस पानी को इकट्ठा करें और बाद में अपने बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, उसमें भी आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। वो पानी दूषित नहीं है, वो ठीक ही होता है, केवल उसमें साल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा रहती है, इस वजह से पीने के योग्य नहीं रहता। बाकी हमारे दूसरे जो काम है उसमें उनको ले सकते हैं। इनका सही, बहुत अच्छा सुझाव है। तो जो हमारी बात सुन रहे हैं शहरी एरिया में, वो इस चीज़ को अपना सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, एक सवाल कि अगर हम कृषि के स्तर पर अगर हमें वर्षा जल संचयन करना होगा तो हमें क्या क्या तरीके अपना सकते हैं हमारे किसान भाई बहन, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश।
1: देखिए, कृषि के क्षेत्र पर जैसे मैंने बताया कि कृषि के क्षेत्र पर हम दो प्रकार से, दो विधि हैं जिसमें, जैसे हमने बताया, एक इन सीटू और एक एक्सीटू।
2: जी,
1: इन सीटू के अंदर किसान भाई जैसे अपने खेत पर ही जो बरसात का पानी है उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जो चारों तरफ की जो खेत की बैंड मैड है उसको थोड़ा बड़ा मजबूत करें जिससे बाहर पानी ना जाए। उसके बाद में हमारी जो जमीन है उसको ऐसा बनाएं जिससे कि जो पानी बरसे वो उसकी जमीन के अंदर जाए, तो उसकी जो जलधारण क्षमता है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसे हमें जो कार्बनिक खाद हैं, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, उसके बाद में मल्चिंग है, आच्छादन करें अपनी जमीन को, तो उससे जो है जो बरसात का पानी आएगा वो इकट्ठा नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़मीन के अंदर जाएगा और लंबे समय तक आपके फसल को उपलब्ध रहेगा। और एक दूसरा मैंने बताया एक्सीटू वाला, जिसमें किसान भाई अगर बहुत, क्योंकि बारिश कभी ज़्यादा होती है, जलवायु परिवर्तन के कारण आजकल कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उस स्थिति में हम जल का प्रवाह ज़्यादा होता है, तो उसको किसान भाई अपने छोटे अगर फार्म पौंड बना करके, आपका 5-10% आपकी ज़मीन है उसको आप एक फार्म पौंड में आप परिवर्तित कर दीजिए, तो वो उतना पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा और बाद में जब सूखा पड़े तो उस पानी को उपयोग में भी ला सकते हैं। और उपयोग में नहीं भी लाएंगे, वो पानी इकट्ठा रहेगा आपके, धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिसेगा, तो आपका जो भूजल स्तर है
2: जी
1: उसको रिचार्ज करेगा।
3: बिल्कुल, और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल पूछें और कहाँ से बात कर रहे हैं बताएं।
4: हेलो
3: जी,
4: मैं विनोद कुमार रामा बोल रहा हूँ जी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
4: ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से, उपराजी गाँव में।
1: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
4: सर, मेरा ये था कि मेरा गांव है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, दिल्ली में सर्विस करता रहता हूँ।
1: हाँ जी,
4: तो ये जो शहरीकरण जो हुआ है और जमीनों का अधिग्रहण जो हुआ है,
1: हाँ जी,

0: कृषि क्षेत्र ही बहुत कम हो गए और हरियाली जो बाग वगैरह हुआ करते थे गांव में सब सब कम हो गए। तो
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ये जो बरसात का जो जल संरक्षण की जो बात कर रहे हैं हम,
1: हाँ
0: एक
1: जी,
0: मेन कारण ये भी है कि हरित क्षेत्र हमारा कम हुआ है, कृषि क्षेत्र कम हुआ है। दूसरा
1: हाँ जी,
0: जो शहरीकरण जो मकान जो बने हैं, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ये कागजों में ही बन के ज्यादा रह गया है। अगर जैसे दिल्ली में ही आसपास NCR में सोसाइटी बन गई है तो सरकार ये योजना बनाए कि कंपलसरी कर दिया जाए कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम सब सोसाइटी में लगाया जाएगा। या दिल्ली में जो दो
1: बिल्कुल।
0: सौ 250 गज के जिनके पास मकान, ज्यादातर तो आप छोटे छोटे मकान है, 25 गज के भी है, 22 गज
1: विनोद
0: के
1: जी,
0: भी है।
1: आपका सवाल,
0: बिल्कुल,
1: आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप बताइए।
0: सवाल मेरा ये है कि सर, ये सरकार कोई ऐसे कड़े कानून बनाए या सरकार ऐसी योजना बनाए जो कागजों में ही ना रह करके और जो बाध्य हों लोग माने, और ये हमारी समस्या जैसे सर मैं बात की सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपके अच्छे, बहुत अच्छे सुझाव हैं और इन पे हम पे चर्चा भी की है पहले भी। तो एक बार पुनः हम बताएंगे कि ये जो इसके लिए, जल संरक्षण के लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें जल भी एक प्रमुख है, इसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए, हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार ही कोई कानून बनाए। अरे, अपने को खुद को भी हमें सोचना है कि ये एक प्राकृतिक संसाधन है और ये सबके उपयोग के लिए है, ना कि इसको व्यर्थ करने के लिए। तो सभी, अगर अगर कोई बिल्डर नहीं बनाता है, आपके सिंक टैंक नहीं करता है, उसमें सिंक होल नहीं करता है, तो उनसे कहिए वो लगाए। तो
2: जी
1: ये
2: बिल्कुल
1: तो
2: डॉक्टर,
1: सबकी जिम्मेदारी है।
2: जी डॉक्टर
1: बिल्कुल
2: साहब, हम बात करेंगे व्यवहारिक जल संरक्षण के लिए मृदा प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है कृषि के क्षेत्र में, तो
1: बिल्कुल
2: क्या
1: बिल्कुल,
2: कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: देखिए मैंने बताया कि मृदा प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब बारिश होगी तो इकट्ठा तो मृदा में ही करना पड़ेगा हमें। कैच द रेन स्कीम का भी उद्देश्य वही है कि हम
2: जी
1: उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़मीन में संरक्षित करें। तो इसके लिए मृदा का, जैसे मैंने ट्रीटमेंट बताया, उपचार करना है, उसके लिए उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाना है। उसकी जल धारण क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब हम उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ उसमें ऐड करेंगे, कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, गोबर की खाद के रूप में या कंपोस्ट के रूप में ऐसा करेंगे। और दूसरा है कि अगर आपकी ज़मीन थोड़ी ढालू है तो
2: जी
1: उसमें खेती क्रियाएं ढाल के विपरीत दिशा में करेंगे, कंटूर विधि कहते हैं उसको, उसके विपरीत दिशा में करेंगे। तो वो एक साथ पानी जैसे बरसा तो वो सीधा नालियाँ नहीं बनाएगा, वो थोड़ा रुक रुक के आएगा, तो उस सब पानी को समय मिलेगा, वो आपकी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इसके दूसरा एक और तरीका है कि अगर जहाँ ढालू ज़मीन है तो उसमें आप ऐसी फसलें लगाएं, ऊपर टॉप, जो टॉप एरिया है उसके अंदर आप सीधी खड़ी वाली फसलें लगाएं, फिर उसके बाद में जो फसल ज़मीन को आच्छादित करती हों, कवर करती
2: जी
1: हों, ऐसी फसल लगाएं जिसमें पल्स क्रॉप आती हैं, दाल दलहनी फसलें आती हैं, उनको लगाएं, फिर वापिस आपके जैसे मक्का है या बाजरा है वो लगाएं। तो इस तरह से आप पट्टी पट्टी में ऐसे लगाएंगे तो एक साथ जो है आपकी ज़मीन का भी संरक्षण होगा और पानी का भी अधिक से अधिक उपयोग, और अधिक से अधिक पानी आपका ज़मीन के अंदर जाएगा। तो इस तरह से हमें पानी का, जो ज़मीन का प्रबंधन करना चाहिए। आपके फसल का जो अवशेष है
2: जी
1: उसको भी हमें मृदा में मिलाना चाहिए और या मृदा के ऊपर रखना चाहिए आच्छादन के रूप में, जिससे हमारा पानी अधिक से अधिक वो ज़मीन के अंदर जाए।
2: बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लोग जो किसान है जल संरक्षण करता है, तो उसके बाद उसका सही से यानी कि सदुपयोग किस प्रकार से करें?
1: बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि हमने जल का संरक्षण तो कर लिया, कभी क्या होता है किसान भाई सही तकनीक नहीं अपनाता।
2: जी
1: अगर आपने पानी संरक्षित किया है तो उसको हमें सही विधि से अपने खेत में वापस उपयोग करना है। तो उसमें सही विधि अधिकतर जो हम देखते हैं कि जो बूंद बूंद विधि है या
2: जी
1: स्प्रिंकलर
2: डॉक्टर
1: विधि
2: जी
1: है, उससे उस पानी को उपयोग करना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर कर सकें। और आपको अगर ज़्यादा समय इरिगेशन देना है, एक या दो इरिगेशन देना है, अगर आप सरफेस इरिगेशन या क्यारी विधि से या बाड़ विधि से अगर पानी देंगे तो उसमें आपका पानी डबल ट्रिपल पानी लगेगा। तो
2: जी
1: इस प्रकार से किसान भाई उसका सदुपयोग यही है कि जब जरूरत हो, फसल की आवश्यकता हो, एक तो उसको ध्यान में रखें, और फसल में भी कौन सी अवस्था है जब पानी की अधिक आवश्यकता होती है, उस अवस्था पे उस पानी का उपयोग करें। और उपयोग भी आपके स्प्रिंकलर विधि से या बूंद बूंद जो विधि है उससे किसान भाई उसका उपयोग करें तो अधिक से अधिक उसको लाभ मिलेगा।
3: डॉक्टर साहब, एक अभियान ये भी चला था कि जो कि खेतों के आसपास जो

0: तालाब थे, जोहोर थे, तो उनका पुनरुद्धार भी हुआ था ताकि पानी का जो वापस है भूजल स्तर बना रहे, तो उस विषय पे भी आप थोड़ा सा बताइए।
1: बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट का वो अटल भू योजना है जिसमें इसको लिया गया, करीब 75 ऐसे बड़े बड़े जो तालाब हैं, क्योंकि देखो एक बार आपने तालाब बना दिया
0: जी,
1: बाद में उसमें पानी आएगा, पानी के साथ में मिट्टी भी आती है, तो कई सालों के बाद में उसमें मिट्टी जमा होती जाएगी, तो उसका जो क्षमता है, भराव क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हमें बीच बीच में जो सिल्टेशन बोलते हैं उसको, उस मिट्टी को वहाँ से निकालना चाहिए, और वो मिट्टी ऐसी अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें पूरी उपजाऊ मिट्टी बाहर आती है, तो किसान भाई उसको एज ए खाद के रूप में भी अपने वापस दोबारा अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो जीर्ण उद्धार उनका करना जरूरी है, उनको गहरा करना जरूरी है जो भर गए हैं उनको, और गवर्नमेंट की स्कीम हर पंचायत में इस तरह के फंड दिए गए हैं कि जो गाँव के जो कम्युनिटी लेवल पर जो तालाब होते हैं उनकी पुनरुद्धार किया गया है, उनको करके जहाँ बहुत ज़्यादा जल की संकट की समस्या है उन क्षेत्रों में हर एक पंचायत को उस तरह का निर्देश है, या आपके जो आपका एमजी नरेगा जो स्कीम है उसमें भी, जी राम जी बोलते हैं जो, उसमें भी वो उस तरह की लेवर से उनको सभी का जीर्णोद्धार करके और पानी का अधिकतर अधिक संरक्षण हो, ये व्यवस्था की जाती है।
0: तो डॉक्टर साहब, आप सभी जो हमारे किसान भाई बहन हैं,
1: हाँ जी,
0: और जो और भी श्रोता हैं, कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर किस तरह से, जिसे हम अमृत कह रहे हैं, जो जल ही जीवन की बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से क्या क्या आप हिदायत देना चाहेंगे, थोड़ा संक्षेप में चलते चलते।
1: बिल्कुल, देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये जल संरक्षण, व्यावहारिक जल संरक्षण, इसमें हर एक नागरिक का, हर एक संस्था का, सबका योगदान जरूरी है, सबका इसमें सहयोग होना जरूरी है, तभी हम इस जो जल संकट की जो समस्या है इससे हम निवारण पा सकते हैं। तो सब नागरिक, सब किसान भाई और सभी संस्था भी वो इसमें अपना योगदान दें जल संरक्षण में, और जो तकनीक हैं उनको अपना है, अगर अर्बनाइजेशन वाले एरिया में है वहाँ जो उनके फिट होती है उसको वहाँ अपनाएं, किसान भाई अपने लेवल पर अपने खेतों में अपनाएं, और जैसे हमारे एक श्रोता ने भी बताया, प्रश्न पूछा कि जो शहरी क्षेत्रों में जो आरओ का पानी है वो वेस्ट हो रहा है, तो ये हमारी सबकी व्यक्तिगत रूप से सबकी वो है कि सब उसको जिम्मेदारी से इनका उपयोग करें पानी का, और उसको व्यर्थ ना जाने दें।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज बेहद ही अहम विषय पर आप हमारे साथ जुड़े और स्टूडियो में आए, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और आज का विषय जैसे था कि जल संकट से समाधान की ओर व्यवहारिक जल संरक्षण, और कार्यक्रम के संयोजक है शिवनंदन लाल, प्रस्तुति तुषार पराशर, मुझे मंजीत कौर, और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश को दीजिए अनुमति। नमस्कार,
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर से शुरू हुई है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की रोजाना सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और असम के ऊपरी हिस्सों में आई भीषण बाढ़

0: मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत ने होर्मुज जलमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
2: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है। कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन
0: ऑफ टेंशंस। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी बयान में कहा कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और ये है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके रेडियो सखी रेणुका, लेकर कार्यक्रम मन भावन, जहाँ हम चलाते हैं आपके मनपसंद गाने। और आपको बस करना इतना है आपके मनपसंद गाने सुनने के लिए कि आपका मोबाइल फोन उठाना है, उसमें व्हाट्सएप पे जाना है और टाइप करना है नंबर।

9868868753। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9868868753। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके मैसेजेस को शामिल करूं कार्यक्रम में और आपका पसंदीदा गाना भी चलाऊं। पर आपको जैसे पता है कि पहला गाना जो है वो मेरी पसंद का होगा आपके लिए, और मैं देख सकती हूँ

हमारे श्रोता हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए गाना खत्म होने से पहले आपके मैसेजेस पढ़ लिया जाए, वरना आप हमसे नाराज़ हो जाते हैं। पर हमें पता है कि आपकी नाराज़गी में भी प्यार ही छिपा है। तो हमें लिखते हैं पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर, और ये कह रहे हैं कि हम रोज़ आपका कार्यक्रम सुनते हैं, धन्यवाद आपका तहे दिल से। हमें नमस्कार भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और हमें अगला मैसेज भेजा है, ये लिखते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और हमें नमस्कार भेजा है वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधाना खुराना, ये हमें

मैसेज भेज रहे हैं। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है और होस्ट मैडम जी को नमस्कार भेजा है। तुलसी मस्कीन, मीना मस्कीन, अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। और आगे हमें मैसेज किया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित अहूजा, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, मीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, इनका फिर से मैसेज आया है। और रेणुका दीदी, वेलकम, नमस्कार, आपको भी नमस्कार, ये हमें मोताला महाराष्ट्र से मैसेज आया है। और प्यार भरा आदाब हमें भेजा है शेख मूसा मोहसिन सनावाद से। और अगला मैसेज है पिप्रिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, इनका मैसेज आया है। और नमस्कार रेणुका जी, नमस्कार आपको भी, ये हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने, थैंक यू सो मच, तहदिल से धन्यवाद जो भी श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कमल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहर, और ये भी कह रहे हैं हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। अगला जो हमें मैसेज आया है वो है सलीम अख्तर, रेशमा बेगम, अलीगढ़ से। और अगला मैसेज ये संबलपुर कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये हमें भेज रहे हैं। और आदाब हमें भेजा है, ये भेजा है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, जी मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। अगला मैसेज हमें आया है शेरवानी स्कूल गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का तहदिल से फिर से एक बार मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप जो है इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, अपना प्यार हमें भेज रहे हैं। और मैं एक बार नंबर फिर दोहरा देती हूँ, आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं हमें और ये बता सकते हैं कि कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपका गीत जो है कार्यक्रम में शामिल करूँ। नंबर है 9868868753। अगला गीत हमें जो मैं जो आपके लिए चलाने वाली हूँ, इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी हमें संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत जलंधर से। और ये गीत गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, फिल्म है आप आए बहार आई। और आप जो है अपना मैसेज हमें भेजते रहिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है।

हमारे श्रोता हमें अपना प्यार अपने संदेश के माध्यम से भेज रहे हैं और बिहार से सुना जा रहा है हमें ये मैसेज आया है मोहम्मद आलम का। अगला जो मैसेज है ये है फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, ये हमें भेज रहे हैं अपना प्यार भरा मैसेज। अगला मैसेज हमें आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का। और अगला जो मैसेज है ये हमें आया है जी रिस्पेक्टेड रेणुका जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी आपको भी। ये है शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी। और अगला जो मैसेज आया है ये कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम, जैनब, धन्यवाद आपका मैसेज भेजने के लिए। अगला जो मैसेज है ये है नशरीन खान, वसीम खान और मुबीना खान, तावर गली, खंडवा, एमपी से हमें मैसेज आया है। अगला मैसेज है हमारा रेणुका जी नमस्कार, नमस्कार जी ब्रह्म सिंह गाज़ियाबाद यूपी से। और अगला जो मैसेज है ये है भवरपुर बसना से चंपा देवांगन, नेहा, राजू, जगदीश देवांगन, राधे श्याम देवांगन, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। सरोज बंसल, अनूप कुमार गुरुग्राम से हमें जो है मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है ये है जी संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, ये हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज भेज रहे हैं। आदाब आरजे जी, आदाब आपको भी। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें आदाब भेज रहे हैं अपना। और अगला जो मैसेज है ये आया है हमें मैडम जी आपको हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी प्यार भरा आदाब। ये हैं शमशुल, कमर राही, शाहीन, फातिमा और अनु, ये गंज डुंडवारा से मैसेज आया है हमें। अगला जो मैसेज है ये है हमें भेजा ये रुचिका रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रामेकर परिवार जो है पूरा हमें प्यार भेज रहा है। रहा गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। और आपका जो ये मैसेज है ना ये हमें बताता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम भी जो है आपसे बेहद प्रेम करते हैं। और जब आप

बताते हैं कि आप इतनी दूर दूर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उसका लुत्फ उठा रहे हैं, तो हमें भी एक कनेक्शन महसूस होता है। चाहे आप उतनी दूर बैठे हों, ऐसा लगता है कि हम भी आप ही के परिवार के एक सदस्य हैं और आप भी यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आपको बस करना इतना है कि अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए, व्हाट्सएप पे जाइए और लिखिए नंबर 9868868753 और भेज दीजिए अपना मैसेज और अपना जो गीत आप सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में। वो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपका जो गीत है वो शामिल करूं इस कार्यक्रम में। अगला जो गीत है वो मैं अनीता वर्मा के लिए चलाने जा रही हूँ, द्वारका से इन्होंने हमें मैसेज भेजा था, और फिल्म है पॉकेट मार और गीत है

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक।

0: उचित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम मन भावन, आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि कई सारे मैसेजेस हम तक पहुँच चुके हैं और कई श्रोता जो हैं थोड़े से नाराज भी हैं हमसे कि हम उनका मैसेज शामिल नहीं कर रहे। देखिए, हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे होंगे ना, हमारी भी कुछ सीमाएँ हैं, वक्त की पाबंदी है, तो इस वजह से ही जो है हम आपका जो संदेश है हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से माफी। हमें मैसेज भेजा है एक पुराने श्रोता ने, ये हैं जी प्रकाश गोगिया, सत्यप्रकाश गोयल, मनोहर लाल, गांधी, भगवती, सलांकी, प्रेम गुरु, सीताराम बाजार, दिल्ली से। ये थोड़े से नाराज हैं कि हमने इनका मैसेज शामिल नहीं किया। अभी मैंने आपका मैसेज शामिल कर दिया तो नाराजगी हटा दीजिए। अब अगला मैसेज है उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनोज कुमार, सोनत कुमार, ये ख्याला से हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये आया है हमें जिला खरगोन सनावाद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जी, इन्होंने हमें अपना मैसेज किया है। अगला मैसेज हमें आया है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, ये हमें अपना नमस्कार भेज रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है नांगलोई से और ये आपने अपना नाम नहीं लिखा, गिरीशंकर जी, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। और अगला जो मैसेज है ये है रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, ये हमें राजस्थान से जो है मैसेज भेज रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है छिपा कॉलोनी खांडवा से, मोहम्मद यूनिस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज वैशाली, गिरीश बाम, अजिंक्य बाम, अंजलि अथर्वा, जीत वडोदरा गुजरात से, इन्होंने हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज आया है हमें मोहम्मद आलम बिहार से, इन्होंने लिखा है हमें मैसेज, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खारेवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खारेवाल, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है ये है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, ये हमें लिख रहे हैं गंज टुंडवारा से। और अगला जो मैसेज आया है हमें ये आया है जी गणेशपुर उत्तर प्रदेश, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, फारूक शेख, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये है सोनू भाटिया, एंजल भाटिया, हरजिंदर सिंह भाटिया, पप्पी भाटिया, ये हमें जमशेदपुर से जो है मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये है खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा हबीबा, ये हमें मैसेज कर रहे हैं पटियाला रोड गुंजटनवारा से। गुंजटनवारा में हमारे काफ़ी सारे श्रोता जो हैं सुन रहे हैं इस वक्त शायद हमें, या मेरा ऐसा जो है मौका मिल रहा है मुझे वहीं के मैसेज पढ़ने का। मैं पर कोशिश मेरी जैसे मैंने आपको बोला यही है कि मैं सभी के मैसेज शामिल करूं, मेरा बस चले तो बस मैं आपके मैसेजेस पढ़ती रहूं क्योंकि इतना प्यार है उन मैसेजेस में। राजस्थान से हमें दिनेश सोलांकी, पंकज धाई, राजकुमार, विजय कुमार, राकेश, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है हमें चौटाला हरियाणा से आया है, ये हैं संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, और अगला मैसेज साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमित सिंह मीता, खुशनुमा मीता, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। एक बार मैं नंबर फिर दोहरा देती हूँ आपके लिए, 9868868753, इस पर हम आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अगला जो गीत है ये मैं पेश करने जा रही हूँ बबलू शेख सोहेल सैयद शमीर मोताल बाजार से, इन्होंने फरमाइश की है, फिल्म है बाजार और गीत है

मैसेजेस आ रहे हैं हमें लगातार, और हमें अगला मैसेज भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, इन्होंने हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज आया है, हमारा मैसेज शामिल करें, हम ज़रूर कर रहे हैं, आप नाराज़ मत होइए। ये लिखा है हमें ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, ये हमें लिखते हैं फाजल का पंजाब से। अगला मैसेज हमें आया है संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, ये हमें लिखते हैं बेघरा दुर्ग से। और अगला जो मैसेज आया है ये आया है राकेश कुमार, मनीष कुमार, आपका मैसेज मैंने शामिल किया था विष्णु गार्डन से, ये हमें लिखते हैं। और अगला जो मैसेज है वो है स्वरूप आनंद सरजाल, जोधा पीपल, अंबिकापुर सीजी से, और ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, ये सभी लोग हमें जो हैं सुन रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मैसेज हमें आया है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, ये जो है हमें मैसेज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और अगला जो मैसेज आया है ये है मोहाली चंडीगढ़ से, ये हमें लिखा है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज है ये आया है अलीगढ़ यूपी से, सलीम अख्तर जो हैं ये हमें लिख रहे हैं मैसेज। और अगला मैसेज हमें आया है जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी पर्ल डिकेस्ट्रो और विलियम डिकेस्ट्रो, ये हमें लिखते हैं जनकपुरी सहारनपुर से। अगला मैसेज हमें आया है सबा अंसारी, शकील अंसारी, हीना अंसारी, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी, अंजलि, ये हमें लिखते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा से, हमें मैसेज आया है जी। और अगला जो मैसेज आया है ये है किशोर नगर अमरावती से, हीरामंड शिंडे, शीला देवी शिंडे, सिद्धार्थ गोंडानी, ये जो है हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो प्यार भरा मैसेज आया है ये है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखना सफद, जूही इकबाल, आमना, आसमा परी इकबाल, अहमद फूल वाले और इमरान अहमद, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। दिनेश चौहान रामदेवरा से, बाबूराम जयपाल डांगरी से, खुदा बख्श गांव खलीफा की बावड़ी से, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और बाड़मेर से भी हमें मैसेज आया है बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार का, रुचिका रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, ये भी हमें धन्यवाद भेज रहे हैं अपना। ये सभी श्रोता जो है अपने मैसेजेस के थ्रू यही बता रहे हैं कि ये हमें कितना चाहते हैं और कितना पसंद करते हैं। और अगली जो फरमाइश है वो है फिल्म तीन देवियां से, और इसकी फरमाइश महाराष्ट्र से हुई थी, पीएस नवाकर, निर्मला, विशाल, सोपान ताइडे, नारायण, आशीष, इन्होंने जो है इसकी हमें फरमाइश की थी। और जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि मैं चाहती हूं कि मैं बस आपके मैसेजेस पढ़ूं, पर ऐसा नहीं हो सकता, ये बात आप जानते हैं। तो जिन श्रोताओं के मैसेजेस को मैं नहीं शामिल कर पाई उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगली बार मैं आपका मैसेज ज़रूर शामिल करूं, पर हमें ये पता है कि आप हमसे ऐसे ही प्रेम करते रहेंगे, आप हमें सुनते रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके मैसेजेस को शामिल कर लूँ जितना हो सके। तो अगला जो मैसेज आया है ये है शबाना भारती, नवाब अहमद भारती, अरहान भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब बल्ली मारान से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला मैसेज हमें आया है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, और ये हमें वाइट फील्ड बेंगलुरु से लिखते हैं। और आपके मैसेजेस में ये जो नाराज़गी है ना, ये हमें ये बताती है कि आप कितना प्यार करते हैं हमसे, जो इतने हक से हमसे नाराज़ हो रहे हैं। जहाँ प्यार होगा वहीं तो गुस्सा भी होगा ना। तो इससे ये पता चलता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। अगला जो मैसेज है, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये हमें छत्तीसगढ़ से जो है मैसेज कर रहे हैं। विष्णु गार्डन न्यू दिल्ली से हमें लिखा है नईम खान, मुजस्सिम अक्रम, निसार अरमान, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये है मोहम्मद यूनिस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, आयुब खत्री, छिपा कॉलोनी खांडवा से। और अगला जो मैसेज आया है ये है विपिन नेहरा, काशीपुर से ये हमें सुन रहे हैं। अगला जो मैसेज है ये है गांव शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, ये हमें सुन रहे हैं और इन्होंने हमें प्यार भेजा है अपना। अगला जो मैसेज है इंद्रानगर से जगदीश देवांगन, राजू देवांगन, चंपा देवांगन, राधे श्याम देवांगन, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। महिरा परवीन हमें जो है भोजपुर बिहार से मैसेज लिख रही हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, और ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज है संजय पाटिल मलकापुर, ये हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। और सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पाठक, इन्होंने भी हमें अपना मैसेज भेजा है। और अगला जो मैसेज है ये है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला जो मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खारेवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खारेवाल, इन्होंने भी जो है हमें मैसेज किया है। और आपके इन प्यार भरे मैसेजेस का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारा जो कार्यक्रम है वो लगभग समाप्त होने जा रहा है, तो आखिरी जो फरमाइश है ये है कोलगांव से पांडु उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडुरंग, इनकी जो फरमाइश है ये चलाने जा रही हूँ मैं। गीत ये है फिल्म लैला से और गाया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। तो चलिए सुनते हैं।

श्रोताओं, आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन श्रोताओं के मैसेजेस मैं शामिल नहीं कर पाई मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपका मैसेज ज़रूर शामिल करूं अगली बार, और आप हमें ऐसे ही जो है बताते रहिए कि आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम। आप हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी हमारी है fmgoldairdelhi@gmail.com, या फिर उसी नंबर पर जो मैंने आपको बताया था 9868868753, इस पर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। और आप सुनते रहिए FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं आपसे मिलूंगी 5 बजे लेकर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, और तब तक के लिए आप सुनते रहिए FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित हो गया है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में राज्य सरकार और केंद्र प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे मामलों की रोजाना सुनवाई हो सके। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में और संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद डॉ. राम मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि पिछले 123 वर्षों से वंदे मातरम गीत का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गीत से प्रेरित होकर देश के क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। YSRCP के गोल्ला बाबूराव ने सदन के सभी सदस्यों से राष्ट्रगीत का सम्मान करने का

0: अनुरोध किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने के लिए सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस चर्चा में बीजेडी की सुलता देव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, एआईएडीएमके के डॉ एम थंबीदुरई और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की और असम के ऊपरी हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री ने दोहराया है कि इस कठिन समय में केंद्र सरकार की सभी एजेंसी और संसाधन असम के लोगों की सहायता के लिए तत्पर हैं। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में कई समुद्री जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said, "The new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth." Dr. Singh criticized Leader of the Opposition Rahul Gandhi for using unparliamentary language, calling it inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said that the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded that he should apologize in the House for his remarks. Earlier, participating in the discussion, Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi said that the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. The House also witnessed 2 brief adjournments during the discussion. After the passage of the bill, Lok Sabha Speaker Om Birla adjourned the House till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026.

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: ये गीत आप सुन रहे हैं हाफ टिकट।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: www.upvetuniv.edu.in पर देखा जा सकता है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर उसे पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रभारी भर्ती कोष्ठ DUVASU मथुरा को 30 जुलाई 2026 तक अथवा उससे पहले भेज सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सहायक, कनिष्ठ निजी सहायक, अपर श्रेणी लिपिक और आशुलिपिकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नवरंगपुरा अहमदाबाद में प्रशासनिक अधिकारी का एक पद, लेखा अधिकारी के दो पद तथा क्रय एवं भंडार अधिकारी के दो पद रिक्त हैं। संपूर्ण विवरण के लिए देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की वेबसाइट। इसके अतिरिक्त 25 से 31 जुलाई 2026 तक के रोजगार समाचार पत्र में भी इस विज्ञापन को देख सकते हैं। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली कार्यकारी सहायक महानिदेशक हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी देख सकते हैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.powerfoundation.org.in। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक प्रबंधक ट्रांसमिशन, सहायक प्रबंधक हाइड्रो, इन पदों से जुड़ी शर्तों के लिए भी आप देख सकते हैं वेबसाइट www.powerfoundation.org.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर गुरु अष्टकम की ये पंक्तियां गुरु की महिमा और शिष्य के जीवन में उनके महत्व को बहुत गहराई से समझाती हैं। इनका भाव है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु के चरणों में समर्पित होता है, जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना सीखता है, वो धीरे धीरे संसार के मोह और बंधनों से मुक्त होकर अपने भीतर बसे दिव्य स्वरूप का अनुभव कर पाता है। गुरु केवल बाहरी ज्ञान देने वाले नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर छिपे सत्य और चेतना के मार्ग को दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा इसी दिव्य संबंध को नमन करने का अवसर है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस प्रकाश के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर किया। आध्यात्मिक गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। वे हमारे मन को स्थिरता, विचारों को पवित्रता और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। एक गुरु शिष्य को केवल सफल बनना नहीं सिखाते, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना भी सिखाते हैं। ये हमें अहंकार से

नम्रता की ओर, भ्रम से ज्ञान की ओर और अशांति से आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए उन सभी गुरुओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करें जिनकी सीख और आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव मार्गदर्शक प्रकाश बनकर साथ रहते हैं।

0: A guru is not just a guide, but a source of wisdom, inspiration, and inner awakening. From spiritual masters who lead us towards self-realization, to teachers who shape our thoughts and dreams, gurus illuminate the path of life with knowledge and values. On this Guru Purnima, we celebrate this timeless bond of gratitude and learning. We will discuss the significance and deeper meaning of this sacred day in our Dateline segment further.
1: गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सुन रहे हैं न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा. मैं हूं विशाल शर्मा और आज मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा. अगले आधे घंटे तक हम इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार. क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आज क्या उनके पास खास रिपोर्ट्स हैं, और खेल के मैदान की गतिविधियां भी होंगी. साथ ही साथ आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी हम डालेंगे एक नज़र, और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज है पुण्यतिथि या आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म.
0: Absolutely. Namaskar, Radha. Welcome to Parikrama. Without much ado, let's start with the headlines, Vishal. Lok Sabha passes Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Rajya Sabha passes Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026.
1: गृहमंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की, कहा कि केंद्र सरकार मुश्किल समय में असम को हर संभव मदद देगी.
0: India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored.
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद मरने वालों की संख्या 40 हो गई है.
0: And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And as we had mentioned before that today we are going to cover two important topics. Of course, we'll talk about Guru Purnima, lekin aaj International Tiger Day bhi hai Vishal, so let's start with that. And of course, we know that tiger is often called the king of the jungle, but its real power lies far beyond its strength. A forest without a tiger may still look green, but the trees may still stand tall and birds may still sing. But beneath the surface, the balance of nature slowly begins to unravel.
1: बाघ कोई आम वन्य जीव नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखता है. बाघ को बचाने का मतलब है जंगलों, नदियों, वन्य जीवों और इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर लाखों लोगों की रक्षा करना.
0: That's why every year on 29th of July, the world marks International Tiger Day, a reminder that saving the tiger is ultimately about safeguarding our own future.
1: भारत जंगली बाघों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है. आज दुनिया में मौजूद सभी बाघों में से लगभग 70% बाघ हमारे ही देश में पाए जाते हैं.
0: That's right, Vishal. That means if there are 10 wild tigers anywhere on the planet, about 7 of them are living in Indian forests. And well, that's not sheer luck. That's decades of planning, scientific conservation, dedicated forest guards and participation of local communities.
1: भारत के इतिहास में बाघ का हमेशा से एक खास स्थान रहा है. 1972 में हमारा राष्ट्रीय पशु बनने से बहुत पहले ही इसे साहस और ताकत के प्रतीक के तौर पर पुराने सिक्कों, शाही मोहरों और मंदिरों की नक्काशी में दिखाया जाता था.
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने विशाल. एंड इवन टुडे वेल स्पॉटिंग अ टाइगर इन द वाइल्ड इज कंसीडर्ड अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मेनी. मे बी यू सीन पीपल सेलिब्रेटिंग आफ्टर कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ वन ड्यूरिंग अ सफारी इन रणथंबोर, जिम कॉबेट और बांधवगढ़.
1: ये उत्साह सिर्फ किसी खूबसूरत वन्य पशु को देखने का नहीं है, बल्कि ये अपनी आंखों के सामने संरक्षण की एक सफल कहानी को साकार होते देखने जैसा भी है. लेकिन यहाँ एक सवाल भी है कि बाघों को बचाने में इतनी मेहनत आखिर क्यों की जाती है? क्यों ना हर प्रजाति को एक एक करके बचाया जाए?
0: That's right. Well, the answer is simple also, that a tiger needs a huge and healthy forest to survive. That same forest is home to hundreds of other animals, birds, insects and plants. So when we protect the tiger's home, we end up protecting the homes of thousands of other species too. इसीलिए विशाल जो कहते हैं ना कि forest is something else. So forest cover है, उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है. We can plant, of course, we should plant more trees. लेकिन अगर हम जो है एक तरफ अपने जो जंगल हैं, अगर उनको मिटाते जाएंगे और सोचेंगे उसके बदले हम 2-3 लाख पेड़ लगा दे, वो उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट।
1: वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है और इस दिशा में भारत का सफर काफी शानदार रहा है। साल 2006 में बाघों की संख्या काफी कम थी, लेकिन लगातार संरक्षण प्रयासों की बदौलत 2022 की नवीनतम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में देश में 3,682 जंगली बाघ दर्ज किए गए हैं।
0: Well, that's more than double the scientifically assessed population in just over a decade. And of course, today's tiger conservation isn't done with notebooks alone. Technology has become one of the biggest allies. Camera traps silently capture wildlife movement day and night.
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाघों की धारियों के अनूठे पैटर्न से उसकी पहचान करने में मदद करती है, और सारा बाघों की जो धारियां होती हैं उसके पूरे शरीर पर, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लगभग चेहरे की पहचान की तरह। बस फर्क इतना है कि हर बाघ की अपनी प्राकृतिक पंजों के निशान होते हैं। GPS आधारित निगरानी प्रणाली वन कर्मियों को घने जंगलों में अधिक प्रभावी ढंग से गश्त करने में भी सक्षम बनाती है।
0: Together, science and technology are making conservation smarter than ever before. And you have just mentioned that, of course, AI is a revolution in almost every field. So I'm sure even in conservation efforts, it will play a very vital role. Protecting tigers isn't only about counting them. It's about protecting their homes. And that's where Project Tiger, launched in the year 1973, changed the game.
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था ये बाघों के संरक्षण की दिशा में, और आज इसी के चलते भारत में 18 राज्यों में फैले 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो लगभग 84,500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। इन अभयारण्यों का प्रबंधन बहुत सावधानी से किया जाता है। इनमें वन्य जीवों के लिए सुरक्षित कोर एरिया और उनके आसपास बफर जोन होते हैं, जहाँ संरक्षण और टिकाऊ आजीविका दोनों साथ साथ चलते हैं।
0: Well, wildlife corridors connect many of these forests, allowing tigers to move safely, find mates, and maintain healthy populations. India's success has also inspired the world. Today, countries collaborate with India to learn from its conservation experience.
1: भारत, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर वन्य जीवों के साझा इलाकों की सुरक्षा करता है, और वन्य जीव अपराधों से निपटने, वैज्ञानिक निगरानी को बेहतर बनाने और संरक्षण कार्यों को मजबूत करने के लिए कई अन्य देशों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है।
0: The country also hosts the Global Tiger Forum, the world's only intergovernmental organization dedicated entirely to tiger conservation. And through the International Big Cat Alliance, India is helping protect not just tigers, but 7 iconic big cats across the globe.
1: देश के टाइगर कैपिटल नागपुर में आज इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 समारोह आयोजित किया गया। सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट इस बारे में।
2: इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर नागपुर में एशियाटिक बिग कैट सोसाइटी का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 समारोह आयोजित किया गया। महाराष्ट्र वन विभाग के वन्य जीव प्रभाग और एशियाटिक बिग कैट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम IIM नागपुर के सभागार में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 3 हस्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रत्येक पुरस्कार में 51,000 रुपए की सम्मान राशि और स्मृति चिन्ह दिया गया। महाराष्ट्र में वन्य जीव संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र प्रतिबंधन, वन्य जीव अपराधों की जांच और जन सहभागिता आधारित संरक्षण कार्यों में 25 वर्षों से अधिक योगदान के लिए विशाल बंसोड़ को सम्मानित किया गया। चंद्रपुर जिले के सातारा ग्राम पंचायत के सरपंच गजानन गुलदे को सतत ग्रामीण विकास, स्वच्छता और समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों तथा सातारा गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। वन्य जीव और वन्य संरक्षण के क्षेत्र में 14 वर्षों से अधिक समर्पित सेवा के लिए वन रक्षक श्रीमती VA डोंगरे को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
0: Well, Vishal, that was all about International Tiger Day. And of course, the second topic is Guru Purnima. Vishal, there's a saying in India that a lamp can light thousands of other lamps without losing its own flame. That's exactly what a guru does to us. Every year on the full moon day of the month of Ashar, millions of people across India celebrate Guru Purnima, a day dedicated to expressing gratitude to those who illuminate our minds, shape our character, and guide us towards a better life.
1: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान शिक्षक से भी कहीं ऊंचा बताया गया है। गुरु हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं, जादू से नहीं बल्कि ज्ञान, समझदारी, धैर्य और करुणा से। भारतीय परंपरा का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह हमें याद दिलाता है कि गुरु की पूजा उनके अधिकार या पद के कारण नहीं बल्कि ज्ञान के उस अनमोल उपहार के लिए की जाती है जो वे हमें देते हैं।
0: That's right. I think आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया कि गुरु का स्थान शिक्षक से कहीं ऊंचा होता है. So it's very important that you recognize the difference between a guru and a teacher. Maybe your teacher also becomes your guru, but maybe not all gurus are your teachers. You're like, from who teach through books. So guru आपको जिंदगी के बारे में बताते हैं और कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद आपको कभी किसी कॉलेज में ना पढ़ाया हो, बट आपकी लिस्ट में फहरिस्त में वो गुरु के स्थान पर सबसे ऊँचे होते हैं. सो दोज आर द पीपल हु थ्रू पर्ल्स ऑफ विजडम दे गाइड यू. उनके कई बार शब्द आपको जिंदगी के हर मोड़ पे याद आते हैं. एंड दैट इज वाई इन आवर कल्चर वी सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा. इट्स ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट सेज वेद व्यास, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स. ही कंपाइल्ड द वेदास, ऑथर द एपिक महाभारत एंड प्रिजर्व्ड एन इनॉर्मस ट्रेजर ऑफ इंडियन नॉलेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस. दैट इज वाई दिस डे इज ऑल्सो नोन एज व्यास पूर्णिमा.
1: हमारी सभ्यता हमेशा से ये मानती आई है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है. साम्राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं, पैसा आता है और जाता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है. ये एक ऐसी पूंजी है जो सदैव आपके साथ रहती है जब तक आप इस दुनिया में हैं, जीवित हैं.
0: That's right,
1: और हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई अक्सर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने दुनिया के मानने से पहले ही उनमें भरोसा किया हो, और शायद यही वो सबसे बड़ा तोहफा है जो एक गुरु आपको दे सकता है.

0: उठाकर ग्लासगो में वेट लिफ्टिंग के 8 इवेंट्स में भारत के लिए 7वां मेडल पक्का किया। साथ ही ये हरजिंदर का लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल था, क्योंकि उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ ही ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिनमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: And now look at the news at some business news. Well, benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged 889 points to close at 77,655. Nifty gained 265 points to settle at 24,250. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
0: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज है जन्मदिन, जयंती या फिर पुण्यतिथि।
2: आज की कड़ी में हम शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर रहे हैं। उनका निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। वे बांग्ला गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख समर्थक थे। उन्हीं के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया।
3: ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया और सन 1850 में उसके प्राचार्य नियुक्त हुए। प्राचार्य के रूप में ईश्वर चंद्र ने संस्कृत कॉलेज के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने जाति की बाधाएं हटाई और वहां सभी के लिए पढ़ाई के द्वार खोल दिए। संस्कृत कॉलेज के आधुनिकीकरण और बालिकाओं के लिए विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था।
2: इस बदलाव के लिए उन्होंने स्वयं ही पाठ्य पुस्तकें लिखी थीं। 1851 में उनका लिखा हुआ वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ। वर्ण परिचय से पहले आरंभिक शिक्षा के लिए ऐसी कोई मॉडल रीडर पुस्तक नहीं थी।
0: आज ही पुण्यतिथि है अरुणा आसिफ अली। इनका नाम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से लिया जाता है। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी जुझारू नेता अरुणा आसफ अली का नाम इतिहास में दर्ज है। अरुणा आसफ अली ने सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: Today we are also remembering another literator, right?
0: जी, और जब हम साहित्यकार की बात करते हैं तो आज के दिन जन्म हुआ था सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी जी। जाने माने साहित्यकार थे, तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि, अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक जाने माने कवियों में से एक रहे हैं। इनकी रचनाओं को एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाली रचनाओं के रूप में देखा जाता है। अब तक इनकी 40 से भी अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण शामिल हैं। और सी नारायण रेड्डी ने फिल्म जगत में भी काफ़ी नाम कमाया था और इनके लिखे गानों ने दक्षिण भारत की फिल्मों में खूब धूम मचाई। इन्होंने फिल्मों के लिए लगभग 3,000 से ज़्यादा गाने लिखे थे। आज के दिन जन्म हुआ था बाबा साहेब मोरेश्वर पुरंदरे का, मराठी साहित्यकार, नाटककार। और बाबा साहेब पुरंदरे देश के लोकप्रिय इतिहासकार रहने के साथ ही थिएटर कलाकार भी रह चुके हैं। इन्हें जाड़ता राजा नाटक से शिवाजी को घर घर पहुँचाने का श्रेय जाता है।
1: That's right, and we are also remembering a very, very classic and evergreen actor of Hindi cinema. Yes, today is the death anniversary of Badruddin Jamaluddin Khan Qazi. और अगर आप सोच रहे हैं ये किसका नाम हमने लिया है, well, that is the real name of Johnny Walker. And now, of course, he doesn't need any introduction. He acted in around 300 films and best known for his humorous roles, notably being typecast as a hapless drunkard. और सबसे मजे की बात ये है कि उन्होंने जिंदगी में शराब की एक भी नहीं चखी थी
0: जी। और एक बात और सायरा, कि जो इन्होंने जो अपना जीवन शुरू किया, इससे पहले फिल्मों में आने से पहले एक बस कंडक्टर थे, और लेकिन इनका जो बात करने का तरीका था बहुत ही मजाकिया अंदाज में जो है यात्रियों से बात करते थे, और बलराज साहनी को इनका अंदाज बहुत पसंद आया और उसके बाद इन्होंने इनको गुरुदत्त से मिलाया और फिर संवेदना और हास्य के दो शिखर एक हो गए।

0: तो श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। अनुमति दीजिए विशाल शर्मा और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
3: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
2: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम

0: के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुँचाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth. Dr. Singh criticized Leader of the Opposition Rahul Gandhi for using unparliamentary language, calling it inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded that he should apologise in the House for his remarks. Earlier participating in the discussion, Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. The House also witnessed 2 brief adjournments during the discussion after the passage of the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla adjourned the House till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jan Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. After passing of the bill, the upper house took up special mentions where members raised issues of urgent importance. After that, the Rajya Sabha was adjourned till 11 a.m. tomorrow. At least 40 people were killed and dozens injured in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK after a brutal crackdown by Pakistani forces amid escalating unrest in the region. Citing reports, the United Kashmir People's National Party today alleged that several others were injured and arbitrarily arrested between the 27th and 28th of this month in Rawalkot, Mirpur and other areas of the occupied territory. India has strongly condemned recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz, saying targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end. Permanent representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish, said after a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, the Assam Chief Minister said Union Home Minister inquired about the situation on the ground and assured that the centre will continue to provide all necessary assistance for relief, restoration and rebuilding in the flood-affected areas. However, Odisha continues to grapple with a rapidly escalating flood emergency as swollen rivers inundate vast stretches, displacing thousands and disrupting normal life across several districts. The traditional Chhadi Mubarak, the holy mace of Lord Shiva and the sacred symbol of the annual Amarnath Yatra, began its ceremonial journey today from the historic Dashnami Akhada at Mysuma in Srinagar on the occasion of Guru Purnima. The Indian Meteorological Department has forecast very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Vidarbha for the day. And with that, we end this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और ये है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम शुरू हो गया है गाते गुनगुनाते आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। मैं लाई हूँ कुछ बेहतरीन गाने आपके लिए और उन गानों से जुड़ी कुछ खास खास बातें जो शायद आपको पता हो या शायद ना पता हो। तो पहला गाना जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है फिल्म कुदरत से। और ये जो गाना है ना ये प्रेरित है एक बंगाली गाने से, हाय की कोरी मानो निया। इस गाने से प्रेरित ये गाना आपके लिए लता जी की आवाज़ में।

अगला गाना जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है फिल्म हम पांच से। जी हाँ, काफ़ी मशहूर फिल्म और काफ़ी मशहूर गाने। और आपको पता है कि इस फिल्म में शबाना आज़मी जो हैं वो लड़ पड़ी थी बोनी कपूर से कि अमरीश पुरी को इसमें जो है एक किरदार दिया जाए, क्योंकि वो उनके टैलेंट को बहुत सराहती थी। और मौसमी चटर्जी भी जो हैं इस फिल्म में काम करने वाली थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं हो पाया। तो अगला गीत आपके लिए पेश है हम पांच फिल्म से, और इस गीत को गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने।

कुछ गानों को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसी दौर में पहुंच गए हैं, और ये जो गाने आपने सुने अभी, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं स्टूडियो में नहीं बल्कि उसी जगह पर थी जब ये गाने फिल्माए गए थे, और उम्मीद है कि आपने भी इन गानों का लुत्फ उठाया होगा। अगला गाना जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है फिल्म कूली नंबर वन से, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आपको पता है कि इस फिल्म में पहले जूही चावला जी वो जो हैं अभिनय करने वाली थी, पर ऐसा हुआ नहीं। पर करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी का तो क्या ही कहना है ना। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही

0: रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप अपनी रेडियो सखी रेणुका के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। अगला गीत आपके लिए मैं पेश करने जा रही हूँ फिल्म सात रंग के सपने। इस फिल्म में पहले तबू जो हैं वो अभिनय करने वाली थी, जो मिंक सिंह का किरदार था पहले उन्हें पेश किया गया था, पर किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। और जो मेन लीड रोल था उसके लिए ट्विंकल खन्ना को जो है साइन करने वाले थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो चलिए सुनते हैं ये गीत बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ में।

अगला गीत आपके लिए पेश है गुलाम फिल्म से, और ये गीत गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। और आपको पता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना, बहुत ही अनोखा है, और उस क्लाइमैक्स के लिए जो है आमिर खान ने 8 से 10 दिन के लिए अपना चेहरा ही नहीं धोया था, ताकि वो एकदम थके हुए, पस्त और हारे हुए लगे। भाई इसे कहते हैं डेडिकेशन, है ना। चलिए सुनते हैं ये गीत।

अगला गीत पेश है फिल्म खामोशी से, और गीत गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने। और क्या आप जानते हैं कि खामोशी एक लौती फिल्म है जिसमें हेलेन और नाना पाटेकर ने साथ में अभिनय किया है। चलिए सुनते हैं ये गीत।

अगला गीत आपके लिए जो हम पेश करने जा रहे हैं वो है फिल्म संगीत से, और इस फिल्म में पहले मुख्य किरदार जो है वो जयप्रदा निभाने वाली थी, मतलब वो थी ओरिजिनल चॉइस, पर जिस संजीदगी से माधुरी दीक्षित ने माँ और बेटी दोनों का किरदार निभाया था उसे बहुत प्रशंसा मिली थी। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत संगीत फिल्म से, और इस गीत को गाया है जॉली मुखर्जी ने।

चलिए अपनी आंखें बंद करिए, क्योंकि मैं जो है अभी आपको टाइम ट्रैवल कराने वाली हूँ। अभी हम जाने वाले हैं 1979 में और सुनने वाले हैं ये गीत बातों बातों फिल्म से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले। चलें टाइम ट्रैवल करने।

इसी गाने के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, और अगली बार तक के लिए आप जो है सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हमें बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते ही हैं 9868868753, और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, पता है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो सुनते रहिएगा आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉ सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youths.
1: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded an apology from him in the House for his remarks. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till tomorrow. To address the deteriorating air quality challenge, the government has approved a vehicle fleet renewal initiative named Parivartan Program for accelerated renewal and incentivization of vehicle assets for reducing transport air pollution and network emissions. The scheme aims to replace old and high-emission trucks and buses in the Delhi National Capital Region with cleaner Bharat State.

0: HBS-6 compliant and electric vehicles. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the death toll has risen to 40, with several others injured following a crackdown by Pakistani security forces on protesters during a march organized by the Joint Awami Action Committee from Rawalpindi to Muzaffarabad on Monday. Amid escalating unrest in the occupied territory, a human rights documentation and monitoring body has urged the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to intervene over reports of lethal force being used against peaceful protesters. Union Home Minister Amit Shah has spoken with Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, the Assam Chief Minister said Union Home Minister inquired about the situation on the ground and assured that the centre will continue to provide all necessary assistance. Odisha also continues to grapple with a rapidly escalating flood emergency as swollen rivers inundate vast stretches, displacing thousands. Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. The Sensex surged 889 points to close at 77,655. The Nifty gained 265 points to settle at 24,250. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Indian boxer Sakshi Chaudhary confirmed another medal for the country on day 6. Sakshi defeated Caitlin Friars of Northern Ireland by a unanimous decision 5-0 to storm into the semi-finals of the women's 51-kilogram division. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण नमस्कार आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आप सभी का स्वागत मैं हूं विशाल शर्मा आज के कार्यक्रम का विषय है भारत का बाघ संरक्षण मॉडल जंगलों से वैश्विक नेतृत्व तक बाघ केवल जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है जब जंगल में बाघ सुरक्षित होता है तो इसका अर्थ है कि उसका पूरा तंत्र यानी जंगल पेड़ पौधे नदियाँ और दूसरे वन्य जीव भी सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ दशक पहले तक बाघों का अस्तित्व गंभीर संकट में था शिकार जंगलों का लगातार कम होना और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी चुनौतियों ने इस शानदार जीव के सामने बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है भारत अब दुनिया की लगभग 70% जंगली बाघ आबादी का घर है ये उपलब्धि वर्षों की वैज्ञानिक सोच मजबूत नीतियों बेहतर प्रबंधन और लोगों की भागीदारी का परिणाम है हर वर्ष 29 जुलाई को पूरी दुनिया में ग्लोबल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है इस दिन का उद्देश्य बाघों के संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए सुनते हैं ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा
2: हम जब भी टाइगर रिजर्व्स की फॉरेस्ट एरिया की इकोलॉजी के संवर्धन की बात करते हैं तो ये केवल एंजाइटी के लिए नहीं है ये केवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं है ये प्रकृति के साथ मनुष्य जीवन के रिश्तों को समझने के लिए भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल करी है हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई 10 सालों में जो टाइगर रिजर्व्स की संख्या 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है देश में जो नेशनल पार्क्स थे 2014 में उनकी संख्या 103 थी अब बढ़कर के 106 हो गई है और सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो अपने सारे टाइगर रिजर्व्स हैं वो लोगों की जानकारी में एक ही पोर्टल पे कैसे आए एक ही वेबसाइट पर कैसे आए ताकि जो प्रेशर केवल कुछ जगहों पे रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो ज्यादा अवेयरनेस कैसे हो इसके लिए भी जो आज NTCA ने नए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत करी है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ
1: आखिर कैसे भारत ने बाघ संरक्षण में ये सफलता हासिल की, कौन सी योजनाएं और तकनीकें इस अभियान को मजबूत बना रही हैं और कैसे भारत अब वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण का नेतृत्व कर रहा है, आइए सुनते हैं।
3: भारत का बाघों से संबंध केवल वन्य जीव संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन सिक्कों, राजसी मुहरों और

0: टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके बाद वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। आज प्रोजेक्ट टाइगर भारत की सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण अभियानों में से एक माना जाता है। भारत की बाघ संरक्षण यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई है। यह सर्वेक्षण दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव आकलनों में से एक है। आज भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं और लगभग 84,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। इन प्रयासों के पीछे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन, निगरानी और संरक्षण योजनाओं को दिशा देती है।
1: बाघों की संख्या बढ़ाना केवल जंगलों की सुरक्षा से संभव नहीं है, इसके लिए जरूरी है सटीक जानकारी, आधुनिक तकनीक और लगातार निगरानी। तो आइए जानते हैं कि विज्ञान और तकनीक ने भारत के बाघ संरक्षण अभियान को किस तरह नई ताकत दी है।
2: भारत ने बाघों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे संरक्षण की पूरी प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनी है। हर 4 साल में होने वाले ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन बाघों की संख्या, उनके आवास और जंगलों की स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें कैमरा ट्रैप, डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। बाघ निगरानी के लिए भारत ने M-STRIPES यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस जैसे तकनीक विकसित की है। इसमें GPS, GPRS और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से कैमरा ट्रैप तस्वीरों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसके लिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी MEE किया जाता है। वर्ष 2022 तक 51 टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया जा चुका है। इनमें 12 रिजर्व को एक्सीलेंट श्रेणी भी मिली है। इसलिए आज भारत का संरक्षण मॉडल केवल वन जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों की आजीविका और भागीदारी को भी महत्व दिया जा रहा है।
1: भारत की बाघ संरक्षण यात्रा अब केवल देश तक सीमित नहीं है। आइए सुनते हैं, आज भारत अपने अनुभवों और तकनीकों को दुनिया के साथ साझा कर रहा है और वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।
3: भारत का वैश्विक नेतृत्व बाघ संरक्षण से बिग कैट संरक्षण तक। बाघ संरक्षण की भारत की यात्रा अब केवल अपने जंगलों तक सीमित नहीं है। भारत आज दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जिसमें विज्ञान, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी को साथ लेकर वन्य जीव संरक्षण किया जा रहा है। भारत का मानना है कि वन्य जीवों का संरक्षण किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि प्रकृति की सीमाएं देश की सीमाओं से अलग होती हैं। इसी सोच के साथ भारत ने वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA। वर्ष 2023 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 7 प्रजातियों में शामिल हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। IBCA में 95 देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और संरक्षण संगठनों की भागीदारी है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है। ये पहल दिखाती है कि भारत अपने अनुभवों को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि वैश्विक वन्य जीव संरक्षण में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ सीमा पार जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग किया है। म्यांमार के साथ वन्य जीव तस्करी रोकने और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं रूस के साथ कैमरा ट्रैप डेटा प्रबंधन और बाघ तथा तेंदुआ संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बाघ वाले देशों के साथ भारत ज्ञान तथा अनुभव साझा कर रहा है। बाघ संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण संस्था है ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF। ये दुनिया का एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए समर्पित है। ऐसा ही एक वैश्विक प्रमाणन है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि टाइगर रिजर्व में संरक्षण के लिए तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है।

बाघ संरक्षण की ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी प्रजाति को बचाने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए जरूरी है मजबूत संस्थाएं, वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीक और समाज की भागीदारी। आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य केवल बाघों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे सुरक्षित और जुड़े हुए वन क्षेत्र तैयार करना है जहां वन्य जीव और मानव दोनों साथ रह सकें। बाघों को बचाना वास्तव में उन जंगलों को बचाना है जो हमें स्वच्छ हवा, पानी और जीवन का आधार प्रदान करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली पीढ़ियां भी भारत के जंगलों में बाघों की दहाड़ सुन सकेंगी, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: कह सकते हैं, या वॉलेटिलिटी जो थोड़ा वॉलेटाइल है, वो जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, तो वो
1: जी
0: अनिश्चितता अभी भी कायम है। लेकिन साथ साथ उस अनिश्चितता के चलते, या उससे पहले जो ट्रम्प साहब के टैरिफ आए, उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से निकल रहे थे, वो हमने देखा है हाल के दिनों में, खासकर पिछले 1 महीने का डेटा है, तो उससे ये पता लग रहा है कि अब FPIs जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो वापस भारत की और जो भारतीय बाजारों में वापस आ रहे हैं। साथ साथ जो आपने रिपोर्ट में भी बात कही, जो आज की बढ़त का एक और जो आधार जो बना, वो था जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो जो डेटा आया, वो बहुत पॉजिटिव था, काफ़ी रोबस्ट डेटा था, और वो ये इस बात को भी की तस्दीक करता है कि भारत के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी स्टेबल है। और साथ साथ एक और जो आज जो देख आज की बाजार में जो बाजार के उस रुख में जो दिखा पॉजिटिव हमने देखा, जो ट्रेडिशनल IT कंपनीज़ हैं, उसकी तरफ भी निवेशकों ने दोबारा से रुख किया है, तो वो भी एक कारण बना। और साथ साथ जो एक ज़्यादातर एक बाज़ारों में जो US में जो फेड की जो मीटिंग आज हो रही है, और जो इंटरेस्ट रेट्स पे उनका जो फैसला आना है, उस पर एक ये ज़्यादातर एक इस तरह का पॉजिटिव व्यू ये है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट्स में आज बदलाव ना करें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बाज़ारों के लिए एक पॉजिटिव खबर के तरह रुख बन के आया।
1: ऑल्सो बिफोर वी मूव ऑन एंड आस्क यू नो इन डेप्थ क्वेश्चंस अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट द सेक्टोरल इंडिसीज डिड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन द सेक्टोरल इंडिसीज ऑन द BSE, 20 आउट ऑफ द 27 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स, Information technology rose by 2.4%, metal advanced almost 2.3%, and focused IT gained 1.9%. In contrast, mid-small private banks quality tilt fell over 0.6%, services dropped 0.5%, and realty dipped 0.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,593 companies advanced, 1,652 companies declined, and 179 companies remained unchanged. Siddharth, just coming back to your summary of the reasons why the market actually went up today by 1%, if you look at the large caps, BSE and NSE, you also had macroeconomic data for services, the index of services production, which has also seen a year-on-year growth for the month of May. Of course, the IIPs for the month of June, and that went up by 7%. Manufacturing also, if you look at the PMI, is above 50. It's about more than 53. So clearly, the economy is in that sweet spot right now. But the top gainer, if you look at the sectors, FMCG went up by 1.66%. The index went up by 809 points. This is as compared to yesterday's performance, where FMCG sustained valuation fall. Why this? Was there short covering today? What value buying? What was the real reason?
0: I think, Arjun, as far as FMCG is concerned, obviously fast-moving consumer good, because we still see that the demand in the economy, especially if you look at the Reserve Bank of India report, which came a week back, also indicated that the demand is still very robust in both the urban and the rural areas. And also, I would also

0: Data for May released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. 8 of the 19 subsectors recorded double-digit growth during the month. Accommodation and food services registered the highest growth of 27.4%. Real estate services rose by 17.7%, followed by retail trade, which grew 13.3%. Conversely, information and broadcasting declined 7.6%, air transport fell by 2.8%, and postal courier services contracted by 1%. Index of services production is a macroeconomic indicator designed to capture the performance of the services sector. How important do you see an index of services production, especially where GDP is dominated by our overall performance in services?
1: I think, Arjun, you raised a very important question, and you also said in your question that now almost 55% of our GVA or GDP, if you could roughly say, comprises of the services sector. And I think this was one area where we were having data, we were having individual data. So I think now bringing it together, 19 subsectors, and broadly we are covering now almost 40 services. So, and this also helps the policymakers, the economists, in making a forward guidance in terms of where things are moving, what directions they are taking. So earlier we had individual data for example, goods and services tax data, we had air passenger traffic data, but now everything is being collated and is being produced on a monthly basis. So this would be a big help to the policymaker, as well as give us a good capture the state of the economy.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के 1-1 अरब पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी करने का प्रस्ताव भेजा था. उन्होंने कहा कि फील्ड ट्रायल सफल होने के बाद इन दोनों मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों का नियमित प्रचलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरबीआई के अनुसार पॉलीमर नोट कागज के नोटों के साथ साथ जारी किए जाएंगे. फिलहाल कागज के नोटों को पूरी तरह से हटाकर उनकी जगह केवल पॉलीमर नोट लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. सिद्धार्थ जी, काफी समय से कोशिश हो रही थी और अब फील्ड ट्रायल की बात पॉलीमर नोट को लेकर की गई है. आपके अनुसार किस तरह के फायदे इन नोटों को शुरू करने के साथ जुड़े हुए?
1: मुझे लगता है अमरीश, एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि जो उसकी लाइफ स्पैन है कागज के नोट के वनस्पत, अगर आप देखेंगे जो पॉलीमर नोट्स हैं तकरीबन 2.5 गुना 4 गुना ज्यादा चलते, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है. साथ साथ ज्यादा जो वो अभी आप देखेंगे कागज का नोट मुड़ जाता है उस पर कुछ तो उस तरह की जो या फट जाता है, तो शायद पॉलीमर नोट उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा उसकी शेल्फ जो वो है स्टेबिलिटी होगी, मजबूत ज़्यादा होगा. प्लस साथ साथ उतना गंदा भी नहीं होगा, शायद उतने जल्दी गंदा नहीं होगा. साथ साथ उसमें सिक्योरिटी फीचर्स आप ज़्यादा डाल सकते हैं. तो ये मुझे लगता है जो एक आम आदमी के हिसाब से मुझे लगता है ये बड़े 2-3 फायदे हैं.
2: लेकिन क्या प्रिंटिंग की कॉस्ट जो कागज के नोटों के मुकाबले ज्यादा आएगी?
1: नहीं अमरीश, प्रिंटिंग की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगी अगर काउंट, क्योंकि आप एक बात और समझें कि पहले हम लोग, अभी तो सरकार ने इस चीज पे भी काफी हद तक जो है नकेल कस दिया, नहीं तो कागज के नोटों की काउंटरफीटिंग जो नकली नोट बन रहे थे, तो वो शायद पॉलीमर नोट में हम इस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स भी तो डाल पाएंगे.
2: जी, जी.
1: तो और अभी तक ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि उसकी जो है कॉस्ट ज्यादा होगी, और क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है तो वो अगर थोड़ा बहुत अगर कॉस्ट ज्यादा भी हो रही तो वो भी जस्टिफाई हो जाएगी.
2: जी, तो क्या सरकार का ऐसे भी आगे कोई इरादा हो सकता है कि बड़े नोट भी इस मतलब पॉलीमर में लाए जाए?
1: नहीं अमरीश, ये तो अभी ना तो रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है. मुझे लगता है अभी जो आपने बात बोली भी रिपोर्ट में कि फील्ड ट्रायल, तो अभी शायद इसके जो भी जिस तरह का भी जो इसके रिजल्ट्स आएंगे उसको स्टडी करने के बाद पे ही आगे जो है किस तरह से इसको और बढ़ाना है, क्या करना है, मुझे लगता है उसके बाद ही उस पर कोई फैसला होगा.
0: सिद्धार्थ, सिंस वी टॉकिंग अबाउट द करेंसी नोट एंड इट्स फीचर्स, द रूपी एक्चुअली appreciated by 21 paise against the US dollar, and the RBI has even commented that the rupee is undervalued against the US dollar. There was an FCNR heavy deposit to the tune of $30+ billion because of the high rate of interest that the government provides on any deposit of foreign exchange under the FCNRB scheme.

0: So what's your view on that?
1: See, basically, rupee appreciated. It's I think it's a positive also because the oil prices fell sharply because they touched almost they'd gone beyond $100 per barrel. I think they've retracted to sub 90 level. So I think that was a big reason. And yes, government has always the central bank as well as the government of the Indian government has been maintaining that we've always maintained this that rupee is undervalued. Though we also at the same time we say that we do not track a level of the rupee. The even the central bank says that it only looks at the volatility, it only controls orderly movement of the currency. So, and I think as the as far as the rupee level of rupee is concerned, I think it is oil price of crude oil which would kind of have an important impact on that.
2: जी.
1: Which would decide the.
2: और चलते हैं कुछ पहली तिमाही के जो कॉरपोरेट नतीजे आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं. एशियन पेंट्स ने ऑपरेशन से होने वाली कंपनी का सकल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% बढ़कर 10,542 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. कंपनी का सकल कुल लाभ वार्षिक आधार पर लगभग 40% बढ़कर 1,539 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा.
0: In more earnings results, Adani Ports and Special Economic Zone Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose 18.6% year-on-year to 10,821 crore rupees. The firm's consolidated net profit increased by 9.2% to 3,620 crore rupees on an annual basis. Let's have a look at the Asian and the European markets.
2: जी और एशिया के बाजारों का हाल जानते हैं. अधिकांश शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी निवेशकों द्वारा सेमीकंडक्टर शेयरों की लगातार बिकवाली के चलते 6% तक गिर गया. कोरिया के एक्सचेंज में आज लगातार दूसरे दिन सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार की शुरुआत में ही 20 मिनट तक ट्रेडिंग रोक दी गई. कोरियाई बाजार में अभी तक आठ बार सर्किट ब्रेकर लगाया जा चुका है. ताइवान का ताइएक्स लगभग 3.8% और जापान का निकेई 1.5% तक गिर गया. दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 2% तक बढ़ा. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में बढ़त 1.7% से अधिक और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में बढ़त 0.4% की रही. उधर प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख दिखाई दिया. अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स में 0.3% की तेजी जबकि फ्रांस के कैक में लगभग 0.5% की गिरावट चल रही थी. सिद्धार्थ जी, हम एशिया के बाजारों की अगर हम बात करें खासतौर से दक्षिण कोरिया की, तो लगातार जिस तरह से सर्किट ब्रेकर लगाया गया और पूरे महीने इस तरह से चल रहा है और खासतौर से जो सेमीकंडक्टर के शेयरों की बिकवाली है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
1: नहीं अमरीश, मुझे लगता है कि जो अभी हमने पहले भी बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेमीकंडक्टर से जुड़े जितनी भी कंपनियां उनकी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जो है पिटाई हुई है और शायद निवेशकों के मन में ये एक ऐसी बात है कि शायद जितना बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में किया जा रहा है क्या वो जस्टिफाई करेगा रिटर्न्स को इन कंपनियों द्वारा. हालांकि जो एक बड़ी कंपनी जो ऑलमोस्ट दो कंपनियां हैं जो कॉस्पी या साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 50% है. अगर उनको आप देखेंगे उसमें से एक का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके बावजूद उस कंपनी के शेयर्स तकरीबन 10% तक जो है आज गिरे हैं. तो इसमें तरह तरह की बात की जा रही है. कहीं ना कहीं ये एक बात तो ये है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट जितना जिस पैमाने पर वो जैसे कुछ एक ये भी फीलिंग है कि जो है कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. तीसरा एक फैक्टर चाइना का भी आ रहा है उसमें कि क्या चाइना के जो AI मॉडल्स हैं या जो उनके हार्डवेयर हैं क्या वो आने वाले टाइम में जो अभी जो आगे जो इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं तो वो क्या उनसे बेहतर होंगे. तो इन सब चीजों की वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक निवेशकों में
2: जी. लेकिन जैसे आपने चाइना की बात की तो चाइना हो गया, ताइवान हो गया या और भी देश जो सेमीकंडक्टर के मार्केट में है, बनाते हैं और बेचते हैं. तो अभी जिस तरह से आपने भी कहा कि AI की का जिस तरह से एक्सपेंशन है तो अभी जरूरत तो लगातार सेमीकंडक्टर की है और बनी रहेगी.
1: नहीं वो है और डिमांड भी है. अभी जो उन्होंने उनको जो ऑर्डर्स मिले हैं अमेरिकी कंपनियों के से इन खासकर इन दो चिप मेकर्स को, वो भी बहुत बड़ा ऑर्डर उनको मिला। उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में एक मन में ये बात है, तो इसकी वजह से खासकर अभी जो हम देख रहे हैं हाल के दिनों में जो ये शेयर्स इन कंपनीज के गिर रहे हैं, और ये अमेरिकी बाजार में भी ये अनिश्चितता दिख रही है। खासकर आज दो बड़ी कंपनियां जो अमेरिका में हैं उनके भी रिजल्ट्स आने हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि रिजल्ट्स उनके भी अच्छे होंगे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोग जो है जो AI बेस्ड IT कंपनीज से कहीं ना कहीं ऐसी नए क्षेत्रों मतलब ऐसी दूसरी कंपनियां देख रहे हैं जहां ग्रोथ के ज़्यादा अवसर हैं, साथ साथ वैल्यूएशंस भी
0: Plus, shorting is also a technique to bring down the valuation and buy it at lower levels.
1: I think what you said, Arjun, that also is one of the reasons which is being cited, but we don't know because there are several things happening simultaneously.
0: Let's have a look at the US markets now. Major US stock market indices displayed a mixed note yesterday ahead of key quarterly earnings reports and the US Fed Reserve policy decision. The Dow Jones Industrial Average rose for a third consecutive session, ending 1% higher. The rally in the Dow is supported by strong corporate earnings and a decline in oil prices. Meanwhile, the S&P 500 posted a modest gain of 0.2%. In contrast, the Nasdaq Composite Index extended its losing streak, settling over 0.2% down amid a sell-off in chip stocks. So we're talking about the Asian stock market. Now the US stock market, Nasdaq, is seeing a sell-off, only 0.2%. There seems to be a recovery there, but clearly there seems to be overvaluation, and because of artificial intelligence and the circular economy, which has been cited by many, and the raising of capital by pledging hardware, these kind of chips with banks in order to raise capital, what does it tell about liquidity and its future?
1: No, I think liquidity is not an issue. I think issue is the valuation. Basic is valuation, and do these kind of investments justify the future realization or the return to the investor? So I think that is the basic question. And the other question which is currently impacting the US markets is obviously the interest rate decision of the Fed. So I think the markets are also looking at that. But I think there is a sense of positiveness in the US market because they expect the Fed to hold the rates. And since the new Fed chairman Mr. Kevin Warsh has taken, he is also averse to giving any future guidance. Same thing we saw in the European the decision of the European Central Bank last week. So and that is why also I see, because of this positive view among the investors that US will hold rates, I think we see a sign of positive sense of positiveness even in the European markets.
0: Let's now move on to the crude oil market. Global crude oil prices jumped more than 4% today amid renewed tensions in West Asia. Brent crude was trading over 4.8% up at $88.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 4.4% up at $82.76 per barrel when reports last came in. Meanwhile, India strongly condemned the recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz. Permanent representative of India to the United Nations, P. Harish, said that free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways must be restored.
3: West Asia is a region of immense importance to India. Our stakes in the security and stability of the region are high. India's trade and energy supply chains are strongly linked to this region. With bilateral annual trade of around $180 billion, accumulative foreign direct investment of over $31 billion, and remittances of more than $52 billion from GCC alone, these linkages have direct implications for our economy and energy security. Around 10 million Indians live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are a key priority for us. After a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. This is deeply concerning, and India calls for an immediate de-escalation of tensions.
0: Very interesting that these attacks are being conducted on any vessel flying the Indian flag. We have had long relations with Iran. Why is it that this is happening, even though renewed war has begun? Despite the MOU, you have US now partnering with Saudi Arabia in these attacks. So what is your view and comment on this?
1: Arjun, I would say things are only getting uncertain by the day, and we are seeing new things being added to the entire things, and we don't see anything in sight, we don't see peace in sight at least, and which is very worrying for us.
0: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.1%.

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, "The new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth."
1: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
0: Replying to Rahul Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said that the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded an apology from him in the House for his remarks. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said, "Students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression." After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till tomorrow. To address the deteriorating air quality challenge, the government approved a vehicle fleet renewal initiative named Parivartan, or Program for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions. The scheme aims to replace old and high-emission trucks and buses in the Delhi NCR with cleaner Bharat Stage 6 compliant and electric vehicles. Minister for Electronic and IT Ashwini Vaishnav has said that India's electronic sector has witnessed a remarkable transformation in recent years, driven by a series of government initiatives and industry reforms. In a written reply in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the country is steadily emerging as a global hub for electronic system design and manufacturing. He said, Electronics Development Fund, or EDF, was one of these initiatives of the Government of India to promote market-driven innovation in electronic system design and manufacturing. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the death toll has risen to 40, with several others injured following a crackdown by Pakistani security forces on the protesters during a march organized by the Joint Awami Action Committee from Rawalkot to Muzaffarabad on Monday. Amid escalating unrest in the occupied territory, a human rights documentation and monitoring body has urged the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to intervene over reports of lethal force being used against peaceful protesters. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, the Assam Chief Minister said Union Home Minister inquired about the situation on the ground and assured that the centre will continue to provide all necessary assistance. Indian boxer Sakshi Chaudhary assured herself of at least a bronze medal by entering the 51-kilogram category semi-finals of the Commonwealth Games in Glasgow today. Sakshi defeated Northern Ireland's Kathleen Friars 5-0 to enter the last four stage. She has become the fifth Indian boxer to be guaranteed of a medal at the ongoing Games. With this, India's total medal count at the Glasgow Games has reached 12, including 2 gold, 7 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.
2: में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना।
3: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर जो संशोधन विधेयक है जिसको आज संसद ने पारित किया है और अब ये प्रभाव में आ जाएगा, और निश्चित रूप से परीक्षाओं में जो भी गलत तरीके अपनाए जाते हैं उन पर रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: तो जैसा कि सुरेश जी हमें पता है कि आज संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया और अब ये कानून बन गया है। 2024 में इस कानून को बनाया गया था, अब फिर से संशोधन करके और इसमें काफी परिवर्तन किए गए हैं, तो इसके प्रावधानों की हम चर्चा करें। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुख्य रूप से इस कानून को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और सरकार कौन सा लक्ष्य इसके माध्यम से अचीव करना चाहती है।
4: अमरीश जी धन्यवाद। देखिए अभी अपने विद्यार्थियों का आपने प्रदर्शन देखा दिल्ली में
3: जी,
4: और जिसके चलते सरकार ने ये आश्वासन दिया विद्यार्थियों को कि सरकार की तरफ से ये पूरी प्रतिबद्धता है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको इंस्टाग्राम के माध्यम से भी और अपने वक्तव्यों के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष उन्होंने जो दिया संसद सत्र में, उन सबके माध्यम से उन्होंने यह बिल्कुल अपनी तरफ से प्रतिबद्धता जताई कि सरकार पूरी तरह इस पूरे सिस्टम में, एग्जामिनेशन के सिस्टम में जो भी कमी है उसको दुरुस्त करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आगे से ऐसे कोई पेपर लीक की कोई घटनाएं ना हो जो अपने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और याद रखें कि पहले भी कुछ घटनाएं और इस तरह की घटनाएं देश में पिछले कई दशकों से चल रही है। 2024 में इन सबको संज्ञान में रहते हुए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल जो है वो लाया गया था, लेकिन उसके मौजूदगी के बावजूद भी इस बार हमने नीट और कुछ अन्य परीक्षाओं में देखा कि किस तरीके से अपराधी तत्व जो है, जो कमियां हैं सिस्टम में, जो कमियां हैं टेक्नोलॉजी में, उसका लाभ लेते हुए, और इसमें जरूर एक नैतिकता का भी प्रश्न है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार जो है, सरकार ने जब कड़े प्रावधान लगाए हैं तो लोगों के अंदर एक डर बैठे इस तरह कोई भी जो है कदम उठाने से पहले, तो ये सरकार ने इस वजह से इसमें पेनल्टी भी इसमें है और सजा को भी जो है और कड़ा बना दिया गया है ताकि जो भी अपराधी तत्व हैं वो सचेत रहें, वो इस तरह के जो कुकर्म है जिसमें दोबारा वो हिस्सा ना लें।
3: जी इसमें सुरेश जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहले से भी कानून था, अब उसमें अमेंडमेंट लाया गया, लेकिन पिछले जैसे दो दशक के अगर हम केसेस देखें तो बहुत सारे इस तरह के मामले आए हैं जहां पर पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ और फिर वो जाके कोर्ट से छूट गए। तो इस दिशा में अगर हम इस कानून को देखें जो संसद ने आज पारित किया है, उसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की बात की है, बहुत त्वरित जांच की और इन्वेस्टिगेशन की बात की है, इस विषय में आप हमारे श्रोताओं को और क्या बताना चाहेंगे?
4: देखिए इसमें कई प्रावधान जो है उसको जैसे मैंने कहा कि कड़े कर दिए गए हैं, जैसे जो भी व्यक्ति इस तरह के जो अनफेयर तरीके से इसमें भाग लेगा

0: है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका 1 करोड़ तक का था लाइबिलिटी, और आज जो है उसका 5 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से जो भी जिम्मेदार लोग हैं, प्रबंधन के लोग हैं, उनको जो है 5 साल की सजा और हायर फाइन्स है। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तरीके से है तो जो पहले 5 साल का प्रावधान था उसका न्यूनतम 7 साल कर दिया गया है, और 10 करोड़ तक का जो है पेनल्टी इसमें लगा दिया गया है, जिसमें जब्ती भी हो सकती है आपके प्रॉपर्टी की। और
1: जी
0: इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को अब पूरी तरीके से 2 महीने का ही समय दिया गया है कि सारा इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर होना चाहिए, और जैसे आपने कहा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो है होना चाहिए, डे टू डे हियरिंग्स होने चाहिए, और 3 महीने के अंदर चार्जशीट जो है वो लग जानी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी मैल प्रैक्टिस है, जो भी गैंग इस तरीके से माफिया इसमें इन्वॉल्व है, और इन सबको जो है किस तरीके से, लेकिन साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें टास्क फोर्स बनाया है बहुत ही दिग्गज लोगों को, नंदन नीलकेनी जी के अध्यक्षता में, जिसमें वी कामकोटी, डॉक्टर सोमनाथ
1: जी
0: जैसे विद्वान और वैज्ञानिक और शिक्षाविद जिसमें हैं, पूरा इसका टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, सिक्योर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर जो है बनाया गया। एनटीए ने भी अपनी तरफ से जो है अपने सिस्टम को सुधारने के लिए विज्ञापन भी दे दिया है, और उसका ताकत जो है बढ़ाई जा रही है। तो सरकार ने एक
1: जी
0: योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों का हितों को संरक्षित किया जा सकता है, जो पारदर्शी भी हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो, इस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है।
1: जी तो आपको क्या लगता है इसमें प्रिवेंशन पे आपको लगता है कि कुछ और ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि अगर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन और सजा तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था इस तरह की बननी चाहिए जिसमें कि
0: जी
1: इस तरह की घटनाएं कम से कम हो या ना हो।
0: नहीं, देखिए ये सजा, एक तो सजा का डर के वजह से अब इतना आसानी से कोई इसके लिए रिस्क नहीं लेगा,
1: जी
0: लेकिन सिस्टम को भी सुधारने की बात की गई है, जिसके तहत जो है हम देखते हैं कि जो टास्क फोर्स जो बनाई गई है, ये टास्क फोर्स चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मामला हो, सिक्योरिटी उसको कैसे सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इस बार तो सरकार ने जो है, क्योंकि इस विषय को देखते हुए, संजीदगी को देखते हुए, बहुत संवेदनशील तरीके से भारतीय वायुसेना का भी उपयोग किया गया, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए प्रायोगिक नहीं है कि वो नियमित तौर पर किया जाए। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी सिक्योर करना है, बहुत सारे विकल्प अब आ गए हैं, क्या इसको ऑनलाइन किया जा सकता है, पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को किस तरीके से इसमें जो है हम विद्यार्थियों के अंदर जो है वो विश्वास पैदा कर सकते हैं, कि उनका एक है कि नीट जैसे एग्जामिनेशन में जो है सीटें कम हैं, लाखों विद्यार्थी चंद सीटों के लिए जो है अपना प्रयास करते हैं, और उसमें भी अगर ये शक उसमें आ गया तो मैं समझता हूं कि सवाल विश्वसनीयता का है, विद्यार्थियों के अंदर वो पारदर्शिता और विश्वसनीयता इसको स्थापित करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी को लगे कि मैं अगर जो भी लिखूंगा उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इसमें पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा, और मुझे अपने काबिलियत के आधार पर जो है मुझे जो मिलना है मिलेगा, ये भरोसा उनके अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है।
1: जी सुरेश जी, इस कानून में अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है, जिसका
0: जी
1: मतलब हुआ कि जो लोग भी उस पूरे सिस्टम में, पूरी प्रणाली में शामिल हैं, चाहे वो
0: जी
1: प्रश्न पत्र को बनाने वाले हो, चाहे एग्जामिनेशन को
0: जी
1: कंडक्ट करने वाले हो, हर एक को
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी लेनी होगी। जो
0: जी
1: जिम्मेदारी की बात है, इस पहल से, इस प्रावधान से किस तरह का लाभ आप देखते हैं?
0: नहीं, निश्चित ही जब ये स्पष्टता आएगी तो मैं समझता हूं कि जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और पारदर्शी तरीके से हमको उनका चयन भी करना पड़ेगा, जो भी परीक्षा पत्र तैयार करेंगे या पेपर सेटर्स जिनको कहते हैं,
1: जी
0: उनके चयन में भी हमको जो है ऐसे व्यक्तियों को ही देना है जो अपने विषय के विद्वान तो है ही है, साथ में ही जो है उनका जो व्यक्तिगत उनका जो चरित्र है उस पर भी जो है किसी प्रकार का दाग ना हो, और जिनका जो है प्रतिबद्धता, जिनका समर्पण, जिनका जो है ईमानदारी, जिसके लिए जाने जाते हो, तो ऐसे लोगों को ही जो है हमको ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। और हाँ, ये प्रावधान भी किए गए हैं कि कोई अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर में गया तो उसको सजा भी मिलेगी, पेनल्टी भी लगेगी, उन सबको उसका तो इस कानून ने व्यवस्था किया ही।
1: जी तो बहुत तरह तरह की, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन्स हैं वो भी परीक्षाएं लेते हैं,
0: जी
1: तो ये कानून क्या सारे तरह के जो परीक्षाएं हैं और जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्तर पर लेते हैं, सभी पर समान रूप से लागू होगा?
0: नहीं, बिल्कुल, ये पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की गई है, सार्वजनिक जितने भी परीक्षाएं हैं उन सब में ये कानून लागू होगा, ये नहीं कि ये सिर्फ नीट पर लागू होगा। और

0: अब राज्य सरकारों को यह तय करना है, ये तो यूनियन गवर्नमेंट के जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा चाहे नीट हो, सीयूईटी हो, सब पर यह लागू होगा। लेकिन राज्य सरकारें जो कर रही हैं उसके लिए उनको भी अपना व्यवस्था, या इसको जो है लागू करें या उनको अपना व्यवस्था करनी होगी।
1: जी, तो इसको लागू करने के लिए, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए किस तरह का एक तंत्र की जरूरत है? जैसे आपने खुद ही अभी कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर तो हो सकता है, लेकिन सारी राज्य सरकारों के स्तर पर उस तरह के तंत्र को किस तरह से विकसित करने की जरूरत है जिससे कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके?
0: मैंने जैसे कहा कि एक तो टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना है,
1: जी
0: वो अगर सिक्योर हो गया तो हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिसको केंद्र सरकार अपने परीक्षाओं के लिए नहीं, राज्य सरकार भी अपने परीक्षाओं के लिए, क्योंकि राज्यों से भी बहुत शिकायत आती है, चाहे सत्ता में कोई भी दल क्यों ना हो, शिकायत आती है। हमने राजस्थान में भी देखा, अन्य प्रदेशों में भी देखा, इस तरह की शिकायतें आती है। तो उसको अगर रोकना है तो सभी सरकारों को, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो हमारे नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो राज्य के सभी शिक्षा मंत्रियों को जो है इस विषय को लेकर बैठक की जाएगी। क्योंकि देखिए, इस बात को देखिए कि एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमको संवेदनशील रहते हुए उनको भी किस तरीके से, राज्य सरकार को भी ऑन बोर्ड, इसमें मुझे लगता है कि संकुचित संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर ये विद्यार्थियों के व्यापक हित में, मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर जो है
1: जी
0: विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा।
1: जी जी सुरेश जी, जैसे अब ये पूरा जो कानून है वो पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेके है, लेकिन अगर हम देखें कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय हों, राज्य सरकार के हों या निजी विश्वविद्यालय हों, इनके अंदर भी परीक्षाएं होती हैं और वहां भी तरह तरह के जो अनफेयर मीन्स हैं या अनुचित साधन हैं उनका प्रयोग होता है, तो क्या इसके प्रावधानों को इसी रूप में विश्वविद्यालयों पर भी लागू माना जाएगा, या हम ये उम्मीद करें कि विश्वविद्यालय भी इसके अनुरूप अपने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे कि परीक्षाएं
0: बिल्कुल
1: और ठीक से हों?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विश्वविद्यालय ऑटोनोमस यूनिट है, वो स्वायत्त है, वो अपनी परीक्षाएं कराते हैं अपने तरीके से। उनके ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों का तो सीयूईटी है जिसके
1: जी
0: अंतर्गत एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन अपने जो भी पाक्षिक हो, वार्षिक हो, द्विवार्षीय, जो भी सेमेस्टर वाइज हो, अभी इसमें तो ये शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी अलग है, उनके एजेंसियां अलग है, नेशनल जो आपका एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इसमें इन्वॉल्व है ये केंद्रीय परीक्षाओं में, वैसे नहीं है उनके साथ। वहां तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करता है, लेकिन वहां भी हम अक्सर शिकायतों के बारे में सुनते हैं जो दबी जुबान में होते हैं, तो कहीं अपने विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। वहां भी हमको विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हो रही है, क्योंकि वो लिमिटेड संख्या में होती है, तो उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सभी, इसमें से जितने भी प्रावधान जो लागू किए जा सकते हैं प्रायोगिक स्तर पर, वो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों को भी अपनाना चाहिए, कम से कम वो टेम्पलेट्स को अपनाना चाहिए, और जो जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है, जवाबदेही सुनिश्चित करना है, वो पेपर सेटर के लिए विश्वविद्यालयों में भी होना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक हो गया तो विश्वविद्यालय में परीक्षा विभागाध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र तैयार करता है उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये सारे विषय पर भी जो है मुझे लगता है कि एसओपीस बनाने की आवश्यकता है सभी विश्वविद्यालयों को।
1: जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चूंकि जो बड़ी परीक्षाएं, चाहे नीट की परीक्षा हो, जेईई की परीक्षा हो, तो इन परीक्षाओं में जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो काफी व्यापक स्तर पर स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, जिसमें निजी स्वामित्व वाले स्कूल कॉलेज भी होते हैं, सारे सरकारी नहीं होते, और जो वेंडर्स हैं जिनके माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती हैं वो भी हम निजी स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो आपके विचार से इस तंत्र को भी और बेहतर बनाने की जरूरत है जहां पर पूरा सरकार के नियंत्रण में ही हो और निजी क्षेत्र की या निजी वेंडर्स की भागीदारी कम से कम हो?
0: देखिए, आप जैसे निजी विश्वविद्यालय भी हैं कई,
1: जी
0: तो उनके लिए कितना स्वीकार्य होगा ये, इस बात को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्त बॉडी है
1: जी
0: और ये विश्वविद्यालयों को ये अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ, हम जवाबदेही जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रैगिंग है, अब रैगिंग में जो है एंटी रैगिंग का पोर्टल बना हुआ है, तो अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो शासकीय हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, वो एंटी रैगिंग पोर्टल पे, एंटी रैगिंग पे वो कंप्लेंट कर सकता है, तो तुरंत विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया जाता है।
1: जी सुरेश जी, आपने बहुत ही सुझाव अच्छा दिया, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक

विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

नमस्कार। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ने लगता है तो आसमान ना सुनहरे रंगों से भर उठता है और शाम अपने साथ सुकून का एहसास लेकर आती है। ये वो समय है जब मन कुछ मधुर गीत सुनना चाहता है। ऐसे गीत, ऐसी धुनें जो बीते दिनों की यादों को फिर से ताजा कर दें। बस इन्हीं सुनहरी यादों को संजोए आपके साथ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम सांझ ढले और मैं नूपुर। आज की शाम हम सुनेंगे 60s और 70s की हिंदी फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। कभी किसी फिल्म का कोई सुना अनसुना सा किस्सा, कभी किसी गीत की रचना की कहानी और कभी उन कलाकारों की उपलब्धियां जिन्होंने इन गीतों को अमर बना दिया। तो आइए इस खूबसूरत शाम का आगाज करते हैं फिल्म तीसरी मंजिल के इस गीत के साथ जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने। तीसरी मंजिल फिल्म रिलीज हुई 1966 में, एक संगीतमयी रहस्यमयी फिल्म जो मस्ट वॉच फिल्म्स की लिस्ट में आती है। रॉक एंड रोल म्यूजिक पर बेस्ड ये गीत बहुत लोकप्रिय है, आज भी सुना जाता है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें, तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
6: बिल्कुल, ITR फाइल करने में ज्यादा देर ना लगाएं, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से ITR फाइल करें और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। चलिए बात करते

हैं 1970 में बनी एक्शन स्पाई फिल्म जॉनी मेरा नाम की, जिसका बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रीमेक किया गया। जी हाँ, जब यह रिलीज हुई तो उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई। कई करोड़ रुपयों का बॉक्स ऑफिस कारोबार किया इस फिल्म ने, जो उस दौर के हिसाब से ना एक असाधारण उपलब्धि थी। इस फिल्म के लिए विजय आनंद को फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन का सम्मान प्राप्त हुआ और फिल्म के कई रोमांचक दृश्य बिहार के राजगीर स्थित रोपवे पर फिल्माए गए थे। ये रोपवे फिल्म की सफलता के बाद देश भर में एक चर्चित पर्यटन स्थल बनकर उभर कर आया और इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है ना, वो अपने समय के हिसाब से बेहद भव्य और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था। अलग अलग स्थानों पर एक साथ घट रही घटनाओं को प्रभावशाली ढंग से जोड़ने के लिए उत्कृष्ट संपादन का सहारा लिया गया। बाद के वर्षों में अनेक हिंदी एक्शन फिल्मों ने इसी शैली के क्लाइमैक्स को अपनाया और फिल्म की शूटिंग 165 दिनों तक चली। तो चलिए सुनते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से किशोर कुमार के साथ उषा खन्ना की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

बात है 1972 की। फिल्म एक्टर और निर्माता महमूद अपनी फिल्म के नायक की तलाश में थे। तो एक दिन चर्चा हो रही थी और एक लंबे से सज्जन कमरे में आए, जिन्हें देखकर महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना इस लंबे से नौजवान को ही फिल्म का नायक बना दिया जाए। साथियों को सुझाव पसंद आया और मिल गया फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन। ये फिल्म उनके शुरुआती करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है। 1972 की सफल फिल्मों में शामिल है फिल्म बॉम्बे टू गोवा। अपनी मनोरंजक कहानी, कॉमेडी और मधुर संगीत के कारण इस फिल्म को बहुत सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट प्रूफ हुई ये फिल्म। ये फिल्म 1966 की लोकप्रिय तमिल फिल्म मद्रास टू पौंडिचेरी का हिंदी रूपांतरण थी। इसकी कहानी आगे चलकर साल 2004 की मराठी फिल्म के लिए इंस्पिरेशन बनी, जिसका बाद में कन्नड़ भाषा में पुनर्निर्माण भी किया गया। फिल्म का संगीत आरडी बर्मन ने बनाया और गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे। और जैसे कि फिल्म का नाम है बॉम्बे टू गोवा, तो ट्रैवल स्टोरी है। इसमें एक बस में यात्री सवार हैं और फिल्म में बस के ड्राइवर का नाम राजेश और कंडक्टर का नाम है खन्ना। तो इसका बहुत ही एक प्यारा सा गीत है, देखा ना हाई रे सोचा ना, रख दी निशाने पे जान। आइए सुनते हैं। इस सॉन्ग के बाद ठीक 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक नियमों को कम करने और शासन व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इस दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
4: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का पारित होना करोड़ों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के विश्वास को और सशक्त करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय भारत की परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से लेकर 11 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में अनावश्यक नियमों को कम करने और कामकाज को आसान बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को प्रभावी ढंग से लागू करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कारण हुई देरी के बावजूद वर्तमान सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में जानकारी दी गई कि सुधार अभियान के पहले चरण में चिन्हित 23 प्राथमिक क्षेत्रों में से 13 का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है, जबकि 4 सुधार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अप्रासंगिक हो गए हैं। समीक्षा के दौरान ये भी बताया गया कि सुधार अभियान के दूसरे चरण में जून महीने के मध्य तक लागू 3 प्राथमिक क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इनमें दिल्ली नगर निगम की दोहरी व्यापार लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों को उदार बनाना और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करना जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के मसूदे पर हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
3: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सर्टिफिकेट में दाहिने ट्रेगस के सामने एक कटा हुआ घाव दर्ज है, जिसे हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार ये एक साधारण चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा निष्कर्षों में गोली लगने की आशंका नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है।
6: इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। ये योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वाहन उद्योग के समन्वित प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के NCR जिलों को कवर करता है। भागीदार राज्य पात्र लाभार्थियों को 10 वर्षों के लिए 100% तक मोटर वाहन कर में छूट और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: दिल्ली सरकार ने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस आयोग की अध्यक्षता सुनीता कांगड़ा के नेतृत्व में की जाएगी। वहीं मनोज कुमार और सुशांत सागर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पुनर्गठन आयोग की कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा उनके कल्याण के प्रयासों को और प्रभावी बनाएगा। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की मंजूरी के फैसले के बाद आज बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये निर्णय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुमेन लेड डेवलपमेंट के दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।
7: मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमन लेड डेवलपमेंट के मूल मंत्र को दिल्ली में पुनः चरितार्थ करने के लिए एक और योजना सुचारू रूप से शुरू करी है, जिसका नाम है लक्ष्मी योजना। लगभग 17 लाख से ज्यादा महिलाएं इससे लाभार्थी होंगी। दिल्ली की मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण में ये बहुत ही मजबूत पहल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवकों, भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी। अगले 100

0: 9 सप्ताहों तक प्रत्येक रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने के लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज होलंबी क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने बताया कि ये पहल नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम ने कहा कि ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और दिल्ली के निवासियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए निगम के संकल्प को और मजबूत करती है। दिल्ली सरकार ने आज डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर हंसराज बवेजा, डॉक्टर एस के टंडन और डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा को दिल्ली चिकित्सा परिषद का सदस्य नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये नियुक्तियां परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक राजधानी में सुचारू आवाजाही और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। इस अवधि के दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं।
1: यातायात पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। यातायात पुलिस ने बताया कि वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, जीटी रोड और उनसे जुड़े मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही को सीमित किया जा सकता है या दूसरे मार्ग पर मोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुष्ता रोड, आशाराम त्यागी मार्ग और लोनी रोड सहित कई प्रमुख चौराहों पर भी यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। यातायात पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सड़क के किनारे अपने वाहन खड़ा न करने की सलाह दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मंदिर मार्ग स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की उन महान परंपराओं का पर्व है जो हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
2: जीवन में गुरु धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ गुरु पूर्णिमा की, और गुरु के सानिध्य में ही हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता है, दिल्ली को विकसित करने का रास्ता है और भारत को आगे ले जाने का है।
0: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्नॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में युवाओं के साथ पूजा अर्चना की। श्री खंडेलवाल ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं है बल्कि ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्मरण करने का भी दिवस है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बात कर असम में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा ने अनगिनत लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। श्रीमती गुप्ता ने राहत और बचाव कार्यों में असम सरकार द्वारा किए जा रहे समर्पित और सतत प्रयासों की सराहना की। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। वायु प्रदूषण की

0: समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक नियमों को कम करने और शासन व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इस दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते

लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल दो अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके दो ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधा मोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए।
इस सत्र में प्रश्न

0: भारतीय मुक्केबाजों
1: ने 5 पदक पक्के किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी।
2: वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह को टीम की कमान सौंपी।
2: और शुभमन गिल बने वनडे में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज। वैभव ने लगाई लंबी छलांग।
1: जी हाँ, आज की हेडलाइन ये थी अब तक की स्पोर्ट्स की हेडलाइंस। और श्रोताओं, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में आज का दिन भारतीय मुक्केबाजों के नाम रहा, जिसमें मुक्केबाजी में भारत ने 5 पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष वर्ग में नरेंद्र बेरवाल ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन सिवाच ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जबकि महिला वर्ग में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की की।
2: सिद्धार्थ उधर, तजिंदर सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत अब 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर। सिद्धार्थ, लगातार भारतीय टीम हर दिन एक नया इतिहास रच रही है।
1: जी हाँ प्रशांत, और आज जिस तरह से हमारे मुक्केबाजों ने एक के बाद एक करके जो उन्होंने जीत का सिलसिला कायम किया, तो फिर वो रुका नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की। और पुरुष मुक्केबाजी की पहले अगर हम बात करें तो नरेंद्र बेरवाल की बात करनी होगी, जिन्होंने 90 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में समोआ के माइकल सेको को 3-2 से हराया। हालांकि शुरू में यह मुकाबला थोड़ा बराबरी पर रहा, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र ने अपना प्रदर्शन किया, उन्हें 3-2 से जीत मिली। वे टॉप 4 में पहुंचने वाले 9वें मुक्केबाज बन गए।
2: लेकिन सिद्धार्थ, अंकुश ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक तरफा मुकाबला खेला और 5-0 से अपने प्रतिद्वंदियों को जो शिकस्त दी है। उनसे पहले अंकुश ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में सेशल्स के जे मिकॉक को 5-0 से हराकर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। सिद्धार्थ,
1: जी हाँ, 5-0 जिसे हम कह सकते हैं कि, और हालांकि जो 5-0 का सिलसिला था वो प्रशांत रुका नहीं, और आगे का जो इसके पहले जो मैच हुआ उसमें सचिन ने 70 किलोग्राम वर्ग में बोत्सवाना के ट्रेसर मोरेमी को 5-0 से एक बार फिर से हराया। और जो जीत के लम्हे होते हैं ना, उसके बाद सचिन ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं।
3: गोल्ड लेके जाना, गोल्ड की उम्मीद थी और मेरे मेडल मेरे कोच और मेरे घर वालों को ही दूंगा। स्टार्टिंग में बाउट से पहले थोड़ी घबराहट थी, लेकिन बाउट में जाते ही सारा डर वही ऑटोमेटिक चला गया और इजी बाउट थी और आगे भी यही अच्छा हल्के में नहीं लेना है और गोल्ड लेके जाना है।
1: जी हाँ, तो ये थे हमारे पुरुष वर्ग के खिलाड़ी जिन्होंने आज 3 पदक पक्के किए, देश के नाम किए। और प्रशांत, महिला बॉक्सिंग में की बात करें तो क्या कुछ बता रहे हैं आप।
2: अरुंधति और साक्षी चौधरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिद्धार्थ, अगर हम महिला बॉक्सिंग की बात करें तो अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में न्यूजीलैंड की मॉर्गन एडरसन को 3-1 से हराया। सुनते हैं क्या कह रही है अरुंधति।
4: डेडिकेट तो मैं मेरे छोटे भाई को करना चाहूंगी, और हाँ हार्ड था क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा ओपोनेंट था, बट काफी मजा आया और जरूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे।
1: जी हाँ, अपने भाई को अपनी जीत को डेडिकेट किया है, और अब सबकी नजर अपने आगे के प्रदर्शन पर है कि सेमीफाइनल में क्या कुछ होता है। लेकिन इसके साथ ही 51 किलोग्राम भार वर्ग की अगर हम बात करें तो साक्षी चौधरी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की कैथलीन फ्रेयर को 5-0 से हराकर अपना दमखम दिखाया। आइए जानते हैं साक्षी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा।
4: ये जो जीत थी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसके बाद मेरा मेडल कंफर्म हो गया है और ये मेरा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था कि मैंने जो मेहनत की थी, जो सबका सपोर्ट था, उसकी वजह से आज मैं मेडल कंफर्म कर पाई हूँ। और अभी मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छा करती जाऊँ और मेडल का कलर गोल्ड में बदलूँ। मैं पूरे इंडिया को ये अपना जो जीत है इसको डेडिकेट करना चाहूँ, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया है।
1: जी हाँ, अपनी जीत भारत को डेडिकेट कर रहे हैं साक्षी, और क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आज
2: बॉक्सरों का जो प्रदर्शन रहा है सिद्धार्थ,
1: हम लोग पूरे मैच पर नजर बनाए हुए थे अपने इस शो के लिए, और एक के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे बॉक्सर्स पदक पक्का करने लगते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है, और वो फिर कहीं ना कहीं जो मोमेंट्स हैं वो कभी ना भूलने वाले मोमेंट्स होते हैं। और पूरे सफर पे अगर हम एक नजर डालें तो इससे पहले लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम, प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम, प्रिया ने 60 किलोग्राम और जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर ही चुके हैं। तो एक शानदार सफर, क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों से काफी उम्मीद रहती
2: बिल्कुल,
1: है
2: लोगों बिल्कुल की। और उसी उम्मीद पर कायम खड़े उतरे हैं सिद्धार्थ। अगर हम देखें तो पूरे अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो बॉक्सिंग में भारत ने 9 पदक पक्के कर लिए हैं, और आज के दिन की बात की जाए तो 5 पदक खिलाड़ियों ने जो है देश को समर्पित किया है, और बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं और भी इवेंट्स में, और बॉक्सिंग में आज उसी का एक प्रमाण देखने को मिला हमें।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जो मुक्केबाज हैं वो किस तरीके के पंचेस लगाते हैं और अपने अपोनेंट को धाराशाही करके अपने पदक का, जो यहां पर पदक तो पक्का किया ही है, लेकिन हम सभी को उम्मीद है कि जीत का ये जो परचम है वो देश के लिए ये सभी खिलाड़ी लहराते रहेंगे। और इसके साथ बॉक्सिंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बात करते हैं शॉटपुट की। प्रशांत, शॉटपुट से क्या खबर है?
2: शॉटपुट में सिद्धार्थ अगर हम बात करें तो तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल इवेंट जो है वो बृहस्पतिवार को खेला जाएगा, और आज सबकी निगाहें इन पर थी और उसी तरह का प्रदर्शन भी कर दिखाया उन्होंने।
1: जी, और क्वालिफिकेशन में तूर को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क यानी 20 मीटर की दूरी पार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तूर ने अपने पहले प्रयास में 19.93 मीटर की दूरी तय की, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 20.14 मीटर का थ्रो फेंका और फाइनल में जगह पक्की कर ली।
2: वहीं समरदीप सिंह गिल का दिन आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर रहा। उन्होंने 19.95 मीटर का थ्रो करके उन्होंने अपना पहले ही प्रयास में ये जो है अटेम्प्ट जो है सफल बनाया। उनका दूसरा थ्रो 19.75 मीटर का था, जबकि तीसरा थ्रो फाउल हो गया, लेकिन उनका भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा।
1: जी हाँ, पहले ही थ्रो में देखिए तो 99.95 मीटर पे पहुंचा, और दोनों ग्रुप में कुल 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से गिल कुल 5वें स्थान पर रहे। ग्रुप ए में 7 और ग्रुप बी में 8 खिलाड़ी शामिल थे। तो नियम के अनुसार जो खिलाड़ी 20 मीटर का मार्क पार करते हैं या टॉप 12 में रहते हैं वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी है। इन दोनों ने खिलाड़ियों ने भारत के लिए रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन्हें पुरुषों की इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई, उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण तारीफ के काबिल है, भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
2: उधर महिलाओं की 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सफलता के लिए हरजिंदर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों में हमारे वेटलिफ्टर्स का इतना अच्छा प्रदर्शन देखना खुशी की बात है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता।
1: जी हाँ, हरजिंदर ने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम वजन उठाया। इस पोडियम फिनिश में ग्लासगो में भारत के शानदार वेट लिफ्टिंग अभियान को और ज्यादा मजबूत किया। पदक जीतने के बाद अपने जो हरजिंदर ने अपने अनुभव को कुछ इस तरीके से साझा किया।
0: मैं बहुत खुश हूँ।

0: सिल्वर मेडल जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हूँ। ट्रेनिंग में मैंने इससे अच्छा क्लीन जर्क कर रखा है, पर फिर भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी 6 की 6 लिफ्ट पास। मैं सोच के आई थी इस बार के एक तो मैंने अपने मेडल का कलर चेंज करना है और दूसरा मुझे अपनी लिफ्टिंग अच्छी करके आनी है। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे और इंडियन फेडरेशन गवर्नमेंट सबका बहुत सपोर्ट है, उनकी वजह से आज हम यहाँ तक है।
1: उधर गुलवीर ने भी इस प्रतियोगिता में यादगार प्रदर्शन किया और देश के नाम रजत पदक जीता। जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया।
2: अच्छा हुआ क्योंकि हमारे देश के लिए मेडल आया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोच को खुशी है और जितने भी हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो ये बाहर के जितने एथलीट हैं उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हम इनके साथ कैसे दौड़ेंगे, क्या हुआ। बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं तो हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना वो निकल जाती है, क्योंकि हम ये लगता है हम मेडल जीते किस हिसाब से वो कंपटीशन कर रहे हैं हमारे से।
3: जी हाँ, जिस तरीके का प्रदर्शन गुलवीर ने किया, पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया और वे इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। और बुक्केबाजी की हम बात कर रहे थे, वही बुक्केबाज जादूमणि ने 55 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जाम्बिया के मेंगो वाले को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया। उन्होंने एक के बाद एक पंच लगाए और विपक्षी मुक्केबाज को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव कुछ इस तरीके से साझा किया।
4: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले के गेम्स में मेरा मेडल आगे, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला आने सेमीफाइनल में इसे बेहतर कर सकूं मैं और इंडिया के लिए गोल लेके जाऊंगा।
1: वहीं भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
5: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुलवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
3: ऑन्टारियो में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कुवैत को 2-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने ग्रुप चरण के अपने आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की है। सुनते हैं वैष्णव की ये रिपोर्ट।
6: 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम को कुवैत के खिलाफ जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। पहले मैच में युशा नफीस को कुवैत के अब्दुल्ला अली के खिलाफ सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की। दूसरे मुकाबले में आर्यवीर दीवान ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए खालिद वली अल्फोजेन को 11-5, 11-6 और 11-5 से हराकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक मैच में गुरवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब्दुल रहमान अल सानिया को 11-3, 11-3 और 11-4 से हराकर भारत को 2-1 की जीत लाई। अब भारत
1: उधर भारतीय महिला हॉकी टीम बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले हॉकी विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर आज यूरोप के लिए रवाना हो गई। ये विश्व कप 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला सिद्धार्थ 16 अगस्त को चीन के खिलाफ खेलेगा। विश्व कप से पहले भारतीय टीम 31 जुलाई और 1 अगस्त को मेजबान टीम जर्मनी के खिलाफ लगातार 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी। और उधर सिद्धार्थ हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है।
3: जी हाँ, और हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। यह प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। उधर ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस एकेडमी चैंपियनशिप और हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के दौरान सब जूनियर प्रतियोगिता में खालसा स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी कोलकाता और राजाकर हॉकी एकेडमी ने जीत हासिल की है, जबकि जूनियर प्रतियोगिता में भाई बहलो हॉकी एकेडमी और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी विजय रहे।
1: और अब बात क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। आईसीसी ने आज बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज बन गए। वहीं वैभव सूर्यवंशी को भी T20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा पहुंचा है। वैभव 536 रेटिंग प्वाइंट के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।
3: और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे कुछ और बातें करें या किसी और खेल खबरों पर चर्चा करें। इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ और प्रशांत को। नमस्कार।

0: पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस

0: कार्यवाही के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
2: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
3: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
4: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
5: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री कि ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
6: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। IMD अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
4: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता एटमॉस्फेयर में और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मॉनसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड कर देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इसमें हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है। सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब उधर प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर, जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा, तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में। और एक चीज है, ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सेटेलाइट रडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है, हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है। तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, हमारा फिर डाटा एसिमिलेशन, न्यूमेरिकल मॉडल, फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कम्बाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
2: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
0: आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, कि टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे। तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वत स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
2: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचा

0: असंभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
1: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारा, जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते हैं, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप का जो आपको भी पता है कि एक घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो FFGS है, ये एक WMO वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर शेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का FFGS है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा FFGS। और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटा के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
0: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में, जैसे उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
0: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
1: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर रडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 रडार के नीचे ही था उसमें आज हमारा 50 रडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर रडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो रडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने पता नाव कास्टिंग, तो ये रडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नावकास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है रडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने अभी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं रडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ये वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा रडार जो नेटवर्क, रडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं रडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गांव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं एक्सपोज होते हैं तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्सा में काफी मदद करता है हमारा रडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
0: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग, तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है, तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है, तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली

0: कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
2: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है, बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी चेतावनी दिए है। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा और जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई में ना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, फर्स्ट जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15-25 दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे, जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह वो देते रहेंगे, एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं।
0: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन

0: क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं, तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे रैली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है, तो तुरंत हमें 112 112 पर फोन कर देना चाहिए, ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज दो वजह से होती हैं। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें, ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है, ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाएं। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है, वर्षा के दौरान जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है, फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है, तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारे मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और

0: केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र

है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान के ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। बस्तर मंडल के साथ महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी सहित विभिन्न जिलों में कई

0: से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। बस्तर मंडल के साथ महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी सहित विभिन्न जिलों में कई नदियां उफान पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नरेंद्र ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया। वहीं महिला वर्ग में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the public examinations to offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
2: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Mr. Gandhi and demanded

के अवैध व कब्जे वाले कयूम कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया।

0: कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। श्री हरीश ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने के दौरान GFS गैलेक्सी, MT अल बहिया और MT मोम्बासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नौवहन और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने आज दावा किया कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन स्थित एक अमरीकी हवाई अड्डे और अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम मुख्यालय को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। एक रिपोर्ट।
1: इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार ये हमले ईरान पर अमरीकी सैन्य हमलों के जवाब में किए गए थे। IRGC ने अमरीकी धमकियों, अवैध और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के समाप्त होने तक अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। ये दावा ईरान और अमरीका के बीच सैन्य झड़पों के बाद पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच आया है। इस बीच अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, जिसे उसने क्षेत्र में अमरीकी बलों पर अचानक हमले का प्रयास बताया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के IRGC ने पश्चिम एशिया में अमरीकी बलों पर

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना की। हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना की। हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। सुनते हैं विशाल की ये रिपोर्ट।
1: भारतीय टीम में अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है। भारतीय टीम की नजर 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव करने पर होगी। भारत के सबसे अनुभवी हॉकी खिलाड़ी और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को टीम में अनुभव और संतुलन देने के लिए शामिल किया गया है। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे। डिफेंस यूनिट में जर्मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय सुमित और यशदीप सिवाच को टीम में जगह दी गई है। भारत की मिडफील्ड में राजेंद्र सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद होंगे, जबकि फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाखड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं। भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है।
0: छह टीमों के दो पूल

0: अभिषेक शामिल हैं। भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है।
1: छह छह टीमों के दो पूल में बंटी 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी मैच काका मेघहारा के गिफू प्री फ्रैक्चुअल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुधंती, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नरेंद्र ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन ने 70 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया, जबकि महिला वर्ग में अरुधंती चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्वभर

0: भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 18 हुई और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the World News.

लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में

शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ ऋतिका और कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, क्योंकि भई अब आ चुकी हैं स्टूडियो में अंजू निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.5।

ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की दो समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था।

नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, क्योंकि दिल ने अब जागने का नया बहाना जो ढूंढ लिया है।

अच्छा, एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मोहब्बत है किसी से तो इसे छुपाते क्यों हैं, ये जानते हुए भी।

दोस्तों कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की

FM Gold Channel 100.1 MHz पर आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जरा देखो, रात खामोश है और ये पूर्णिमा का चांद चुपके से कह रहा है कि कोई दूर बैठा आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही यादों में बह रहा है।

दोस्तों हम आपसे भी कहेंगे कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद यानी 2:10 पर रात सुरमेरी लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी मैं। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन

अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी राजकोष विभाग के अनुसार इन प्रतिबंधों के अंतर्गत 8 तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमरीका का आरोप है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर दबाव डाल रही है और उनसे अनिवार्य समुद्री बीमा लेने के लिए मजबूर कर रही है। अमरीका ने कहा है कि ये कदम ईरान के अवैध तेल व्यापार और गुप्त जहाज बेड़े पर दबाव बढ़ाने की उसकी नीति का हिस्सा है।

दोस्तों समय हुआ है 2:11 मिनट और 31 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूं अंजू, आपके साथ लेकर आई हूं बहुत ही खूबसूरत गीतों भरा कार्यक्रम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

रुक जाती है धड़कन तुम्हें अपने पास पाकर, रुक जाती है धड़कन तुम्हें अपने पास पाकर, संभालो मुझे कहीं खो ना जाऊं मैं तुमसे दिल लगाकर।

0: विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान

जब दिल में कोई ख्वाहिश जागती है तो वो एकदम से नहीं बल्कि बहुत नज़ाकत के साथ धीरे धीरे परवान चढ़ती है। तो आइए इस खामोश फिजा में थोड़ा रंग भरते हैं और धीरे धीरे मचलते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ।

हैं, दिल की तड़प को तो बस धड़कने समझती हैं। जब बात चले मोहब्बत और हसीन निगाहों की, तो फिर ये आँखें हर राज बयां करती हैं।

आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है। आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है। तू ना हो साथ तो हर लम्हा मलाल है। मत छोड़ कर जाना कभी इस हम सफर को, तेरे बिना तो ये जिंदगी ही बेहाल है।

दोस्तों कहते हैं कि जब लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तब दिल की धड़कनें बोलने लगती हैं, और जब दिल किसी को सच्ची शिद्दत से याद करता है तो वो पुकार हवाओं के ज़रिए सीधे चाहने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, फिल्म है ज्वेल थीफ।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म काला बाजार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यादें किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। जब सन्नाटा गहराने लगता है और हवाएं थम जाती हैं, तब दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज़ आती है, वही पुरानी यादें जो दिल के गुलशन में हमेशा खिली रहती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म पतिता से ये गीत।

0: मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

दोस्तों, ज़िंदगी के जो भी पल हैं उनको हंसी खुशी के साथ जिए, क्योंकि बाद में समय निकल जाने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आपकी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर आपने गांव की जिंदगी देखी हो या कभी गांव में रहे हो तो आपको सोचकर बड़ा अच्छा लगता होगा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और वहां का सादगी भरा माहौल दिल को छू जाता है।

दोस्तों, रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, पर अगर मन में जुनून और हौसला है तो जीत बिल्कुल निश्चित है, और फिर हर रास्ता आसान हो जाता है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शोला और शबनम से अभी आपने ये गीत सुना। सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, बिल्कुल दोस्तों, सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, पर उस रास्ते पर चलने वालों की शान ही कुछ और होती है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म तीसरी कसम से ये गीत।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म यस बॉस से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस ज़रूर हो जाता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की

नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग